FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 11 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। इस समय सुबह के 6 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आस्था के स्वर।
1: आस्था के स्वर।

आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आस्था के स्वर। कार्यक्रम का अगला स्वर अनूप जलोटा का।

0: जगजीत सिंह और साथियों की आवाज़ में गाए इस भक्ति गीत के साथ ही अब आज का आस्था के स्वर कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: आस्था के स्वर।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर। ये है निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। सुबह के 6:30 हुए हैं। वक्त है आज के चिंतन का। चिंतन में आज सुनिए स्वामी आत्मानंद के विचार।
1: मैं दो व्यक्तियों को जानता हूं, वे परस्पर बड़े मित्र हैं।

0: पर दोनों की विचारधाराएं बिल्कुल विपरीत हैं। एक हैं जो पुरुषार्थ में विश्वास करते हैं, कहते हैं मनुष्य अपने प्रयत्न से सब कुछ हासिल कर सकता है, जबकि दूसरे प्रारब्ध यानी भाग्य के पक्षधर हैं। वे कहते हैं कि जीवन में भाग्य का ही बोलबाला है। वे अपने पक्ष में प्रायः ही महाभारत का यह श्लोक सुना देते हैं, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, यानी सर्वत्र भाग्य ही फलता है, न तो विद्या फलती है न पुरुषार्थ। जब इन दोनों मित्रों में बहस होती है तो वह सुनने लायक होती है। दोनों अपने अपने पक्ष में जोरदार तर्क देते हैं। जो पुरुषार्थी मित्र हैं वे भी महाभारत से ही एक श्लोक लेकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर देते हैं, जहां पर भीष्म युधिष्ठिर को पुरुषार्थ की प्रधानता समझाते हुए कहते हैं, साधारणम द्वयम् येतत् दैवमुत्थानमेव च पौरुषम हि परम मन्ये दैवम् निश्चित मुच्यते। अर्थात युधिष्ठिर, कार्य की सिद्धि में यद्यपि प्रारब्ध और पुरुषार्थ ये दोनों साधारण कारण माने गए हैं, तथापि मैं पुरुषार्थ को ही प्रधान मानता हूं। प्रारब्ध तो पहले से ही निश्चित बताया गया है, पर भाग्यवादी मित्र सहज में ही हार नहीं मानते। वे अपने पुरुषार्थी मित्र से कहते हैं, तुम्हें अभी तक किसी असफलता का सामना नहीं करना पड़ा, इसीलिए तुम पुरुषार्थ को लेकर इतना उछल रहे हो। जब लाख चेष्टा करने पर भी देखोगे कि तुम्हारा काम बना नहीं, तब समझोगे कि जीवन का नियंत्रण पुरुषार्थ नहीं भाग्य करता है। पहले ये भाग्यवादी मित्र भी बड़े पुरुषार्थी थे। उनके जीवन में एक हादसा हो गया, तब से उनकी दृष्टि में भाग्य ही सर्वोपरि है। हुआ यह कि उनका इकलौता पुत्र बीमार पड़ गया। धन की तो उनके पास कोई कमी थी नहीं, वे एक से एक डॉक्टर के पास अपने बेटे को ले गए। पैसा पानी की तरह बहाया, पर अंत में वे प्रारब्ध के समक्ष न टिक पाए, पुत्र की मृत्यु हो गई। तब से उनका विश्वास पुरुषार्थ पर से हट गया, वे भाग्यवादी बन गए, और भाग्य का ही दूसरा नाम प्रारब्ध है। ऐसा बहुतों के साथ होता है। जब तक हमारे मन के अनुसार सारे काम बनते रहते हैं, तब तक हम बड़े पुरुषार्थी होते हैं, पर जब काम बिगड़ने लगते हैं, चेष्टा करने पर भी सफलता नहीं मिलती, तो हम टूटकर भाग्य का सहारा लेते हैं। भाग्य के संबंध में हमारी धारणा यह है कि वह एक ऐसी शक्ति है जो दिखती नहीं, पर जो मनुष्य के जीवन की घटनाओं का उसी प्रकार संचालन करती है जैसे एक सूत्रधार यवनिका के पीछे से कठपुतलियों को नचाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम अतियों में रहना पसंद करते हैं। कोई पुरुषार्थ का एक अति पसंद करता है, तो कोई भाग्य का दूसरा अति। पर जीवन की घटनाओं के पीछे पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों ही विद्यमान है। एक को छोड़कर दूसरे का ग्रहण करना संतुलित दृष्टि नहीं है। हमारा जीवन इन दोनों के द्वारा नियंत्रित होता है। यदि हम असफलताओं से टूटकर ऐसा मान लें कि जीवन में पुरुषार्थ नाम की कोई चीज नहीं है, तब हम में जड़ता अकर्मण्यता आ जाएगी। हमारी वृत्ति भाग्य भरोसे बैठे रहने की होगी और हम अतिवाद के शिकार हो जाएंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इन दोनों का एक दृष्टांत के माध्यम से सुंदर समन्वय किया है। वे कहते हैं, मान लीजिए हम ताश खेलने बैठे। ताश की जो पत्तियां हमारे हाथ में आई, यह है प्रारब्ध का पक्ष। पर इन पत्तियों से हम खेल किस प्रकार खेलें, यह पुरुषार्थ का पक्ष है। हम जितना पुरुषार्थ व्यक्त करेंगे, हमारे जीतने की उतनी संभावना बनी रहेगी। इसी प्रकार जीवन में जो परिस्थितियां हमें प्राप्त हैं, वे प्रारब्ध या भाग्य के कारण। अब इन परिस्थितियों का उपयोग हम कैसे करते हैं, यह हमारे पुरुषार्थ पर अवलंबित होगा। यदि हमें एक बार असफलता मिलती है, तो हम दोबारा प्रयत्न करेंगे। यही जीवन के प्रति संतुलित दृष्टि है।
1: ये था आज का चिंतन।

राक्षसों तथा पापाचारियों से आतंकित पृथ्वी तथा ब्रह्मा सहित देवताओं ने परम पिता की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। तब गंभीर आकाशवाणी हुई, हे मुनिसिद्ध और देवताओं के स्वामी, भयभीत न हो। तुम्हारे कल्याण के लिए मनुष्य रूप धारण करके मैं सूर्यवंश में अवतरित होऊंगा। अदिति तथा कश्यप ने कठोर तपस्या करके मेरा वरदान प्राप्त किया और वे ही कौशल्या तथा दशरथ के रूप में अयोध्या में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर श्रेष्ठ चार भाइयों के रूप में मैं अपनी परम शक्ति समेत पैदा होऊंगा। आकाश में गूंजती ब्रह्मवाणी अपने कानों सुनकर सभी देवता आश्वस्त हुए।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान में आज का प्रसंग। इस समय सुबह के 6:45 हो चुके हैं। वक्त है आज की कृषि चर्चा का। वाचक स्वर सीमा कराहे का।
1: राम राम। किसान भाई बहनों, आज हम कृषि चर्चा में बात करांगा लोबिया की खेती पर। भाई बहनों, लोबिया की खेती दलहन फसल का रूप में करी जाए, एक चौड़ा फल्ली का नाम से भी जाने जाए। एक कच्ची फल्ली न को उपयोग सब्जी बनावना में करे जाए, साथ ही एक दाना में भरपूर मात्रा में प्रोटीन हो, एक उपयोग कई रूप में करे जाए। एक उपयोग पशु न का हरा चारा का रूप में भी करे जाए। पौधा का पकड़ा का पहला खेत का जोती न एक हरी खाद का रूप में भी उपयोग करे जाए। लोबिया का पौधा का विकास कर लेना अधिक बारिश की जरूरत नहीं रहती। एक पौधा भूमि में नमी बनाई न रखा, लता न झाड़ीदार रूप में पाया जाए। एक ही फली न की लंबाई 1.5 से 1 फीट तक पाई जाए। एक पौधा का विकास कर लेना शुष्क मौसम की जरूरत रहे। भाई बहनों, एक ही खेती हल्की भारी रेतीली दोमट सभी तरह की भूमि में करी जाए। भूमि में जल भराव की समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जल भराव की स्थिति में पौधा को विकास नहीं हो पाता। खेत का लेना भूमि को पीएच मान 6 से 8 का बीच होना चाहिए। बात करें जलवायु न तापमान की, तो लोबिया की खेती का लेना समशीतोष्ण जलवायु की जरूरत रहे। लोबिया की खेती गर्म मौसम सबसे अधिक उपयुक्त रहे। अधिक गर्मी भी एक विकास का प्रभावित नहीं करती। लोबिया की खेती का लेना बीज का अंकुरित होना का लेना 20 डिग्री का आसपास तापमान की जरूरत रहे। अंकुरित होने के बाद एक पौधा 35 डिग्री तापमान पर आसानी से विकास करी ले। 15 डिग्री से कम तापमान एक पौधा का विकास का लेना नुकसानदायक छे। सामान्य तापमान पर ही विकास करे। उन्नत किस्म की बात करा तो काशी उन्नति, स्वर्ण सी 152, पूसा बरसाती, पंत लोबिया, लोबिया 263, ये एक ही उन्नत प्रजाति न छे ना। बात करें खेत की तैयारी की, तो खेती का लेना शुरुआत में खेत में उपस्थित फसल अवशेष न का मिट्टी में मिलाई देवा। ओका बाद मिट्टी पलटना वाला हल सी गहरी जुताई करीना खेत का कुछ समय का लेना खुलो छोड़ी देवा। एक बाद जैविक खाद का रूप में पुरानी गोबर की खाद का उचित मात्रा में मिलाई ना मिट्टी में मिलाई देवा। खाद का मिट्टी में मिलावना का लेना खेत में कल्टीवेटर का माध्यम से 2 से 3 तिरछी जुताई करी देवा। ओका बाद खेत में पानी चलाई ना खेत को पलेवा करी देवा। पलेवा करना का 3 से 4 दिन बाद जब खेत की मिट्टी ऊपर से हल्की सूखना लगा, तब खेत में रोटावेटर चलाई ना मिट्टी का भुरभुरी बनाई लेवा। एक बाद खेत में पाटो चलाई ना भूमि का समतल बनाई लेवा, ताकि बारिश का मौसम में खेत में जल भराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होए। अब बात करें बीज की मात्रा न उपचार को। लोबिया का बीज नखा खेत में लगावना से पहले उपचारित कर लेवा, ताकि बीज नको अंकुरण अच्छो हो जाए। बीज नखा उपचारित करना का लेना थायरम कार्बन डाइजिम दवा की उचित मात्रा का उपयोग करना चाहिए। 1 हेक्टेयर में लोबिया की रोपाई का लेना 25 से 30 किलो बीज की जरूरत रहे। हरी खाद न हरा चारा की खेती का लेना 35 से 40 किलो बीज की जरूरत रहे। लोबिया का बीज की रोपाई हरा चारा न हरी खाद का लेना करी जाए। एक लेना छिड़काव विधि को उपयोग करना अच्छो रहे। एक लेना पहला बीज का खेत में छिड़की देवा। एक बाद कल्टीवेटर का पीछा पाटो बांधी न खेत की 2 बार हल्की जुताई करे देवा, ताकि एक दाना मिट्टी में अच्छा से मिली जाए। लोबिया की पैदावार लेना का लेना एक ही रोपाई मेड़ पर पंक्ति नमा करी जाए। पंक्ति नमा रोपाई का समय एक बीज न का 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में डाली देवा। एकासी बीज न को अंकुरण प्रभावित नहीं होतो। एक बीज की रोपाई का लेना फैली न विकास करने वाले किस्म न की रोपाई मेड़ का बीज 2 फीट न झाड़ी का रूप में विकास करने वाले किस्म न का लेना 1 फीट की दूरी होनो चाहिए। मेड़ पर पौधा का बीज 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी होनो चाहिए। बात करें सिंचाई की, तो लोबिया का पौधा का सिंचाई की ज्यादा जरूरत नहीं रहती, लेकिन गर्मी का मौसम में हरी फल्ली का लेना सिंचाई की जरूरत रहे। सप्ताह में 1 बार सिंचाई जरूरी रहे। बात करें उर्वरक न की, तो लोबिया का पौधा का उर्वरक की सामान्य जरूरत है। एक लेना शुरुआत में जैविक खाद का रूप में प्रति हेक्टर 12 से 15 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद खेत में छिड़की न मिट्टी में मिलाई देवा। एक अलावा 2 बार NPK की मात्रा को छिड़काव खेत में आखिरी जुताई का समय करा। NPK खरीदता समय कम नाइट्रोजन की मात्रा वाला खरीदा, क्योंकि एक पौधों खुद जमीन में नाइट्रोजन की पूर्ति करे। बात करें खरपतवार नियंत्रण की, तो लोबिया की खेती में खरपतवार नियंत्रण रासायनिक न प्राकृतिक दुई तरीका से करो जाए। रासायनिक तरीका से नियंत्रण कर लेना बीज न की रोपाई का तुरंत बाद पेंडी मेथोलिन की उचित मात्रा को छिड़काव कर देना चाहिए। एकासी खेत में नई खरपतवार जन्म नहीं लेती। प्राकृतिक तरीका से खरपतवार नियंत्रण पौधा की निराई न गुड़ाई करी न करो जाए। एक लेना शुरुआत में बीज की रोपाई का लगभग 20 से 25 दिन का बाद पहली गुड़ाई कर देना चाहिए। पहली गुड़ाई का बाद बाकी की गुड़ाई 15 दिन का अंतर में करना चाहिए। लोबिया का पौधा में 2 से 3 गुड़ाई

0: કાપી છે. ભાઈ બહેનો, આજ કી કૃષિ ચર્ચામાં બસ એટલું જ. રામ રામ.
1: અભી આપ સુન રહે થે કૃષિ ચર્ચા. आइए श्रोताओं, अब आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में. अब से कुछ देर बाद यानी सुबह 7 बजे विशेष कार्यक्रम में सुनिएगा साहित्यकार आलोक सेठी से आरती शर्मा की बातचीत. विषय यात्राएं, जीवन का सुखद अनुभव. सात बजकर 20 मिनट पर होगा साप्ताहिक कार्यक्रम गुड मॉर्निंग खंडवा. 8 बजकर 15 मिनट पर और शाम 5 बजकर 30 मिनट पर सुनिएगा निमाड़ी लोकगीत. फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके मीठे गीत आप सुन सकते हैं सुबह 8 बजकर 30 मिनट पर. सुबह 10 बजे हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम जिले की चिट्ठी. सुबह 10:05 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग. 10:35 पर प्रसारित करेंगे ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम. इसमें बहनें सुन सकती हैं श्रमिक बहनों के लिए योजनाएं व सुविधाएं विषय पर ग्राम लोहारी के सहायक सचिव नामदेव पटेल से अंतिम बाला पटेल की बातचीत. सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, दिन में 11 बजे से शाम 5 बजकर 30 मिनट तक आनंद लीजिएगा राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों का. शाम 6 बजे युववाणी कार्यक्रम का आज का आकर्षण होगा क्रम कुछ बातें कुछ गीत. शाम 6:30 पर आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का. शाम 7:21 पर किसान श्रोताओं के लिए होगा उनका अपना कार्यक्रम खेती गृहस्थी, जिसमें होगी खेती किसानी संबंधी जानकारी और मनोरंजन के लिए निमाड़ी लोकगीत. रात 8 बजे से रात 11 बजे तक राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे. तो श्रोताओं, ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के संदर्भ में.

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। लीजिए सुनिए आज की ताजा खबर। आज की ताजा खबर में पेश है समाचार पत्रों की सुर्खियां। शहर में डिजिटल जनगणना के पहले दौर के 8 दिनों में लगभग 25,674 मकानों की गणना हो चुकी है, जबकि अनुमानित मकानों की संख्या लगभग 55,000 आंकी गई है। अब तक पहले दौर का लगभग 37-40% काम पूरा हो गया है। शहर में 6 जोन के 302 ब्लॉक क्षेत्र में 400 से ज्यादा कर्मचारियों का अमला इस कार्य में लगा है। प्रगणकों की परेशानी दूर करने के लिए नगर निगम ने जिलोद्यान में कंट्रोल रूम बनाया है। 20 मई तक प्रगणकों को काम पूरा करना है। एक जिला एक उत्पाद के तहत चयनित जिले के प्रमुख उत्पाद प्याज अरबी टमाटर के उत्पादन प्रोसेसिंग एवं मार्केटिंग के संबंध में ग्रामीण आजीविका मिशन के स्व सहायता समूह की महिलाओं को 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। कलेक्टर श्री ऋषभ गुप्ता के निर्देशन में यह प्रशिक्षण 5 से 9 मई तक सीवी रमन यूनिवर्सिटी के सहयोग से आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि

प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को नवीन आजीविका गतिविधियों से जोड़ना है। रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कलेक्टर ऋषभ गुप्ता के निर्देश पर जिला प्रशासन ने ओमकारेश्वर में रक्तदान करने वाले श्रद्धालुओं को ज्योतिर्लिंग मंदिर में वीआईपी प्रोटोकॉल अनुसार निशुल्क दर्शन करवाने की व्यवस्था की है। रविवार को दर्शनार्थियों ने 50 यूनिट रक्तदान कर निशुल्क वीआईपी दर्शन सुविधा का लाभ उठाया। वन प्रशिक्षण केंद्र आवलिया में नए प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ रविवार को मंत्री विजय शाह ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कौशल विकास युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का सशक्त माध्यम है। इस प्रशिक्षण केंद्र का मुख्य उद्देश्य आदिवासी और ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण देकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाने और मैदानी अधिकारियों की जनता के बीच उपलब्धि बढ़ाने के लिए जिले में पुलिस द्वारा लोगों के बीच पहुंचकर जनसंवाद किया जा रहा है। रविवार को अलग अलग थानों में अपने अपने क्षेत्र में चौपाल लगाकर ग्रामीणों से सीधे चर्चा की गई। अब खेल समाचार। आईपीएल 19 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियन को 2 विकेट से हराया। यह उसकी इस सीजन की 7वीं जीत रही और 14 अंकों के साथ टीम पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई। एक नजर मौसम के हाल पर। राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं के असर से गर्मी ने एक बार फिर तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। 5 दिन बाद पारा 42.1 डिग्री दर्ज हुआ। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। लू चलने की संभावना बनी हुई है। दिन का अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस रहा और कल के दिन का न्यूनतम तापमान 23.0 डिग्री सेल्सियस रहा। समाचारों का संकलन किया फैयाज खान ने।

0: आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 7 बजने को है, ये वक्त है हमारे विशेष कार्यक्रम का। तो विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपकी भेंट करवा रहे हैं साहित्यकार आलोक सेठी से, भेंटकर्ता आरती शर्मा। विषय है यात्राएं, जीवन का सुखद अनुभव। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत। यात्राएं, जीवन का अनूठा रंग, ये विषय लेकर हम आज आपके बीच हाजिर हुए हैं प्रसिद्ध साहित्यकार और उद्यमी आलोक सेठी जी, जिनको आप सभी जानते हैं, बहुत ही घुमक्कड़ प्रवृत्ति के हैं। जीवन में यात्राओं के क्या मायने हैं, इस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगी। तो सबसे पहले आपका स्वागत है, नमस्कार।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: जीवन में यात्राओं के क्या मायने हैं?
1: मेरा मानना है कि यात्राएं हमारी सांसों का रिचार्ज करती हैं
0: जी।
1: और जीवन में यात्राओं से बड़ा कोई स्कूल भी नहीं है। एक शेर याद आता है कि सैर कर दुनिया की प्यारे, जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी रही भी तो नौजवानी फिर कहाँ। एक ग्रीक लोक नायक थे यूलिसिस, जब अनेक देशों को जीत करके वो अपनी माँ के पास पहुँचे तो उनकी माँ ने उन्हें कहा कि बेटा, इस बार फिर वापस दुनिया जानने के लिए निकली है, और इस बार जीतने के लिए नहीं, एक छात्र बनकर जाइए और देखिए दुनिया क्या है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि घर छोड़े बगैर कोई बुद्ध नहीं हुआ, यात्राएँ करना चाहिए, निकलना चाहिए।
0: बहुत बड़ी बात कह दी आपने कम शब्दों में कि हमें सीखने के लिए तो यात्राएं करनी ही चाहिए। ये लगभग 70-80 देशों की सील आपके पासपोर्ट पर लगी है, तो कितनी दुनिया घूम चुके हैं अब तक?
1: प्रभु कृपा रही कि जो अभी तक जितने देश दुनिया में घूमे जाने चाहिए वो लगभग सारे ही हो गए हैं जी।
0: बहुत बड़ी बात है आलोक जी, आपने सारे देश लगभग

0: में है, तो इनमें से कौन सा देश आपको सबसे बेहतर लगा और क्यों लगा?
1: बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने, और प्रश्न बहुत बार आता है, लेकिन इसका जवाब वैसा ही है जैसे मैं आपसे पूछूं कि शोले, अमर प्रेम, हम आपके हैं कौन, दीवार, इन सब में कौन सी फिल्म अच्छी लगी। तो हर फिल्म की अपनी खूबी है। वैसे अगर आप बाली देखें तो उनमें बाली के लोग बहुत अच्छे हैं, केप टाउन की प्राकृतिक सुंदरता बहुत अच्छी है। हम शंघाई बीजिंग चले जाए तो डेवलपमेंट मिलेगा। अगर हम दुबई जाते हैं तो दुबई कैसे अपने आप को चेंज करते हैं वो दुबई सीखने को मिलेगा। हर देश की अपनी खूबसूरती है, अपने लोग हैं, अपनी संस्कृति है। फिर भी अगर प्रश्न है तो मैं मानता हूँ कि न्यूजीलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ कुदरत ने अपनी सारी नियामतें उस देश पर बरसाई है। और मैंने एक जगह लिखा भी था कि न्यूजीलैंड एक कुदरत की बनाई हुई ऐसी पेंटिंग है जिसका रंग अभी भी गीला है।
0: न्यूजीलैंड आपको बहुत अच्छा लगा प्राकृतिक दृष्टिकोण की नज़र से। जी जी, तो अब मुझे थोड़ा सा जहन में एक बात आ रही है कि यात्राओं में किन किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि यात्राओं पर जाने के लिए उत्साह तो बहुत होता है, लेकिन इनके बारे में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिनके बारे में ध्यान रखना चाहिए?
1: बड़ा अच्छा प्रश्न है। एक शेर फिर याद आता है कि परदेश जाकर थोड़ा बदल जाना चाहिए और घर काटने को लगे तो निकल जाना चाहिए। जरूरी है कि जब हम यात्राओं पर निकले हैं तो घर को घर छोड़ करके जाएं। बहुत सारे लोग जब बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियों को साथ में लेकर निकलते हैं। तो यात्राओं में हम जितना उन्मुक्त होकर घूमेंगे उतना ज़्यादा बेहतर देख पाएंगे। सुबह से उठकर निकल जाइए सारे संतापों को छोड़ करके, और समुद्र को, अगर एक्चुअल में समुद्र का आनंद लेना हो तो आप किनारे पर बैठकर नहीं लगा सकते, देख सकते हैं, आपको उसमें गोता लगाना होता है। उसी तरह जिस भी शहर देश में गए, वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ के लोग कैसे हैं, जब तक हम उनसे मिलेंगे नहीं, दोस्ताना नहीं होंगे, जब तक हो सकता है हम सिर्फ बाहर से देख करके आएगा, उसमें भीगेंगे नहीं।
0: जी, ये भी बात सही कही आपने कि जब यात्रा में जा रहे हैं या किसी काम को कर रहे हैं तो पूरी तन्मयता के साथ करना है, तो उसमें जैसा आपने कहा कि समुद्र का आनंद लेना हो तो किनारे पर बैठकर नहीं लिया जा सकता, उसमें डूबना तो पड़ता ही है। आपने कहा यात्राएं सिखाती हैं, बहुत कुछ सिखाती हैं, तो कोई वाकया या कोई सीख जो हमसे साझा करना चाहें आप?
1: देखिए, मेरा मानना है कि दुनिया में हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से भी बड़ी यूनिवर्सिटी है पब्लिक यूनिवर्सिटी, जो लोग हमें सिखाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अगर एक छोटा सा वाक्य, बहुत सारे लोग मिले हैं और बहुत सारी जीवन में सीख मिली है, लोगों से सीखा है।
0: जी।
1: एक छोटी सी बात करूँ तो मैं कुआलालंपुर गया था, एक टैक्सी को मैंने हाथ दिया, वो टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, नाम पूछा मैंने, उसका नाम शारुल था, मुझे नाम आज भी याद है।
0: अच्छा।
1: जैसे ही टैक्सी आगे बढ़ी उसने टेप का बटन दबाया और गाना चालू हो गया, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। मैं बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने उनसे पूछा आपको हिंदी आती है क्या? बोले नहीं।
0: अच्छा।
1: तो क्यों? तो बोले मेरे पास आपका ही नहीं, मेरे पास दुनिया की हर भाषा का गाना मेरे टेप में है, और जैसे यात्री बैठते मैं गाना लगा देता हूँ।
0: क्या बात।
1: मैंने कहा बोर तो नहीं होते होंगे? बोले नहीं, यात्री के चेहरे की मुस्कान मेरी सारी थकान दूर कर देती है।
0: अरे वाह, क्या बात, क्या बात है। तो मतलब उसने आपको देखते से ही ये गीत जो है वो टेप में प्ले किया। अच्छा, और आपको आज तक याद है? हाँ। ये वाक्या जिसे आप शायद ऑपरेट करते हैं, तो उस पे भी आप यात्राओं के बारे में कुछ लिखते हैं। वहां मैंने कहीं पढ़ा था खाता रहे मेरा दिल, तो यात्राओं के लिए आपने ये खाने से कैसे जोड़ दिया इसको?
1: अच्छा लगा आप पढ़ते हैं। खाता रहे मेरा दिल नाम से कालम आता है, और मेरा मानना है कि जो पंच सितारा होटलें हैं, सात सितारा होटलें, उनके तो खाना और व्यंजन अपने आप में एक जैसे होते हैं।
0: जी।
1: किसी भी शहर में आप जा रहे हैं तो जो लोकल कुजीन है वहाँ का, वहाँ लोकल, वहाँ के जो व्यंजन है, अगर उनका आनंद नहीं लिया तो फिर वही जो बात हुई कि आप अधूरे रह जाएंगे। तो अगर मैं मैसूर गया तो वहाँ का जो फेमस डोसा बनाते हैं वहाँ जाऊँगा, होटल को छोड़ करके रतलाम गया तो वहाँ की दाल बाटी खा के आऊँगा और लिखूंगा। तो खाता रहे मेरा दिल के अंदर हम वहाँ के जो लोकल कुजीन है उनकी बात करते हैं।
0: अच्छा अच्छा, जी जी। आलोक जी, एक चीज़ है कि हम जब यात्राओं के लिए जाते आते हैं तो जब हमारा सफ़र शुरू होता है तो हमारे सफ़र में कई लोग हमारे आगे पीछे चलते हैं, वो हमारे हम सफ़र भी हो जाते हैं और हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि इन के साथ हमारा कोई गहरा रिश्ता सा बन जाता है। तो ये सफ़र और हम सफ़र का जो गहरा रिश्ता है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ऐसा आपके साथ हुआ है?
1: देखिए, सफ़र की खूबसूरती हम सफ़र से ही तय होती है।
0: जी।
1: और उससे अगर हमें जुड़ना है तो मुझे लगता है तीन या चार बातों का ख्याल करना चाहिए। एक तो प्रशंसा सबको अच्छी लगती है, तो किसी में अगर कोई खूबी हमें नज़र आती है उस पर बात करना चाहिए। हम सफ़र की अगर मदद कर पा रहे हैं, कोई बुजुर्ग उसकी अटैची उठा पा रहे हैं, तो एक दोस्ताना संबंध बनता है।
0: बिल्कुल।
1: एक और सीख देना चाहूँगा कि टिप अगर हम देते हैं चाहे बेरे को चाहे ड्राइवर को, उसे अगर आप एडवांस में दे देंगे तो हो सकता है उसकी सर्विस आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगी। चौथी और अंतिम

0: बात कि कभी भी सफर में मेरा मानना है कि बहस में कोई नहीं जीतता, संबंध हारते हैं। तो हमेशा व्यर्थ के विवादों से बचे, निजी बातों पर, विषयों पर बात करने से बचना चाहिए। और कैसे हम उनसे दोस्ताना बनते हैं, और सबसे आखिरी बात जब हम वहाँ से वापस आ जाते हैं तो आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना, हमने आकर के आभार जरूर व्यक्त करना चाहिए।
1: क्या बात है, ये जो बातें आपने कही ना मुझे बड़ी दिल तक छू गई कि बहस में कोई नहीं जीतता। एक तो आपने ये जो बात कही है तो ये इससे बचना चाहिए यात्राओं के दौरान। ये क्या है, बाहर जहाँ भी हम यात्रा करने जाते हैं वहाँ हमारी खुद की भी छवि एक हमको बनानी है, तो इससे भी हमें बचना चाहिए। और अब बात करते हैं भारत की, पर्यटन की दृष्टि से भारत बहुत समृद्ध है।
0: देखिए वाकई में उस नीली छतरी वाले का हमने शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने भारत को इतना नवाजा है। एक ऐसा देश है जहाँ आपके पास समुद्र भी है, बगीचे हैं, पहाड़ हैं, मंदिर हैं, किले हैं, सब हैं। कई चीज छूटती है तो प्रस्तुति के बहुत मायने आज तारीख में। आप मान नवाजी अगर हम ठीक कर पाए, लोगों को लंबा चला पाए, तो कोई दो मत नहीं है कि भारत पर्यटन में दुनिया का सबसे अव्वल देश हो।
1: में आप और क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से?
0: मैं खंडवा में आलोक सेठी हूँ, आपकी अपनी पहचान है। खंडवा में हम लोग एवरीथिंग है, इंदौर हो सकता हम जाकर समथिंग हो जाएंगे, और हम बम्बई या दिल्ली पहुंच जाएंगे, भारत के बाहर चले जाएंगे तो हम वहाँ नथिंग हो जाएंगे। तो वहाँ फिर आपका हुनर क्या है, आपकी काबिलियत क्या है, आपकी सोच क्या है, वो आपको काम आती है। तो अगर हमको स्वयं से बाहर निकलना है, हमको अपना शहर और गांव छोड़ना ही पड़ेगा।
1: अपने अनुभव हमसे साझा किए इसके लिए आलोक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यात्राएं जीवन का सुखद अनुभव, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे साहित्यकार आलोक सेठी से आरती शर्मा की बातचीत।

0: अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
1: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूँ और कहाँ दूँ।
0: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
1: क्यों?
0: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
1: वो कैसे?
0: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
1: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
0: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
1: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
0: आप कब आ रहे हैं?
1: आकाशवाणी खंडवा पर।
2: FM 101.2 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का खंडवा केंद्र। सजन रेडियो
3: बजाइयो बजाइयो बजाइयो सारा।
4: जी हाँ साथियों, तो सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन
5: आकाशवाणी खंडवा।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार होंगे।

आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमनाथ अमृत पर्व में करेंगे कुंभाभिषेक।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कूनो में दो मादा चीते किए आजाद। गुना में अदानी समूह की नई सीमेंट इकाई की रखी गई नींव। केंद्रीय संचार मंत्री सिंधिया ने कहा, अब प्रदेश छोड़कर नहीं जाएंगे युवा। और प्रदेश में टर्फ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन से 8 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के अवसर पर आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व में भाग लेंगे। वे भगवान सोमनाथ की पूजा और कुंभाभिषेक करेंगे और इसके बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में एक रोड शो भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हैदराबाद में कई बड़ी

0: साइबराबाद देश और दुनिया दोनों के लिए अहम है और तेलंगाना को बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए जहीराबाद में एक इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित की जाएगी। श्री मोदी ने देश हित में लोगों से एक साल तक सोना खरीदने से बचने और पेट्रोल डीजल का उपयोग संयम के साथ करने की अपील भी की।
1: भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है। सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है, पेट्रोल डीजल गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें।
0: असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने भाजपा नेता हिमंता बिस्वा सरमा को नई सरकार बनाने का न्योता दिया है। हाल के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 126 में से 102 सीटें जीती थी, जिनमें अकेले भाजपा को 82 सीटें मिली। राज्यपाल कल श्री सरमा और उनकी मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में दो मादा चीतों को क्वारंटीन बाड़े से खुले जंगल में छोड़ेंगे। ये दोनों चीते फरवरी 2026 में बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों में से हैं, जिन्होंने अपनी क्वारंटीन अवधि पूरी कर ली है। इस कदम से प्रोजेक्ट चीता को नई रफ्तार मिलेगी और अब भारत में कुल चीतों की संख्या 57 हो गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल गुना में अडानी समूह की अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास किया। 32 हेक्टेयर जमीन पर बनने वाली इस फैक्ट्री से 1,500 लोगों को रोजगार मिलेगा और सालाना 4 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस बदलते दौर में मध्य प्रदेश भी विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।
2: और विकास के लिए जो इंडस्ट्री के लिए जमीन चाहिए, रेल, पुल, पुलिया, सड़क, हमने कहा ये किसान कल्याण वर्ष है, इसलिए किसान की अगर विकास की जमीन भी लेंगे तो बाजार के दाम से 1 गुना नहीं, 2 नहीं, 4 गुना कीमत देकर के किसान के लिए भी उसका विकास का भागीदार बनाएंगे। ये बदलते दौर में गुना ग्वालियर पूरा क्षेत्र बदल रहा है। विकास के मामले में हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है तो गुना भी बहुत आगे बढ़ने वाला है।
0: श्री सिंधिया ने कहा कि प्रदेश में उद्योग लगाने की कोशिशें तेज हैं ताकि युवाओं को नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में न जाना पड़े।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्व सहायता समूह से जुड़कर महिलाएं आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही हैं। शिवपुरी विकासखंड के ग्राम धुवानी की इंदिरा जाटव भी ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है, जिन्होंने स्व सहायता समूह से जुड़कर अपनी जिंदगी बदल ली है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे शिवपुरी संवाददाता रंजीत गुप्ता।
4: इंदिरा जाटव ने वर्ष 2016 में समूह गठन की प्रक्रिया से जुड़कर बांकड़े बाबा स्व सहायता समूह का गठन किया और समूह की अध्यक्ष बनी। समूह से जुड़ने के बाद उन्होंने सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने स्कूल गढ़वे सिलाई के माध्यम से आय अर्जित की। महिला इंदिरा जाटव ने बताया कि वे पहले मजदूरी और कृषि कार्य करती थी, लेकिन अब समूह से जुड़कर आत्मनिर्भर बन गई है।
5: महिला समूह से नहीं जुड़ी थी तो मेरी कोई आमदनी थी, लेकिन सिलाई कढ़ाई के प्रशिक्षण प्राप्त करने से मेरी आय बढ़ गई है।
4: मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के DPM डॉक्टर अरविंद भार्गव ने बताया कि
6: जो हमारे समूह से महिलाएं जुड़ी हैं, उनको आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। शिवपुरी जिले में इंदिरा जाटव किया है और वो 12,500-13,000 रुपए प्रति माह कमा रही है। और जो प्रधानमंत्री का सपना था कि लखपति दीदी बने, तो वो लखपति दीदी की श्रेणी में भी आ चुकी है।
4: आकाशवाणी समाचार के लिए शिवपुरी से मैं रंजीत गुप्ता।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल सीहोर के भैरुंदा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 के कार्यक्रम में प्रदेश को 830 करोड़ रुपए का आवंटन सौंपा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 973 सड़कों को मंजूरी दी गई है और कोई भी गांव पक्की सड़क से वंचित नहीं रहेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2055 करोड़ रुपए की मंजूरी भी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को

भी गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि खादी सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि देश की पहचान है और आत्मनिर्भर एमपी के लिए खादी और ग्रामोद्योग सरकार की बड़ी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बुनकर मुद्रा योजना के तहत पिछले 3 साल में 194 बुनकरों को 268 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज दिया गया है। मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के मौके पर विज्ञान भवन में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन करेगा, जिसमें भोपाल के 27 स्कूलों कॉलेजों के 250 से ज्यादा छात्र शिक्षक भाग लेंगे। कार्यक्रम में विशेषज्ञ स्वदेशी तकनीक और विज्ञान की अहमियत पर बच्चों से रूबरू होंगे। इसके साथ ही एक रोबोटिक्स वर्कशॉप भी होगी, जिसमें बच्चे खुद टीमें बनाकर रोबोटिक्स मॉडल तैयार करेंगे। जबलपुर के बरगी बांध में 30 अप्रैल को आंधी तूफान की वजह से एमपी टूरिज्म का क्रूज डूब गया था, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई थी। अब सरकार ने इस हादसे की जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में एक जांच आयोग बनाया है। ये आयोग 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और यह भी बताएगा कि हादसे के वक्त बचाव का काम ठीक से हुआ या नहीं। साथ ही प्रदेश में चलने वाली सभी नावों और क्रूज के लिए नए सेफ्टी नियम भी तय किए जाएंगे। बात मौसम की। प्रदेश में 2 टर्फ और 1 साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव होने से आज मंडला, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा समेत 8 जिलों में 30 से ज्यादा किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी और बारिश का अलर्ट है। वहीं दूसरी तरफ भोपाल, इंदौर, उज्जैन और रतलाम समेत कई जिलों में तेज गर्मी रहेगी। कल रतलाम में पारा रिकॉर्ड 45.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में यह मिलाजुला मौसम अभी कुछ दिन और बना रहेगा। अब बात खेल की। प्रदेश की शूटर नीरू दंडा ने कजाकिस्तान के अल्माटी में चल रहे ISSF वर्ल्ड कप 2026 में ट्रैप मिक्स्ड टीम इवेंट में विवान कपूर के साथ मिलकर कांस्य पदक जीता है। नीरू राज्य शूटिंग शॉटगन अकादमी की खिलाड़ी हैं। खेल मंत्री विश्वास सारंग ने नीरू को बधाई देते हुए कहा कि ये पूरे प्रदेश के लिए गर्व का पल है। रायपुर में कल रात खेले गए आईपीएल मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 167 रन बनाए, जिसमें तिलक वर्मा ने 42 गेंदों पर 57 रन की अहम पारी खेली। बेंगलुरु ने 8 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल किया और भुवनेश्वर कुमार ने 4 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता। वहीं आज धर्मशाला में 7:30 बजे पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर के गौरीघाट पर 4 दिवसीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संपन्न। होमगार्ड और एसडीआरएफ के जवानों ने किया अभ्यास। बैतूल के नंदावन धन विकास केंद्र में आज न्यूजीलैंड का प्रतिनिधिमंडल करेगा भ्रमण। मधु संग्रहण और जनजातीय आजीविका गतिविधियों का लेगा जायजा। रतलाम टिकट चेकिंग टीम ने 3,41,00,000 रुपये का राजस्व अर्जित कर पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल में बनाया नया रिकॉर्ड। बालाघाट के कान्हा टाइगर रिजर्व में जंगली भैंसा पुनर्स्थापना कार्यक्रम का 2रा चरण पूरा। 4 जंगली भैंसे विशेष बाड़े में किए गए मुक्त। डिंडोरी में आरोह ग्रीष्मकालीन कैंप के तहत मां नर्मदा तट पर विशेष संडे एक्टिविटी का आयोजन हुआ। और पन्ना जिला चिकित्सालय में 4 से 10 मई तक चले अग्नि सुरक्षा सप्ताह में मरीजों, परिजनों और अस्पताल स्टाफ को फायर सेफ्टी का प्रशिक्षण दिया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: एथमेटिक स्वीक 2.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 7:20 हो चुके हैं। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गुड मॉर्निंग खंडवा। गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। इस बार का सफर आप तय करेंगे आरती शर्मा के साथ, तो स्वीकार करें मेरा नमस्कार।

आभार। श्रोताओं, कहा गया है कि स्वभाव ही इंसान की सबसे बड़ी कमाई गई दौलत है, क्योंकि जिनका स्वभाव अच्छा होता है वो भले ही आपसे कितने ही दूर क्यों ना हो, कभी ना कभी अच्छी यादें बनकर जहन में आ ही जाती हैं और अच्छी यादों के ज़रिए एक प्यारी सी मुस्कुराहट दे जाते हैं।

0: बातचीत की भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर के टेक्निकल सुपरवाइजर श्री शैलेंद्र वर्मा से।
1: शैलेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार।
2: नमस्कार मैम, और आपके श्रोताओं के को भी नमस्कार।
1: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस क्यों मनाया जाता है और कैसे शुरुआत हुई?
2: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई 1998 से शुरुआत की गई थी। इसकी अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री जी थे, जिन्होंने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, उसकी सफलता के याद में यह दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य, मेन उद्देश्य है युवा वैज्ञानिकों, उद्यमियों और स्टार्टअप्स को प्रेरित करना, तकनीकी इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था।
1: वर्तमान में आप चूंकि एक प्रौद्योगिकी संस्थान से जुड़े हुए हैं जो कि पूरी तरह से युवाओं को तकनीकी शिक्षा दे रहा है, युवाओं को नवाचार के लिए किस तरह प्रेरित किया जा रहा है?
2: देखिए, हमारे यहाँ पे बहुत सारी एरियाज में रिसर्च किया जा रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो बिग डेटा एनालिटिक्स, जनरेटिव एआई, साइबर सिक्योरिटी, फिजिकल सिस्टम्स, एम्बेडेड सिस्टम्स, हार्डवेयर सिक्योरिटी, इन विषयों पर बहुत ही अच्छे तरीके से रिसर्च किया जा रहा है। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पे एग्री हब एक प्रोजेक्ट भारत सरकार ने दिया है, जिसमें सोयाबीन रिसर्च सेंटर और IIT इंदौर मिलकर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है, जिसमें किसानों के लिए तकनीकी का यूज करके उनकी फसलों में लगने वाली बीमारियों और उसको कैसे रेक्टिफाइड किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए, रेक्टिफाई किया जाए, उसके ऊपर काम चल रहा है।
1: अच्छा,
2: किसानों को बहुत फायदा हो रहा है अभी उस प्रोजेक्ट के थ्रू।
1: जी, किसान भाई यदि सेंटर का फायदा उठाना चाहते हैं तो कैसे संपर्क करेंगे वो?
2: बिल्कुल मैम, इसके लिए एक वेबसाइट भी है हमारी एग्री हब की, साथ ही साथ इस पे टाइम टू टाइम वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। अच्छा। हमारे किसानों के लिए, प्लस किसानों से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं,
1: जी,
2: जो स्टार्टअप हैं, उनके लिए 3 महीने 6 महीने में एक बार वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है उनके बेनिफिट्स के लिए।
1: जी,
2: तो आप किसानों के लिए तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है भारत सरकार के द्वारा, जिसको वो यूज कर सकते हैं अपनी फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए और अलग अलग तरीके से उसको पैदावार को बढ़ाने के लिए।
1: युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से नवाचार से जुड़े?
2: युवाओं के लिए मेरा संदेश सिर्फ यही है कि जो भी काम करें उसे लगन से करें। आज के युग में तकनीक और नवाचार का युग है, जहाँ कंप्यूटर और विज्ञान ने हमारे जीवन में काफी क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। युवाओं को यही संदेश है कि जो भी कार्य करें, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, संचार आदि में तकनीकी का यूज करके करें, जिससे उनको काफी सफलता प्राप्त होगी। तकनीकी एक केवल मशीन के साथ नहीं कार्य नहीं करती, बल्कि भविष्य का निर्माण भी करते हैं।
1: आजकल AI का जो युग है उसको लेकर युवाओं में एक संशय की स्थिति है कि AI जो है हमारी नौकरियों को खत्म कर रहा है, तो क्या आप मानते हैं कि ये है ऐसा?
2: AI हमारी जॉब्स को खत्म नहीं कर रहा है, AI के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। AI को बनाने के लिए तो इंजीनियर की आवश्यकता पड़ेगी ही, जो उस पर काम करेंगे, तो AI एक जॉब्स खत्म नहीं करेगा।
1: तो आपका ये मानना है कि AI को बनाने वाला भी एक इंजीनियर, को डेवलप करने वाला भी एक डेवलपर है, तकनीकी क्षेत्र से जुड़े युवाओं की आवश्यकता इसमें हमेशा रहेगी। शैलेंद्र जी, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए?
2: आज के टाइम में साइबर फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, जैसे किसी भी ऐप पर आप ब्लाइंडली भरोसा ना करें, पहले वेरीफाई करें, देन उसके बाद ऊपर के किसी भी अननोन लिंक एकदम से ना ओपन करें, पहले वेरीफाई करें, देन उसके बाद ओपन करें।
1: हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी, नमस्कार।
2: धन्यवाद मैम।
0: श्रोताओं, टेक्नोलॉजी के बारे में तो हमने जान लिया। देखिए, ये जो टेक्नोलॉजी है ये तो समय के साथ बदलती ही जा रही है और इसके जरिए हम प्रगति पथ पर अग्रसर भी हैं, हमारे जीवन जीने का तरीका भी बदल रहा है। अगर कुछ नहीं बदल रहा है तो वो है जिंदगी के उतार चढ़ाव। कभी ये उतार चढ़ाव खुशियों भरे होते हैं तो कभी गमगीन। जिंदगी का सफर कभी संघर्ष रूपी धूप की तपिश भरा होता है तो कभी सुकून की छांव भरा। इसीलिए कहा गया है,

0: श्रोताओं, कल यानी 10 मई को था अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस और 15 मई को है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। हम बिना माँ के परिवार की कल्पना ही नहीं कर सकते, तो इसी संबंध में आइए बातचीत करते हैं हमारे खंडवा शहर की प्रतिष्ठित गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शुभांगी मिश्रा दवे से। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शुभांगी। नमस्कार।
1: नमस्कार आरती जी, एंड थैंक यू इस प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए।
0: डॉक्टर शुभांगी, जैसा कि हमने बात की, चर्चा की कि बिना माँ के परिवार की कल्पना ही नहीं की जा सकती, मैं चाहूंगी कि आप अपने जो विचार है हमें बताएं।
1: आरती जी, जब माँ के बारे में बात होती है तो वो सिर्फ दिल से बात होती है, और क्योंकि मैंने काफी समय हो गया अपनी माँ को खोए हुए, मैं ये कहना चाहूंगी कि कई किताबें लिख दी गई होंगी, लेकिन कोई भी शब्द कभी भी एक छोटे से माँ शब्द को परिपूर्ण नहीं कर सकते, नहीं समझा सकते। मेरी मम्मी भी एक हाईली एजुकेटेड गायनेकोलॉजिस्ट थी, और गायनेकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ हमारी माँ बेस्ट माँ थी। शायद सभी के लिए उनकी माँ बेस्ट होगी। शायद एक माँ ही ऐसा किरदार निभा सकती है

0: कि वो हर रोल में रोल मॉडल हो जाए। वो अपने बच्चों को पूर्णतः सहारा देती है। जब हम कहते हैं कि हम बच्चों का फर्स्ट टीचर कौन होता है, गुरु कौन होता है,
1: जी
0: तो वो माँ होती है। हम सबको पता है कि वही हमें सिखाती है खाना
1: जी
0: खाना, बोलना, चलना, मुस्कुराना, खेलना, हंसना, तो और हर चीज में परवाह करना। मुझे लगता है सबसे ज्यादा सुधारने वाली भी माँ होती है। ऐसा नहीं करो, ऐसा करो। वो ऐसा क्यों करती है? ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, पढ़ो, मेहनत करो। शायद इसीलिए कि वो हमें तैयार करना चाहती है, और वो चाहती है कि उसका बच्चा इस दुनिया में ऐसा हो जो किसी भी परिस्थिति में कोई कठिनाई आए तो उसके लिए तैयार हो, और कोई ऐसी परिस्थिति आए तो वो भाप जाए कि इसमें उसको कोई हानि होने वाली है या कुछ। मुझे लगता है जिस बच्चे को माँ ज्यादा डांटने वाली माँ मिलती है ना, वो दुनिया के लिए ज्यादा पक्का तैयार होता है, क्योंकि बाहर की दुनिया तो हमें माँ की तरह या परिवार की तरह प्रेम नहीं करेगा। वो तो हमें चैलेंज देगा, वो तो हमें कठिनाइयां दे, सिचुएशंस देगा जो शायद हल करनी पड़े हमें। शायद इसीलिए माँ बचपन से हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये दोनों ही सिखाती थी।
1: कोई

0: डॉक्टर शुभांगी, आप बात करते हैं परिवार की, तो आप एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो जब गर्भ में बच्चा आता है तो बच्चे की पहली धड़कन से तो एक माँ जो महसूस करती है, मैं समझती हूँ वो कहीं ना कहीं एक गायनेकोलॉजिस्ट भी महसूस करती है। क्या ये सही है कि गर्भ में ही संस्कार पलते हैं?
1: जी आरती जी, जो आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये मैं हर दिन आभास करती हूँ। प्रतिदिन एक लड़की को माँ में रूपांतरित होते देखती हूँ। जब मैं पहली बार को बताती हूँ कि तुम्हारे बच्चे की धड़कन आ गई है, सब लड़कियां अलग अलग होती हैं, कोई मुस्कुराती है, किसी को गुदगुदी होती है और किसी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। कई बार वो अपनी मम्मियों के साथ आती हैं, तो हमने देखा है कि वो नानी दादियों के आंखों में भी जो खुशी के आंसू रहते हैं कि ये गुड न्यूज है, और हम कंफर्मेशन देते हैं कि सब बढ़िया है, धड़कन आ गई है, वो एक अलग तरह की खुशी है, वो निशब्द होती है। माँ वो गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ हर महीने सिर्फ शरीर से ही नहीं, दिल से, आत्मा से जुड़ती रहती है। जो माँ

0: खुश रहती है तो उसमें वो खुशी वाले हार्मोन्स होते हैं जो उसके खून में बहते हैं, और वही खून से वो अपने बच्चे को सींचती है, तो वो अच्छाई खुशी वाले हार्मोन्स बच्चे को भी जाएंगे। अगर वो चिंता करती है तो वो चिंता वाले हार्मोन्स उसमें रहेंगे तो बच्चे में उससे जाएंगे। माँ जो अच्छे विचार रखेगी, अच्छा सोचेगी, अच्छा बोलेगी, तो वो जो अच्छाई वाले हैप्पीनेस वाले हार्मोन्स रहते हैं वो उसके शरीर में उत्पन्न होते हैं, वही उसके खून में मिलते हैं और उसी से वो सींचती है। माँ पढ़ाई करती है, किताबें पढ़ती है, पूजा करती है, तो उनके बच्चे नेचुरली धर्म की तरफ, अच्छाई की तरफ और परिश्रम करने की तरफ वाले बनते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे साइंटिफिकली लगता है कि गर्भ संस्कार जो कहते हैं हमारे यहाँ, पक्की बात है, तो गर्भ संस्कार एक माँ जरूर देती है।
1: मातृ दिवस और अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, इन दोनों के दृष्टिकोण से क्या आप जो संयुक्त परिवार होते हैं उनमें गर्भवती महिलाओं की देखभाल ज्यादा अच्छी तरह से हो सकती है?
0: बिल्कुल सही कहा आरती जी आपने, संयुक्त परिवार का बहुत खास रोल रहता है, क्योंकि गर्भवती महिला जो रहती है वो अकेली नहीं रहती, उसके आसपास कभी सासू माँ, कभी जिठानी, कभी ननंद के हिसाब से कोई ना कोई मार्गदर्शन देने वाला कोई ना कोई उपस्थित रहता है। ये जो हमारे पुराने जमाने में हमारी नानी दादियां सिखा करके गई हैं वो सब बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। लड़कियां असल में माँ तो उसी दिन बनती है जिस दिन उसके हाथ में बच्चा आता है, तो बच्चा एक दिन का, माँ भी एक दिन की, ये अनुभव बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं परिवार के।
1: श्रोताओं को यदि आप कोई संदेश देना चाहें तो जरूर दें।
0: हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम सब लोगों के पास भगवान ने माँ दी है, भाग्यवान है हम सब लोग कि हम हिंदुस्तान जैसे देश में हैं जहाँ पे संगठित परिवार हमें धरोहर में मिली हैं। मैं बस यही आखिर में कहना चाहूंगी, अपने माता पिता के साथ रहें, क्योंकि उनका प्रेम, उनका स्नेह और उनका आशीर्वाद, रिश्तों को निभाने वाला जो उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की शुभकामनाएं।
1: श्रोताओं, आधुनिकता की ओर बढ़ते कदमों के साथ हम प्रगति पथ पर अग्रसर हैं, लेकिन कुछ है जो हमसे पीछे छूट रहा है और वो है हमारी पुरानी परंपराएं, और उसका मुख्य कारण है संयुक्त परिवारों का एकल परिवार के रूप में विघटन। किंतु आज आधुनिकता की इस दौर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो संयुक्त परिवार की गौरवशाली परंपरा को निभा रहे हैं। आइए आपको मिलवाते हैं ऐसे ही संयुक्त परिवार के सदस्य दिनेश पालीवाल से।
2: दिनेश पालीवाल जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: जानना चाहेंगे कि आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं?
3: ठीक है, हमारे परिवार में
2: जी
3: ऐसा अभी हमारे यहाँ 27-28 लोग हैं, पर हिसाब से 28 से 29 करीब हमारे सदस्य हैं।
2: आजकल एकल परिवार की ओर बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं, तो आपके मन में कभी ऐसा नहीं आया?
3: नहीं, कभी नहीं आया। इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने देखा कि साथ में रहने से जो सुविधा है, बड़े परिवार में बच्चे बड़े कब हो जाते हैं ये पता ही नहीं चलता। अब मेरे बेटे बच्चियों को कहाँ स्कूल में ले आना है, कहाँ डॉक्टर ले आना, आज तक मुझे जाना ही नहीं पड़ा। इसकी बड़ी सुविधा आज अभी कोई भी किसी का भी बच्चा, किसी के बेटे कोई बीमार पड़े तो ऐसा नहीं कि इसका बेटा है उसका बेटी है, कोई भी जो उसमें घर उपलब्ध हो तो फटाक से उसको ले आता है। एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। लोग गलत समझते हैं कि अकेले रहने में क्या है, समय देख के नहीं आता, सब एक साथ खड़े रहते हैं तो बड़ा सहारा हो जाता है। और हम लोग समझिए महीने में एक या दो बार बाहर साथ में पूरा परिवार, बहू बेटे बेटी पोते पोती सब एक साथ खाना खाने जाएंगे, बाहर धार्मिक जगह जाएंगे, एक साथ जाएंगे, तो ये कुछ उसका आनंद ही अलग है।
2: ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम कहते हैं कि विचारों में भिन्नता होती है, तो ये सामंजस्य कैसे बैठते हैं?
3: नहीं, उसमें क्या है, सबसे बड़ी बात है सम्मान। ये हमारी मतलब तीसरी पीढ़ी है हमारे, जैसे मैं अपने बड़े भाइयों का सम्मान करता हूँ वैसे मेरे भतीजे मेरा सम्मान करते हैं, और हमारे जो बड़े भतीजे उनके सब छोटे भाई उनका सम्मान करते हैं। तो क्या है, हमारे परंपरा की बड़े का जो उससे बड़ा उसका सम्मान करते हैं, तो ऐसी कभी वो नहीं होती। हम लोग कोई भी निर्णय लेते हैं तो अधिकतर एक साथ में बैठ जाते हैं, जैसे किसी परिवार में शादी का, विवाह का हो, जन्मदिन का हो, कोई भी निर्णय हो, मकान बनाना हो, प्रॉपर्टी लेना हो, तो एक साथ बैठ के बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो उसमें जो भी विषय जिसका अच्छी राय लगती है उसको बड़े छोटे सही मानते हैं। इसमें अहम की भावना किसी में है ही नहीं, क्योंकि हमारी 6 बहू है और 6 बहुए भी एक साथ रहती है, उनमें भी कोई लड़ाई झगड़े नहीं कभी होते।
2: तो ये एक सामंजस्य वाली बात है। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
3: कि आप संयुक्त परिवार रहिए, अकेले रहने से कोई फायदा नहीं है, हमें एक परिवार में सहारा हो जाता है, एक मदद हो जाता है।

0: श्रोताओं, आगामी 17 मई को विश्व दूरसंचार एवं सूचना दिवस है, तो आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। हमें जानकारी दे रही हैं डॉक्टर प्रशंसा मालपानी।
1: डॉक्टर प्रशंसा मालपानी, सहायक प्राध्यापक, अल्वा कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज का नमस्कार। आगामी 17 मई को विश्व दूर संचार एवं सूचना दिवस है। प्रति वर्ष अनुसार इस दिवस को सभी वर्गों को जागरूक करने हेतु अलग अलग थीम पर फोकस करते हुए मनाया जाता है। आज का युग सूचना एवं संचार का युग है, जिसका इतिहास वर्षों पुराना रहा है। क्रमशः धीरे धीरे अनगिनत तकनीक अपने आधुनिकीकरण के साथ विकसित भी हो रही है। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि जिस तीव्र गति से तकनीक का विकास हो रहा है, उसने पूरे विश्व को एक कर दिया है, या हम यूँ कहें कि ग्लोबल सिटी में कन्वर्ट कर दिया है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन से लेकर आज तक हमने संचार साधनों का विकास क्रमशः धीरे धीरे होते हुए देखा है। पहले हम अगर विकास की बात करें तो ये कम्युनिकेशन

0: सीमित था जो लेटर के थ्रू और फैक्स के थ्रू किया जाता था। फिर धीरे धीरे टेलीग्राम, लैंडलाइन फ़ोन, रेडियो, टीवी, वीसीआर, पेजर्स, टेलीप्रिंटर्स, मोबाइल, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप, टैबलेट्स आदि से बहुत सारे सूचना संचार माध्यम जो है वो विकसित हुए। इन सभी के जरिए हम अपने मनोरंजन के साथ साथ महत्वपूर्ण सूचनाओं से भी अवगत हो रहे थे। वर्तमान समय में मोबाइल फ़ोन की विभिन्न तकनीक जिसमें एंड्रॉयड, आईफोन विद बहुत सारे 4G, 5G, 6G, 7G, 8G ऐसी टेक्नोलॉजीज से ये सूचना संचार के सशक्त माध्यम में विकसित हुई हैं। हम इस माध्यम से अपने सभी कार्य सुविधाजनक और समय की बचत के साथ कर पाते हैं। आज हम इस बात को बखूबी समझ सकते हैं कि आज ये सभी के पास है जो हमारी डेली रूटीन लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ, बिजनेस लाइफ में बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। मोबाइल फ़ोन के जरिए हम सूचनाओं एवं संचार आसानी से विभिन्न ऐप के थ्रू कर पाते हैं। इन टेक्नोलॉजीज जितना सुगम बनाती है उतना ही हमें जागरूकता की आवश्यकता है, क्योंकि इन सभी का उपयोग हम अगर पूर्ण जानकारी न होने पर करते हैं तो हमें दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं जिन्हें हम साइबर फ्रॉड के नाम से जानते हैं। अतः हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक सुविधा मात्र नहीं है अपितु हमारे भविष्य के सतत विकास की कुंजी है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विभाग ने बहुआयामी रोजगार संपूर्ण विश्व में उपलब्ध कराए हैं। एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे 2026 की अगर हम बात करें तो इसकी प्रमुख थीम में डिजिटल इनोवेशन को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना तथा साथ ही पर्यावरण चुनौतियों, देश की शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी एवं आर्थिक विकास में ICT के उपयोग हेतु अवगत कर जागरूक करना है। डिजिटल इनोवेशन से संबंधित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ChatGPT एवं अन्य कई आज के युग के सशक्त माध्यम हैं जिनसे हम ज्ञान अर्जित कर इनका बखूबी उपयोग अपने कार्य को कम समय में इनोवेशन के साथ बेहतर रूप से कर सकते हैं। आज देखा जाए तो ये सभी टेक्नोलॉजीज एवं माध्यम डिजिटल लाइफलाइन की तरह हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण जगह ले चुकी हैं। ये लाइफलाइन पूरे विश्व में हमारी कनेक्टिविटी को सुनिश्चित कर हमें मजबूत बनाती है और विकास की ओर ले जाती हैं। इससे न सिर्फ हमारा व्यक्तिगत विकास बल्कि वैश्विक विकास भी संभव हो पा रहा है और आगे भी इसी तरह ये विकास होता रहेगा और हमारा देश, हमारा विश्व विकसित होता रहेगा। धन्यवाद
1: श्रोताओं। हम सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए एक दूसरे से आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन एक दौर वो भी था जब खत लिखकर ही एक दूसरे का हाल जान पाते थे।

0: आज की गुड मॉर्निंग खंडवा का सफर बस यहीं तक। अब दीजिए आरती शर्मा को इजाजत। नमस्कार।
1: गुड मॉर्निंग खंडवा।
2: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग,
3: गुड मॉर्निंग खंडवा।
1: गुड मॉर्निंग खंडवा।
0: अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गुड मॉर्निंग खंडवा। प्रस्तुति आरती शर्मा की थी। एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार प्रभात हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक जनसभा में नागरिकों से एक वर्ष के लिए पेट्रोल और डीजल के संयमित उपयोग, अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचने, सोने की खरीदारी नहीं

0: करने और स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता देने जैसे उपाय अपनाने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से जामनगर से सोमनाथ पहुंचेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वे वीर हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: बाद में प्रधानमंत्री वडोदरा जाएंगे। वे शाम लगभग 6 बजे सरदार धाम हॉस्टल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना में 1000 लड़कों और 1000 लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधाएं शामिल हैं। इसमें सेंट्रल डाइनिंग हॉल, पुस्तकालय और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं भी हैं। श्री मोदी सरदार धाम परिसर में विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे, जिनमें रिसेप्शन एरिया, नागरिक सुविधाएं, डाइनिंग एरिया और ई लाइब्रेरी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है।
3: सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री सरमा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री सरमा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई गणमान्य लोगों के समारोह में शामिल होने की संभावना है। एनडीए में भाजपा, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट शामिल हैं। गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में 126 में से 102 सीटें जीती। भाजपा ने 82 सीटें हासिल की। श्री शर्मा पहली बार 2021 में मुख्यमंत्री बने थे। वह असम में पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता बनने जा रहे हैं जो लगातार दो बार मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य सचिवालय नवन्ना में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: पश्चिम बंगाल की नई सरकार अपनी प्रशासनिक यात्रा शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नवन्न में पहली कैबिनेट बैठक करेंगे। उस बैठक में 5 नए शपथ ग्रहण किए गए मंत्रियों का विभागों का अन्य विभागों पर भी निर्णय दिए जाने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा के चुनावी वादे एजेंडा में सबसे ऊपर रहेंगे, जिनमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग का लागू होना शामिल है। आज मुख्यमंत्री सचिवों, जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मिलेंगे, ताकि प्रशासनिक कार्यों का गति और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जा सके। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भाजपा के खिलाफ संयुक्त विपक्षी मोर्चा बनाने के ममता बनर्जी का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कट्टर वाम दलों सहित सभी विपक्षी दलों से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या एच रॉय ने ममता बनर्जी की अपील खारिज करते हुए पूछा कि वो कट्टर वामपंथी समूह की बात क्यों कर रही हैं। उन्होंने 2013 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ माओवादी हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर पिछले चुनावों में कांग्रेस को बदनाम करने और भाजपा के उदय को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि ममता बनर्जी ने ही भाजपा को बंगाल में पैर जमाने का मौका दिया। माकपा के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने भी इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए ममता बनर्जी को भ्रष्ट और सांप्रदायिक बताया। सीपीआई के प्रदेश सचिव स्वप्न बंदोपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी के साथ जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी

0: फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है।
3: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से यात्रा के दौरान मौसम के बारे में ताजा जानकारी रखने और सावधानी के साथ यात्रा कार्यक्रम तैयार करने का आग्रह किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। सभी संबंधित सरकारी विभागों को यात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं एसबी त्रिपाठी।
0: पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव खारिज कर दिया है।
4: इससे पहले कल ईरान ने कहा था कि उसने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के प्रस्ताव पर जवाब भेजा है। यह जवाब पाकिस्तान के माध्यम से भेजा गया, जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आत्मसमर्पण या पीछे हटने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल रात राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के उच्च संवर्धनित यूरेनियम भंडार को हटाने की आवश्यकता पर सहमत हुए, जो वार्ता का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीकी समुद्री अभियानों के साथ फ्रांसीसी या ब्रिटिश युद्धपोतों की किसी भी तैनाती का निर्णायक और तत्काल जवाब दिया जाएगा। फ्रांस के अधिकारियों ने कहा कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टार्मर के नेतृत्व में रणनीतिक जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने के प्रयासों के तहत इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। समाचार कक्ष से कृष्ण।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
5: सुजो में एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज मेजबान चीन और भारत आमने सामने होंगे। ये मैच जीतते ही भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में जगह पक्की कर लेगा। भारत इससे पहले 2017 और 2022 में मेजबान के तौर पर इस विश्व कप में हिस्सा ले चुका है, लेकिन उसने प्रतियोगिता के जरिए क्वालिफाई नहीं किया था। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इस बीच भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग में, 37 किलो वर्ग में वसंत कुमार ने, 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने, सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में, 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासर ने, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने जीत दर्ज की। रोहित पोथीना, नितिन नोंग, पोकांगवा मेईतेई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना देव और सुशांत जयानी को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इधर आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा।
0: पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0112301-0481 और 0112371-7106। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair

0: newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद विशाल। पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों से आह्वान, दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। पेट्रोल डीजल और गैस का संयम से करें इस्तेमाल। राजस्थान पत्रिका ने पीएम के हवाले से लिखा है, एक साल सोना नहीं खरीदें, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग करें। हिन्दुस्तान ने आर्थिक विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है, प्रधानमंत्री की अपील का सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद, आयात बिल घटने से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। तमिलनाडु में नई सरकार का गठन भी अखबारों की सुर्खी बनी है।

0: से करें इस्तेमाल। राजस्थान पत्रिका ने पीएम के हवाले से लिखा है, एक साल सोना नहीं खरीदें, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग करें। हिंदुस्तान ने आर्थिक विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है, प्रधानमंत्री की अपील का सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद, आयात बिल घटने से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। तमिलनाडु में नई सरकार का गठन भी अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय राज, 6 दशक बाद गैर द्रविड़ सरकार, टीवी के प्रमुख विजय ने ली सीएम की शपथ। वहीं देशबंधु की सुर्खी है, केरलम में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर संशय बरकरार। बदलाव का चेहरा शीर्षक से अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का चक्र तोड़ते हुए थालापति विजय का मुख्यमंत्री बनना इस बात का प्रतीक है कि राज्य नई ऊर्जा, नई सोच और नए राजनीतिक प्रयोग की ओर बढ़ रहा है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री विजय केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन बनाने में कैसी परिपक्वता दिखाते हैं और सुशासन की मिसाल कायम करते हैं। भारत की सभ्यता का प्रतिबिंब सोमनाथ शीर्षक से केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री का लेख नवभारत टाइम्स में है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने लिखा है, कोई सभ्यता तब तक मजबूत रहती है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। लोकतंत्र की ताकत संघर्ष में नहीं बल्कि संतुलन और सम्मान में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान पंजाब केसरी में है। एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा कि 1947 से संसद और विधानसभाओं द्वारा लाए गए बदलाव देश में लोकतंत्र की मजबूती को बताते हैं। झूठ को तोड़ता और सच को जोड़ता चीन सीमा पर सेना का रेडियो। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार भारत चीन सीमा से लगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सेना के ये रेडियो स्थानीय बोलियों में मौसम के अलर्ट के साथ साथ संवेदनशील सीमा पर गलत जानकारी से निपटने में मददगार साबित हो रहे हैं।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। और AFC Under-17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है निमाड़ी लोकगीत।

0: स्नेहलता भटोरी की आवाज में अभी आपने सुना कि निमाड़ी लोकगीत।
1: अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
2: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूं और कहाँ दूं।
1: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
2: क्यों?
1: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
2: वो कैसे?
1: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
2: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
1: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
2: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
1: आप कब आ रहे हैं
2: आकाशवाणी खंडवा पर?

0: आप सुनी रहा निर्माण की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: लीजिए सुनिए स्नेहलता भटोरे की आवाज में नानी बाई का मायरा।

0: स्नेहलता भटूरी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे निमाड़ी लोकगीत एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये खनवा केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके मीत ये गीत।
1: आपके मीत ये गीत।
0: आपके मीत ये गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आरती शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। ये है आज के आपके मीत ये गीत कार्यक्रम की पहली पेशकश। फिल्म है हरियाली और रास्ता, गीत हजरत जयपुरी का, संगीत शंकर जयकिशन का, आवाजें मुकेश और लता मंगेशकर की।

और श्रोताओं, अब आपको बता दें कि इस गीत को हमने शामिल किया किन किन श्रोताओं की फरमाइश पर। ये श्रोता हैं दुर्गा चौक जुनापानी सनावत से कालू सिंह बटोले, सीताराम, हीरालाल बटोले, साहिल, सुमन बटोले, विशाल, हरिओम और भावना बटोले, सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक गौहर, तन्वी, जयपाल यादव, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण साहू, राहुल और चंपा, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकरम, नफीसा, प्रवीण और जुहानुल होदा, बोटसरा नेला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू, हिंगोली महाराष्ट्र से इस गीत को सुनना चाह शाहजी बोटके, श्रीमती नंदा बोटके, हनुमान, उत्तम जमदाडे और इनके साथियों ने, नरबोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना और इनके साथी, ग्राम पंचायत पठीना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी अंजलि, राजीव वर्मा, ज्योति, प्रहलाद, उमेश और धनेश्वरी वर्मा, कापसहेड़ा बॉर्डर दिल्ली से आमना नसरीन और आसमा प्रवीण, बागवान मंजिल छोटा बलिया से नूर आयशा अहमद बागवान, नबासी आशु अहमद, दुखना रानी और जूही पाल, छतरी टोल तेघरा बेगूसराय से अदीबा अफसरी, इस्माइल आज़ाद और वली आलम, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमन नवाज, हसन, बेबी चाहत और इनके परिवार के अन्य सदस्य, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार तिवारी, कौशल गोस्वामी और रिंकी गोस्वामी, रतनपुर से जितेंद्र सिंह गौर, नरेंद्र सिंह गौर,

सचिन, प्रीति, भावना, अंतिम, पलक, श्रुति, यशराज और देवराज, साथी साबी और रिधिमा। तो आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर था ये गीत।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर। मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार, नरगिस खातून। आष्टी जिला जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नुमान, तनवीर, सैयद निजामुद्दीन और साथी। दूधरा जोडा आष्टी से दशरथ सागुती और अनुष्का सागुती। माँ नर्मदा श्रोता परिवार शिवकोठी ओमकारेश्वर से राकेश पप्पू सिंह, निशा, सपना, ओम और द्वारका बाई सिंह। इंदौर लिम्बोदी से गिरधारी लाल चौधरी, मनीषा बाई चौधरी। लक्कड़बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, साकिब पवार, छोटू पवार और हसनैन पवार। दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े और वामिका गंगराड़े। मजरू का टीला से कमल बालूचा, मधु बालूचा, सागर बालूचा। सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक परी, स्वाति, प्रयाग और देविका चौधरी। दतरिंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, अनोखीलाल वर्मा। कालीगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत जाधव, संचित और प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वत और सानवी देशमुख। तो आइए आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत। फिल्म है तीन देवियां, गायक कलाकार किशोर कुमार, गीत मजरूह सुल्तानपुरी का और संगीत एस डी बर्मन का।

0: श्रोताओं, आपको बता दें कि इस गीत की फरमाइश हमें इन सभी श्रोताओं ने भी भेजी। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, रजौनी जिला महोबा से उदय भानपाल, जय हिंद, दीक्षा प्रतीक्षा, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और परिवार के अन्य सदस्य, मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनवाज, नावेद हसन और सुहेल, सिकंदरा राव से मुबीन अब्बासी और इशरत, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नभानकर, निर्मला नभानकर, विशाल और इनके परिवार के अन्य सदस्य, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे और आशीष मुरहिरकर, डाब की रोड अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद मंदुरकर, कुमार गौरव और आरव, निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र अरोड़ा, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत और करमजीत कौर, आज़ादनगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां, कुमार हीड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना नाजिया और इब्राहिम, शिगांव महाराष्ट्र से मोहम्मद अनीस मुहाल, दानिश जुनेद, रियाज और रिजवान मुहाल, और छत्तीसगढ़ डूंगरगांव से राष्ट्रपाल गजबीहे, राधिका गजबीहे, अनिष्का और तन्मय गजबीहे। तो आप सभी श्रोताओं ने भी सुनना चाहा था इसी गीत को।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी उम्मीद ये गीत। कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर है। जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरव साइना और निवान शर्मा, प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से आनंद जोशी, तनुजा जोशी, ध्रुवी जोशी और फाल्गुनी जोशी, शमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया, माता चौक खंडवा से राजेंद्र कटारे, अनीता

कटारी उधर कटारी उज्जवल और मितांश कटारी, कलनगंज खंडवा से कौसर बी पवार, हसीना अलमास बानू और सबीना, दिल्ली से सुखविंदर सिंह, सीटी दीवाना और इनके परिवार के सदस्य, जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबराय, बक्काल बुलढाना से नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या हागे और जय हागे, सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से गजानन गेले या नवदीप गेले, विश्वदीप और अवंतिका गेले, भाटापारा से के आर साहू, आकाश कमलेश, मन्नूलाल रजक और मुरली क्षत्रिय, सनावत से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान और राजकुमार बुडाना, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित ऋतु, मुकेश जगताप, झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, तासु अर्णव, आनंद सत्यम और इनके बहुत से साथी, बोड़ा माछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत, शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता सैनी, गौरव, ईशान और कार्तिक सैनी, लक्कड़ बाजार खंडवा से ठाकुर भवानी सिपैस, रिया रोहन और अंगद ठाकुर, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, सनावत से किशोर कुमार सांवले, रेखा सांवले, हिमांशु, अनुराग, सुलोचना और प्रणव सांवले। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर पेश है कार्यक्रम का अगला गीत। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की, फिल्म है फ़र्ज़, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

इस गीत को सुनना चाहा था हमारे इन श्रोताओं ने भी। सनावत सी, हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सिंह, हरिनिवास केड़े, बाबूलाल चौधरी, मिश्रा गोल्डन, केपी सिंह चौहान, दीपक, सचिन कटारिया, कृष्णा, विराज, अर्णव, काव्यांशी, कृतिका और प्रभा कटारिया, रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप और टुकटुक जाटव, सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल और विलिस, सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा, पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश, और भदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू सेन, तारा सेन और कौशल सेन ने।

0: ये वो भी ऐप से, वाह।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सीतामढ़ी बिहार से नुसरत जहां, तलत जहानाज, फरहत और परिवार के अन्य सदस्य, संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राजेश, राशि और शीतल, पद्मा टॉकीज नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुंश, नीति सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह, मोटका माफी से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल, उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, सरिता और प्रणीता, नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, सौभाग्यवती, उषा, प्रथमेश और संजय कुमार चौहान, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार और भानुप्रिया, आकोट से विनायक पिंडी, मंगला पिंडी, विजय शुभम पिंडी, मलकापुर से शत्रुघ्न थाटी, वाल्मीकि खाती और स्वप्निल, डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित और तानिया, राजकोट से जूली जगदीश, गुजराती, कुंदन, रंजन, प्राची और प्रवीण पुजारी, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, चैतन्य और इनके परिवार के अन्य सदस्य, गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, जमशेदपुर से रोहन और आर्य जायसवाल, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत, प्रगति नाचानी और इनके परिवार के अन्य सदस्य। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर पेश है मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत, फिल्म है पगला कहीं का, गीत हसरत जयपुरी का और संगीत शंकर जयकिशन का।

इसी गीत को सुनना चाहा है पुणे से अजय सोनवानी, करिश्मा विशाखा सोनवानी, सनावत से दगरूजी सेन धर्मेंद्र और कलाबाई सेन, पैठन से सुरेश जाधव और अनीता, इंदौर से अनिल कवचाली और साबिहा कवचाली, सुषमा और इनके साथी।

0: श्रोताओं, आज के आपके मीति गीत कार्यक्रम का सफर बस यहीं तक। अब दीजिए अपनी रेडियो सखी आरती शर्मा को इजाजत। नमस्कार।
1: आपके मीत ये गीत।
0: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके मीत ये गीत।
2: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का खंडवा केंद्र। सजन रेडियो।
3: हाँ साथियों, तो सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन
2: आकाशवाणी खंडवा।
0: सुबह के 9 बजे हैं। अब राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक। बोल बच्चन इस फिल्म का गाना हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल की आवाजों में, शब्बीर अहमद का लिखा हुआ गाना, संगीत हिमेश रेशमिया का।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने के

0: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
2: चमक छल्लो छल छबीली।
3: राउडी राठौड़ फिल्म का ये गाना कुमार सानू और श्रेया घोषाल की आवाजों में, फैज अनवर के बोल, संगीत साजिद वाजिद का।

0: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार।
1: हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
0: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
1: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सब के नाम उनके जवान पे है। क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
0: 18 मई शाम 7:45 पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में समय है एक ब्रेक का।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना जब तक है जान, इस फिल्म का गाना हर्षदीप कौर की आवाज, गुलजार के बोल, संगीत ए आर रहमान का।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के फनकार। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम सादर समर्पित है अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर को। सदाशिव अमरापुरकर मुंबई सिने जगत का एक बहुचर्चित अदाकार,

0: स्वामी।
1: सदाशिव अमरा पुरकर का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर में 11 मई सन 1950 में हुआ था। उनका असली नाम था गणेश कुमार नरवाड़े। महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर में एक अच्छे खासे व्यापारी परिवार से थे अमरापुरकर। बचपन ही से होशियार और सबके दुलारे थे वे। उन्हें घर में और दोस्तों में तात्या नाम से जाना जाता था। उनकी शुरुआती पढ़ाई अहमदनगर में ही हुई। स्कूली जीवन से ही उन्हें एक्टिंग का शौक था। कई नाटकों में वो अदाकारी के जलवे दिखाया करते थे। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उन्हें पुणे विश्वविद्यालय में दाखिल होना पड़ा। यहीं पर वो इतिहास विषय में मास्टर्स डिग्री की पढ़ाई करते हुए एक्टिंग की ओर भी मुड़े। सदाशिव अमरापुरकर जब विविध भारती के स्टूडियो आए थे, उन्होंने अपने इस एक्टिंग के सिलसिले का जिक्र करते हुए बताया था। सुनते हैं उन्हीं से।
2: और जैसे मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज के गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन होती है, आज भी चल रही है वो, और बहुत अच्छी चीज है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे। और इसकी कॉम्पिटिशन थी और उस जमाने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया, मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला और हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा। बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूंगा, प्रोफेसर बनूंगा और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूंगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे, थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था। मैं पूना से परभनी गया, परभनी से फिर नगर आया, स्टेट कॉम्पिटिशन जो नाटक होते हैं उसमें हिस्सा लेने लगा और उसमें मैंने एक नाटक किया काई स्वप्ने विकाई चीत, उसमें मैंने जो एक्टिंग की थी वो बहुत पसंद आई लोगों को।

0: सन 1973 में उन्होंने अपनी स्कूली जीवन की सहेली सुनंदा करमरकर से विवाह किया और साथ ही साथ अदाकारी में भी हाथ आजमाते रहे। मुख्यतः वो मराठी नाटकों में काम करते थे। सन 1981-82 में यूं ही सदाशिव अमरापुरकर मराठी नाटक हैंड्सअप में काम कर रहे थे। उस जमाने के जाने माने मराठी अदाकार अविनाश मसूरेकर और भक्ति बर्वे, जो बाद में भक्ति बर्वे इनामदार बनी, इनके साथ वो काम करते थे। तो इस ड्रामे में जो वो कर रहे थे हैंड्सअप में, इस नाटक को देखा जाने माने निर्देशक गोविंद निहलानी ने भी। सदाशिव अमरापुरकर की एक्टिंग से निर्देशक गोविंद निहलानी बड़े ही प्रभावित हुए और उन्हें अपनी फिल्म अर्ध सत्य में अदाकारी करने का मौका दिया। फिल्म अर्ध सत्य काफी लोकप्रिय हुई और उनका रामा शेट्टी का किरदार भी बड़ा ही कामयाब रहा। हिंदी सिने जगत को सदाशिव अमरापुरकर के रूप में मिला एक खलनायक, ऐसा खलनायक जो अपनी अनोखी डायलॉग डिलीवरी से देखने वालों का दिल जीत लेता था। ये फिल्म उन्हें कैसे मिली, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी।
1: तेंदुलकर जी के 4-5 नाटक किए हैं, हैंड्सअप नाटक किया, और उस वक्त मेरी तेंदुलकर जी से बहुत अच्छी पहचान हो गई थी और वो एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे, उसका नाम था अर्ध सत्य। और उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि इसमें एक छोटा सा रोल है और इसके लिए मैंने आपका नाम सजेस्ट किया है। हालांकि जब भी मैं नाम सजेस्ट करता हूँ तो डायरेक्टर उसे नहीं लेता है, लेकिन इस बार देखिए आपका लक अगर

चलता है तो। और इस तरह मेरी गोविंद निहलानी से पहचान हुई, वो मेरा हैंडसअप नाटक देखने आए और उसमें मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रहा था और फिल्म भी इंस्पेक्टर के ऊपर थी, तो मुझे लगा मुझे कोई बड़ा अच्छा इंस्पेक्टर का रोल मिलेगा और मैंने बड़े जोश के साथ वो नाटक किया। उनको बहुत पसंद आया, अच्छा लगा। दूसरे दिन घर पे बुलाया और कहा, देखो आपका नाटक अच्छा था, इंस्पेक्टर का रोल आपने बहुत बढ़िया किया, इस फिल्म में एक रोल है छोटा सा, उस कैरेक्टर का नाम है रामा शेट्टी। तेंदुलकर जी को पूछा मैंने, कहा ये क्या रोल है? बोले छोटा है, अच्छा है। मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने दो। स्क्रिप्ट पढ़ा, 2-2.5 सीन थे लेकिन उसका जिक्र बार बार आता था और उस वक्त मुझे फिल्म के बारे में ABCD भी मालूम नहीं था।

इस तरह से उन्हें हिंदी सिने जगत का एक विशाल स्क्रीन अदाकारी दिखाने के लिए मिला। वो यहीं तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने और भी भाषाओं की कई फिल्मों में काम किया। हिंदी मराठी के अलावा उन्होंने बांग्ला, ओडिया और हरियाणवी फिल्मों में भी काम किया है। दोस्तों, हम उन फिल्मों के गीत आपको सुनवा रहे हैं जिनमें सदाशिव अमरापुरकर ने काम किया था।

0: सन 1993 में पहली बार फिल्म फेयर ने खलनायक को दिया जाने वाला अवार्ड शुरू किया, जिसे पाने का गौरव मिला सदाशिव अमरापुरकर को। अर्धसत्य की कामयाबी के बाद उन्हें कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला और उन्होंने इन फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए। ऐसी ही कुछ फिल्में हैं पुराना मंदिर, नासूर, मुद्दत, वीरू दादा, जवानी, फरिश्ते वगैरह वगैरह। दोस्तों, फिल्म हुकूमत में उन्होंने लोकप्रिय अभिनेता धर्मेंद्र के खिलाफ विलेन का किरदार किया और वो किरदार इतना सफल हुआ कि ये फिल्म बेहद कामयाब रही और इस तरह सदाशिव अमरापुरकर धर्मेंद्र के लिए सफलता का जैसे एक पैमाना बन गए। इन दोनों ने कई फिल्मों में साथ साथ काम किया। सन 1991 में एक फिल्म आई थी सड़क। इस फिल्म में उन्होंने एक हट के चैलेंजिंग रोल किया था जो आपको भी जरूर याद होगा। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था।
1: कमाल है कुदरत का, क्या खूबसूरती, क्या चीज बनाई है ऊपर वाले ने। देख, मेरे तो बाल खड़े हो गए हाथ पे, जान निकल गई मेरी। ओ, क्या रंग है, हाय रे ये बदन, हाय हाय, डर मत मेरी जान, डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं आधा मर्द हूँ और आधी औरत। देखना ना रूप ना रंग, देखिए किस्मत का खेल तो देख। अगर कुछ है ना मेरे पास तो वो है दिमाग। हाँ, कमाल का दिमाग है मेरे पास, इसलिए मर्दों की सेवा करती हूँ और औरतों का धंधा। यहाँ का राजा, इस जिस्म के बाजार का

0: महाराजा और नाम महारानी।
1: ये सब क्या है चाचा? चलो यहाँ से।
0: मैं बताती हूँ, ये सब कुंडली का खेल है। किस्मत जिसे कहते हैं ना हम, वो है ये सब। तेरे बाप ने और तेरे चाचा ने मेरे पास से कुछ कर्जा लिया था, तेरे दादा की बीमारी के लिए, और तुझे गिरवी रखा था। गिरवी जानती है ना तू? गिरवी। फिर जोर से हाँ बोलना, शर्माती क्यों है? लेकिन इतने साल हो गए, इन्होंने मेरा कर्जा ही नहीं चुकाया, इसलिए मैं बंसी की बेटी को उठाकर यहाँ लाई इस कोठे पर। आज ये बेचारा अपनी बेटी को छुड़ाने आया है, क्या करेगा? पैसे तो है नहीं इसके पास चुकाने के लिए, इसलिए इसने तुझे लाया है। आज से तू यहाँ रहेगी इस कोठे पर, इसकी बेटी की जगह।
1: नहीं चाचा, आप ऐसा नहीं कर सकती हो, मैं आपकी भतीजी हूँ।
0: रिश्तेदारी का तो खेल है ये सब।
2: मुंबई में एक्टिंग के लिए वे किस तरह पहुँचे, इसके बारे में भी उन्होंने बताया था, आइए सुनते हैं।
3: नासिक में हमारा पहला एलिमिनेशन राउंड था, और वहाँ एक परीक्षक थे, उनका नाम था भिक्कू पै आंगले। उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी और मुझे खत लिखा कि आप जाकर बम्बई में गोवा हिंदू एसोसिएशन है, वहाँ जाकर मिलो, वहाँ एक आपके लिए काम रखा हुआ है। तो और उन्होंने एड्रेस वगैरह दिया था, फ़ोन नंबर दिए थे, तो मैंने वहाँ फ़ोन किया, तो वहाँ पर रामकृष्ण नाइक करके थे, उन्होंने कहा कि आप आइए, और मैं वहाँ गया। उन्होंने कहा हमारा एक नाटक है नट सम्राट, जो डॉक्टर लागू ने किया था, दत्ता भट्ट ने किया था, अभी दत्ता भट्ट के बाद हम देख रहे हैं। सतीश दुबाशी ने हमको कहा है कि मैं ये करूँगा, लेकिन पता नहीं वो करेंगे या नहीं, लेकिन आपकी एक्टिंग की मैंने इतनी तारीफ सुनी है भिक्कू पै आंगले से, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी सी टेस्ट ले लें। तो उसमें काम करने वाली जो आर्टिस्ट थी शांता बाई गोखले, उनके पास मुझे लेकर गए। उनमें एक आर्टिस्ट थी शांता जोक, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत बढ़िया एक्टिंग करती थी, आज हमारे में नहीं है। उन्होंने मेरी टेस्ट ली और उनको कहा कि ये कर सकते हैं। मुझे किताब दिया गया, बोले आप गांव जाइए, हम आपको बुला लेंगे। और बाद में मैंने पेपर में पढ़ा कि वो रोल सतीश दुभाषी कर रहे हैं, लेकिन दिल में एक तमन्ना थी कि कुछ कोई बात नहीं, और भी नाटक लिखे जाएंगे, हमें रोल आएंगे। और एक दिन अचानक एक फोन मुझे आया, दूरवांची जुड़ी एक संस्था है उनका, कि हम एक नाटक कर रहे हैं, उस रोल के लिए, जो प्रोफेसर का रोल है बहुत बड़ा, उसके लिए हम आपको मिलना चाहते हैं, तो आप बम्बई आई। मैं तीसरी बार बम्बई आया तो उन्होंने कहा कि देखो आपने वो नाटक किया था, फाइनल में आया था, वहाँ पुरुषोत्तम दारवेकर जी थे, और उन्होंने आपके नाम का सजेशन दिया है प्रोफेसर के रोल के लिए, इसलिए आपको बुलाया, और चलिए आप हमारे साथ चलिए। तब मैं पहली बार विविध भारती के ऑफिस में आया, और उसके बाद मैं नाटक में एक्टिंग और डायरेक्शन करता ही गया।
4: अरे ये क्या हो गया ये साले, उन बदमाशों को यही एक दुकान मिले लूटने के लिए। ओ,
5: सर आप इस दुकान में पार्टनर है क्या?
4: अरे पार्टनर नहीं, ये दुकान मेरे सबसे अच्छे सबसे प्यारे बचपन के दोस्त हसमुख की है।
5: अच्छा अच्छा,
4: आ गया हसमुख, आ गया आ गया हसमुख। ए हसमुख, हिम्मत से काम ले हसमुख। अरे होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन तू इस नुकसान से घबराना नहीं है। मेरी पगार बहुत कम है, लेकिन मैं तुझे भूखे नहीं मरने दूंगा, उसमें से आधी तुझे दूंगा, वादा रहा दोस्त, घबराना नहीं।
6: तू अपनी आधी पगार मुझे देगा?
4: पागल हो गया।
6: अरे पागल नहीं हुआ बाबा, भगवान ने पागल होने से बचा लिया।
4: कैसे?
6: मैंने है ना दो दिन पहले दुकान बेच दिया था।
4: क्या?
6: हाँ।
4: किसको?
6: ये सेठ सुखीराम को। मैं नहीं बेच रहा था।
4: हाँ।
6: उदित करके सारे जवाब के साथ पेमेंट भी कर गया मुझको।
4: कॉन्ग्रेचुलेशन। ए आंडो पांडो।
5: यस सर।
4: ये ले, ये 10 रुपए ले, मिठाई ला, सबका मुंह मीठा कर देते हैं आज।
7: अबे वो इंस्पेक्टर के बच्चे, मैं तबाह हो बर्बाद हो गया और तू मिठाई क्यों मंगवा रहा है? अरे इस वर्दी का ख्याल कर, कुछ मुझे झूठी तसल्ली दे भाई।
4: माफ कीजिएगा लाला जी, मैं मिठाई इसलिए मंगवा रहा हूँ कि मेरा दोस्त बच गया। और जहाँ तक आपकी बर्बादी का ताल्लुक है, आपके साथ पुलिस है, और पुलिस के साथ इंस्पेक्टर प्यारे मोहन है, जो विलन को चैन से जीने नहीं देगा, जीना तो छोड़ो पीने नहीं देगा।
2: सदाशिव अमरापुरकर ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उनके द्वारा अभिनीत कुछ

0: ये फिल्में भी हैं जैसे आंखें।
1: ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, ओ काले कुर्ते वाली

उली नंबर वन, गुप्त, जंग, तड़ीपार, हम साथ साथ हैं वगैरह वगैरह। सदाशिव अमरापुरकर की आखिरी रिलीज फिल्म थी सन 2013 में आई फिल्म बॉम्बे टॉकीज। आज के इस कार्यक्रम में प्रयोग की गई रिकॉर्डिंग हमें विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त हुई है।

0: आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर पर। कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़।
3: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खनवा केंद्र है। सुबह के 10 बजने को हैं कुछ ही पलों में कार्यक्रम जिले की चिट्ठी हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।
4: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
5: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है विदिशा जिले की चिट्ठी। आलेख वेद प्रकाश शर्मा का, वाचन स्वर धारणा सचदेव। सबसे पहले बात विदिशा नेशनल लोक अदालत की। जिला मुख्यालय समेत सभी तहसीलों में 34 खंडपीठों का गठन कर आपराधिक, सिविल, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना, वैवाहिक और राजस्व से जुड़े कुल 1716 मामलों का आपसी सहमति से निराकरण किया गया। प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश शेख सलीम ने बताया कि इन मामलों में करीब 5,99,00,000 रुपए की सेटलमेंट राशि तय की गई है। अदालत के साथ न्यायालय परिसर में रक्तदान शिविर भी लगाया गया। दूसरी तरफ भोपाल संभागायुक्त संजीव सिंह ने विदिशा जिले के खामखेड़ा कस्बे में जल जीवन मिशन के तहत चल रही नल जल योजना का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि 46 लाख रुपए से अधिक की लागत से रेट्रोफिटिंग योजना के तहत नया नलकूप, सम्पवेल और करीब 5,000 मीटर पाइपलाइन बिछाई गई है। इससे अब गाँव के सभी घरों तक नल कनेक्शन पहुँचा दिए गए हैं। अब बात मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्रमिक परिवारों को आर्थिक सहायता राशि वितरित की। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में सिरोंज के शासकीय राजीव गांधी स्मृति चिकित्सालय में नई सोनोग्राफी सेवा शुरू की गई है। इससे अब क्षेत्र के मरीजों को जाँच के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास लगातार जारी हैं। खामखेड़ा आंगनवाड़ी सेक्टर केंद्र में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 31 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को FTK किट से पानी की जांच का प्रशिक्षण दिया। इसी कड़ी में शासकीय ITI विदिशा में जिला होमगार्ड विभाग ने आपदा प्रबंधन पर कार्यशाला आयोजित की। प्राचार्य कविता रघुवंशी ने बताया कि छात्रों को प्राकृतिक और अन्य आपदाओं से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। शिक्षा के क्षेत्र में भी जिले में नई पहलें देखने को मिल रही हैं। पीएम श्री योजना के तहत डाइट विदिशा में कक्षा 6 से 10 तक के शिक्षकों के लिए विषयवार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 3 चरणों में चले इस प्रशिक्षण में शिक्षकों को डिजिटल तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनिटरिंग की जानकारी दी गई। वहीं चलो घाट की ओर अभियान के तहत बेतवा नदी संरक्षण के लिए साप्ताहिक श्रमदान शुरू किया गया है। जन अभियान परिषद के सहयोग से चल रहे इस अभियान में युवा और सामाजिक संस्थाएं नदी घाटों से जलकुंभी, प्लास्टिक और अन्य कचरा हटा रहे हैं। विदिशा जिले में

जनगणना 2027 की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। जनगणना निदेशक कार्तिकेय गोयल ने जिले में चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए स्वगणना अभियान की सराहना की। गोड़खेड़ी गांव में 100% स्वगणना कराने वाले शिक्षक केजी राजपूत समेत अन्य कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। कृषि क्षेत्र में विदिशा जिले के किसान नई पहचान बना रहे हैं। पारंपरिक गेहूं चना की खेती छोड़ अब कई किसान ड्रैगन फ्रूट, चिया सीड और कलौंजी जैसी औषधीय फसलों की ओर बढ़ रहे हैं। प्रगतिशील किसान यशवंत तिवारी ने बताया कि चिया सीड की खेती से किसानों को प्रति बीघा 70,000 से 1,00,000 रुपए तक की शुद्ध आमदनी हो रही है। वहीं सिरसी गांव के किसान विपुल श्रीवास्तव ने ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू कर दूसरे किसानों को भी प्रेरित किया है। आधार बायोमेट्रिक अपडेट अभियान में बेहतर काम करने पर विदिशा जिले को बड़ी उपलब्धि मिली है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के निदेशक सुमित मिश्रा ने विदिशा को देश के टॉप 5 जिलों में शामिल होने पर जिला प्रशासन की सराहना की है। खासतौर पर स्कूलों में विद्यार्थियों के आधार अपडेट अभियान को सफल बनाने के लिए शिक्षा विभाग और DEGS टीम की प्रशंसा की गई। अब बात विदिशा जिले से मिली हुई कुछ प्रेरणादायक खबरों की। ITI से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की पढ़ाई करने वाले अनिकेत मैना आज MPEB में प्लांट ऑपरेटर बनकर 25,000 रुपए महीना कमा रहे हैं। वहीं केमिकल इंजीनियर चिराग गौर ने ITI से मैकेनिक डीजल ट्रेड का प्रशिक्षण लेकर बुद्धनी प्लांट में अप्रेंटिसशिप हासिल की। PM विश्वकर्मा योजना से 1,00,000 रुपए का कर्ज लेकर भारत सिंह ने अपनी खुद की वर्कशॉप खोली है। वहीं वन स्टॉप सेंटर ने गलत ट्रेन में चढ़ जाने से विदिशा पहुंची 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला को इलाज के बाद बिहार के मधुबनी में उनके परिवार तक सुरक्षित पहुंचाया। इसके अलावा RBS के योजना के तहत नटेरन की 10 वर्षीय खुशी का आयुष्मान कार्ड से भोपाल के चिरायु अस्पताल में जन्मजात हृदय रोग का सफल निःशुल्क ऑपरेशन हुआ। विदिशा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई। अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी विदिशा जिले की चिट्ठी। आलेख वेद प्रकाश शर्मा का था, वाचन था धारणा सचदेव का। और FM 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। उमंग कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है।
1: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। अब प्रस्तुत है हमेशा की तरह एक सुंदर विचार, जो हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकिरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जीने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को सकारात्मक और रचनात्मक संतुष्टि मिले और दूसरे को उससे कोई नई दिशा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, जो काम करना हमें अच्छा लगे वो हमें जरूर करना चाहिए। तो श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम में संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: ग्राम टेका बजरंग चौक वार्ड नंबर 2 छत्तीसगढ़ से लकी ऋषि नवरंग।
1: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है। सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
2: नमस्ते जी।
1: अगला संदेश हमें मिला है स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीनत अमान इदरीसी, नाजिया शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी जी।
2: प्रोग्राम पेश करने वालों को हमारी ओर से आदर और सम्मान। सर और मैम, हमें उमंग प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है। इस प्रोग्राम से हमें बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिलती हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी तरह से संपर्क बनाए रखिए, संदेश भेजते रहिए। और हाँ, मात्र सुविचार भेजकर और प्रश्नों के उत्तर भेजकर ही संतुष्ट न हो जाइए, हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। तो अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।

0: हमारा पहला प्रश्न था, दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं, उनमें से कुछ प्रसिद्ध गुरुकुलों के नाम बताइए।
1: इसका उत्तर है साथियों, श्रृंगेरी शारदा पीठम और कांची कामाकोटी पीठम मुख्य रूप से दक्षिण भारत के प्रसिद्ध गुरुकुल हैं।
0: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए।
1: श्रोताओं, इसका सही उत्तर है, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम है आर्कटिक महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा महासागर है।
0: हमारा तीसरा प्रश्न था, समुद्र के पानी में नमक किन किन स्रोतों से आता है।
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के पानी में नमक लाने का सबसे बड़ा स्रोत है नदियाँ, जो चट्टानों, मिट्टियों, पर्वतों से खनिज के घोल के साथ साथ नमक को भी ले आती हैं, जो खनिजों के साथ ही मिला होता है।
0: और अब हमारा अगला प्रश्न सुनिए, जो हमने पूछा था, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं।
1: इसका उत्तर है श्रोताओं, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने का सबसे पहला उपाय है नदियों को प्रदूषित होने से बचाना, क्योंकि अधिकांश नदियां समुद्रों में ही गिरती हैं और अपने साथ प्रदूषित कूड़ा कचरा ले आती हैं। दूसरा उपाय है, हम समुद्रों में कचरा, खासकर प्लास्टिक न फेंकें, इससे भी समुद्र प्रदूषित होता है।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए और ये भी बताइए कि ये कहाँ पर है।
1: जी हाँ, इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप, जो प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच में फिलीपींस के पास स्थित है।
0: तो श्रोता मित्रों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। यदि आपने हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लिया तो आपका आभार,
1: और यदि नहीं लिया तो हम आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप न सिर्फ भाग लें लेकिन दूसरों को भी, विशेषकर विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, जिसका शीर्षक है
1: माई बाइसाइकिल। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की कविता का संगीत रूपांतर है। कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को सड़क पर सावधानी से चलने की सलाह दी गई है, और जब वे सड़क पार करें तो पहले ध्यान से आसपास देखें।
2: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल?
3: वी आर फाइन सर।
2: आर योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड ग्रैंडपेरेंट्स ऑल वेल?
3: यस सर।
2: वेरी गुड। ओके किड्स, नाउ टेल मी, हैव यू सीन a bicycle?
3: Yes sir, we have seen.
4: I have seen sir.
5: I like bicycle sir.
6: I love it.
2: That's very good. And children, bicycle can also be pronounced as bicycle. Okay, now tell me how it looks like.
7: It has two wheels.
8: My cycle is pink
9: and mine is blue.
10: My cycle has a bell.
2: Now tell me, have you ever ridden a bicycle?
3: Yes, sir!
2: How does it feel to ride a bicycle? Feels great, isn't it?
3: Yes, sir!
2: So, let's listen to a short, lovely poem on bicycle today.
3: Trin, trin, trin!
2: Do it again, please.
3: Trin, trin, trin!
2: I have a red bicycle.
3: I have a red bicycle.
2: I pedal and I ride.
3: I pedal and ride.
2: Trin, trin, trin goes the bell.
3: Trin, trin, trin goes the bell.
2: Makes my friends move aside.
3: Makes my friends move aside.
2: The seat is blue in color.
3: The seat is blue in color.
2: The tires and pedals are black.
3: The tires and pedals are black.
2: Sometimes fast. Sometimes slow. But my bicycle is always on track.
3: But my bicycle is always on track.
2: To keep my bicycle moving.
3: To keep my bicycle moving.

0: Children, you have listened to the song just now. Did you like it?
1: Yes, sir. We liked it.
0: Very good. So remember, always, whenever we ride a bicycle, we have to be careful about our safety and also the safety of others.
2: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम माई बाइसिकल। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम
3: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल।
4: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है जिन पर देश को नाज है। आइए आज याद करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद जांबाज की कुर्बानी जिसको अपनी अद्वितीय बहादुरी के कारण भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। भारत मां का ये सपूत था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो जिया तो सिर्फ 20 साल पर भारत की जनता के दिलों में उसकी यादों का दिया जलता रहेगा सालों साल। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पूना में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार से थे जिसका एक लंबा सैन्य इतिहास रहा है।

0: अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता। अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों के साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में जाकर खाना खाते। उनका जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बना लिया है। अरुण की प्रारंभिक शिक्षा उन विभिन्न स्थानों पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे, पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिला लिया। अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते। सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया। अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते थे। अरुण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 23 जून 1971 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। जून 1971 में उन्हें पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली। रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार किसी भी युवा अधिकारी को सारे काम करने पड़ते थे, जैसे ड्राइवर, गनर, रेडियो ऑपरेटर से लेकर टुकड़ी तक का नेतृत्व। अरुण को जो भी काम मिलता वो उसे पूरी लगन के साथ करते। जब उन्हें टैंक चलाने का काम मिला तो उन्होंने उसकी देखरेख, सफाई करने, मरम्मत करने जैसे सारे काम सीखे और किए।
1: मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा।
2: साहब आप क्यों परेशान होते हो, हम कर लेंगे सफाई टैंक की।
1: अरे नहीं नहीं नाथ हुसैन, अगर मैं टैंक चलाता हूँ तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी मेरी ही है।
2: वो तो ठीक है साहब,
1: और अगर मैं इसकी देखरेख नहीं कर सकता तो इस पर बैठने का भी कोई हक मुझे नहीं है।
2: वो तो ठीक है साहब, लेकिन
1: देखो नाथ हुसैन, हम सब सैनिक हैं और हमारी पूना हॉर्स रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार एक सच्चा सैनिक वही है जो किसी भी काम को छोटा ना समझता हो और हर काम को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करता हो।
2: बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब, लेकिन
1: अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मुझे टैंक साफ करने दो।
0: अरुण सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते, चाहे वो अफसर हो या जवान। देर देर तक बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था, पर इसके साथ साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते। हारना और डर कर पीछे मुड़ना उन्होंने कभी नहीं सीखा, और इसी का परिचय दिया उन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय।
3: माँ।
4: अरुण बेटा, तुम पहली बार युद्ध में जा रहे हो, कैसा लग रहा है?
3: मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है माँ। फौज में भर्ती होने के 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने देश की सेवा का मौका मिल गया।
4: हाँ।
3: अब मौका मिलेगा मुझे कुछ कर दिखाने का।
4: बेटा एक बात याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है।
3: जी।
4: ये चमचमाते हुए मेडल ये बताते हैं कि भारतीय सेना में तुम्हारे परिवार का कितना योगदान रहा है।
3: जानता हूं मां।
4: जाओ बेटा, इस मर्यादा को बनाए रखना और ऐसे लड़ना कि दुश्मन के गलियारों में भी

0: तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो।
1: जी मां, आशीर्वाद दीजिए।
0: जाओ बेटा।
2: और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दिन 16 दिसंबर 1971, स्थान बसंतर नदी का किनारा। दोनों सेनाओं में जम्मू कश्मीर के सामने वाले मैदानी इलाके शकरगढ़ में घमासान युद्ध चल रहा था।

0: जब सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनके साथियों ने सुना कि हमारी फौज पर दुश्मन के टैंकों ने जवाबी हमला कर दिया है, तो वो अपने टैंक के साथ पूरे जोश के साथ सैनिकों की मदद के लिए आगे बढ़े। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके टैंकों पर भी दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। टैंकों का आक्रमण होते ही अरुण ने बड़ी फुर्ती से अपने टैंक का मुंह दुश्मन की ओर मोड़कर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन अरुण के इस घातक हमले को झेल नहीं पाया और पीछे हटने लगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ने अपने टैंक की रफ्तार तेज कर उनका पीछा करना शुरू किया और दुश्मन के एक टैंक को नष्ट कर दिया। तभी पीछे से कमांडर का रेडियो पर आदेश आया,
1: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण पीछे लौटो और स्क्वाड्रन की पोजीशन से आ मिलो, अब हम एकजुट होकर फिर से हमला करेंगे।
2: यस सर।
0: आदेश सुनकर अभी वे लौट ही रहे थे कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ने उन पर धावा बोल दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने उनका सामना पूरी बहादुरी से किया। अभी सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल दुश्मनों से जूझ ही रहे थे कि दुश्मन का एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा और टैंक में आग लग गई, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। पीछे से फिर आदेश आया,
1: अरुण तुम्हारे टैंक में आग लगी है, उसे छोड़ो और पीछे आओ।
3: सर, मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, अभी मेरी गन काम कर रही है और दुश्मनों को ठिकाने लगाकर ही दम लूंगा।
0: युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर अब उस क्षेत्र में केवल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ही अपने टैंक के साथ बचे थे। इसके बाद टैंकों का ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा।
4: सर, सर ये क्या, ये तो टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ही हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है। साहब,
3: इन्हें रोकना ही पड़ेगा। प्रयाग सिंह, टैंक की रफ्तार तेज करो।
5: यस सर।
3: नाथ सिंह, निशाना साधो।
4: यस सर। दाहिनी ओर का टैंक बिल्कुल हमारे टारगेट पर है सर।
3: फायर।
4: सर,
3: ये तो क्या, अब दूसरों को देखता हूं। टर्न द गन टू द लेफ्ट।
5: जी।
3: फायर।
4: सर, सर वो आखिरी वाला टैंक तो वापस मुड़ रहा है सर।
3: हाँ, लगता है आक्रमण करेगा, निशाना साधो।
4: ठीक है सर।
0: दो टैंक आमने सामने खड़े थे, दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे।

और उसी विस्फोट में अरुण ने वीर गति पाई। हालांकि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का देहांत हो गया, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से वो दिन भारत का रहा। दुश्मन का एक भी टैंक भारतीय कब्जे वाले इलाके में घुस न सका। हमारी सेना ने उस दिन दुश्मन के 10 टैंक नष्ट किए, जिनमें 4 टैंक अकेले अरुण ने नष्ट किए थे। इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए अरुण को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, खेत्रपाल परिवार के लिए कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में हमने उनके पिता ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल से चर्चा की और उन्होंने जो कुछ भी बताया हम उसे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: कुछ सालों बाद मुझे संदेशा मिला कि पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर मुझसे मिलना चाहता है। क्योंकि मैं उनके नाम से परिचित नहीं था, इसलिए मिलने की कोशिश भी नहीं की। अरुण की यादों के सहारे समय बीतता गया और 2001 की बात है, मेरा मन हुआ जाकर अपना जन्म स्थान सरगोधा देखाऊं, जो पाकिस्तान में है, और मैं रवाना हो गया। और देखिए कैसा संयोग था कि मेरी मुलाकात उसी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर से हुई। उन्होंने मेरी मेजबानी का दायित्व संभाला और मुझे मेरे पैतृक गांव की यादगार यात्रा कराई। मैं उनके घर करीब 3 दिन ठहरा। ज्यों ज्यों मेरा लौटने का समय नजदीक आता गया, त्यों त्यों हमारी मित्रता गहरी होती गई। पर समय समय पर ऐसा लगता था कि कुछ बात अभी बाकी है, और वो क्या थी मैं समझ नहीं पा रहा था। बात करते करते बीच में रुकना, उनके परिवार के लोगों की आंखों में करुणा, विदाई के एक दिन पहले हम सब ने एक साथ भोजन किया। सोने का समय हो चला था, अभी हम सोने जा ही रहे थे कि ब्रिगेडियर ने कहा, सर मैं वर्षों से आपसे कुछ कहना चाहता हूं पर कैसे कहूं ये समझ नहीं आ रहा। ये बात आपके बेटे अरुण के बारे में है। मैंने उनसे पूछा कि तुम अरुण के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा, जी बहुत अच्छी तरह से। जिस बहादुरी की वजह से उसकी घर घर में चर्चा होती है, वो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। याद आता है वो दिन जब शकरगढ़ की उस युद्धभूमि पर 2 टैंक आमने सामने खड़े थे, जिसमें से एक टैंक में था आपका बेटा अरुण और दूसरे में और कोई नहीं मैं ही था। हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे, पर नियति को शायद यही मंजूर था कि मैं जिंदा हूं और अरुण शहीद।

0: हिट हो गया। मैंने जो किया वो मेरा काम था, पर सिपाही होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं। और जब मुझे पता चला कि उस समय अरुण सिर्फ 21 साल का था, तो उस घटना ने मुझे बड़ी बुरी तरह से झकझोर दिया। जिस बहादुरी से आपके बेटे ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की, उसके लिए मैं उसे सलाम करता हूं। मेरे लिए ऐसे व्यक्ति का सामना करना जिसने मेरे पुत्र की हत्या की थी आसान नहीं था, पर उस समय मेरे जहन में बस यही पंक्तियां आई, हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी दुनिया में तेरा नाम, दुश्मन के गलियारे में भी होती है तेरी चर्चा आम। सलाम सलाम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। श्रोताओं, आशा है कि आपको हमारे कार्यक्रम जरूर पसंद आए होंगे। तो फिर देर कैसी, भेज डालिए अपना संदेश। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। ये है निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। इस समय सुबह के 10:35 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं के लिए उनका पसंदीदा कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी।

ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम में हमारी सभी बहनों को स्वागत छे। कार्यक्रम में आज आपका साथ आपकी बहन अंतिम बाला, आप सबका मारी राम राम। बहनों, आज को दिन हमारा लेना बहुत खास छे, क्योंकि आज को दिन समर्पित छे हमारा देश का वैज्ञानिक नगा, देश का वैज्ञानिक जो कि दिन रात लगेल रज नया नया आविष्कार न आसाद वैज्ञानिक न अभियंता न की उपलब्धि न उनका सम्मान में आज का दिन का हम सब राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का रूप में मनावाएं। बहनों, हमारो छोटो सो घर बनाउनो होए या बड़ी इमारत न नदी न का एक छोर का दूसरा छोर का मिलाउनो होए न कारण हमका पुल बनाउनो होए बड़ी बड़ी संरचना न का निर्माण में हमारा अभियंता न तकनीकी को बहुत बड़ो योगदान छे। आज का दिन यानी 11 मई 1998 का पोखरण राजस्थान में सफल परमाणु परीक्षण हुयो थो। एक ऑपरेशन शक्ति का नाम से भी जाने जाए। बहनों, इना ऑपरेशन को नेतृत्व डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने करयो थो। आज का दिन हमारा देश ना त्रिशूल मिसाइल को भी सफल परीक्षण करयो थो। साथ ही पहला स्वदेशी विमान हंसा 3 को भी परीक्षण करयो गयो थो। बहनों, हमारा लेना गर्व की बात छे कि इना परीक्षण न का साथ हमारो देश दुनिया का उना 6 देश न में शामिल थो जिनका पास परमाणु शक्ति छे, जो कि हमारा लेना एक बहुत बड़ी उपलब्धि छे। बहनों, प्रौद्योगिकी की बात करा तो प्रौद्योगिकी यानी कि तकनीकी न हमारा जीवन का हर पहलू का सरल तेज न कुशल बने दियो। स्मार्टफोन, इंटरनेट, इस सब सुविधा

0: ना तकनीकीज को योगदान छे। इनका उपयोग से हम घंटों का काम ख मिनट नम करी ले मान। बैंक रेलवे स्टेशन न पर लंबी लंबी लाइन नम घंटों खड़ा हुई ना काम होतो तो जहाँ वहाँ आज उच काम हम घर बैठा बैठा मोबाइल फोन से करी सकान। जेका से समय की बचत भी होज न पैसा के भी। शिक्षा का क्षेत्र की अगर हम बात करा तो आज बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई करी ना दूसरा बड़ा बड़ा शहर नम रहना का खर्च से भी बची जाए। चिकित्सा का क्षेत्र की बात करा तो कई गंभीर बीमारी न की पहचान न निदान करनू तकनीकी से बहुत आसान हुई गयो। छोटी बड़ी जानकारी न सूचना न आज एक पल में गांव का एक कोना से देश दुनिया तक पहुंची रही न जेका से सजगता न जागरूकता बढ़ी रही। बहनों घरेलू उपकरण न सिलई न परिवहन खेत का काम न सिलई न बड़ा बड़ा जो उद्योग छे उन हमारा जीवन का जो तकनीकी को हम उपयोग छे ओका से हमारो जीवन बड़ो आरामदायक हो गयो। हम जो यहाँ बैठे ना आपसे बात करी रहा ये भी तो तकनीकी का कारण संभव छे। विद्यार्थी ना की बात करें तो आज तकनीकी का उपयोग से उनका पास ज्ञान अर्जन का लेना बहुत सा अवसर न सुविधा न मिली रही जो पहले नहीं थी ना। नेको सबसे अच्छा उदाहरण हमका कोरोना काल में देखने को मिलियो। इन्हीं तकनीकी की मदद से बच्चा न की पढ़ाई पर कोई भी असर नहीं पड़े सुचारू रूप से बच्चा न की पढ़ाई चलती रही। तो बहनों ये सब सुविधा न हमका हमारा बच्चा न का आगे बढ़ौना का लेना चाहिए पर ध्यान रखा कि हम पूरी तरह से इन पर निर्भर नहीं हुआ। बच्चा न का मोबाइल टीवी का आदि नहीं बनावा समय समय से उनको उपयोग करा न जीवन में समय के साथ चला। तो बहनों ये तो हुई हमारी आपसे आज की बात ना भी सुना ये संदेश।
1: QR कोड स्कैन करो 5000 का कैशबैक पाओ वाह दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
0: बैठन शासन के द्वारा ऐसी कई योजना न सुविधा न हमको दी जाए ना जिनका से हमारो जीवन आजीविका सरल होती जाए। तो ऐसी जो एक योजना न सुविधा न छे ना जो हमारा श्रमिक भाई बहन नकलन छे तो इन आज विषय पर अपन जानकारी सुनान श्रमिक बहनों के लिए योजनाएं और सुविधाएं। जानकारी दई राज नामदेव पटेल सहायक सचिव ग्राम लाहौरी।
4: बहनों शासन के द्वारा कई योजनाएं हमारे श्रमिक भाइयों और बहनों के लिए संचालित की जा रही हैं जिनकी जानकारी आज हमें दे रहे हैं श्री नामदेव पटेल जो कि सहायक सचिव ग्राम लोहारी में पदस्थ हैं। पटेल साहब कार्यक्रम में आपका स्वागत है नमस्कार।
5: नमस्कार। जैसा कि सरकार के द्वारा श्रमिक भाई बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही है जो कि उनके लिए कारगर साबित होती है।
4: आनंद जी सबसे पहले तो हम ये जाने कि शासन के द्वारा श्रमिक भाइयों और बहनों के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं।
5: मैडम शासन से जो योजनाएं चल रही है मनरेगा स्कीम जो एक परिवार को 100 दिवस का रोजगार मुहैया करवाती है
4: जी।
5: और वो भाई और बहनों के लिए एक वरदान साबित होती है। 100 दिवस का रोजगार उस परिवार को मुहैया करवाया जाता है और उनके लिए बहुत अच्छी योजना है जो 100 दिवस का रोजगार देने के साथ साथ उनको जो जनकल्याणकारी जो योजनाएं रहती है सरकार की जैसे संबल कार्ड हो गया आयुष्मान कार्ड हो गया उसके बाद में प्रधानमंत्री मानधन योजना है जो 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच के सदस्यों का पंजीयन कर सकते हैं।
4: हाँ।
5: उसके बाद में उसमें आयुष्मान कार्ड के साथ साथ उनको 5 लाख का इलाज फ्री होता है
4: जी जी
5: जो अस्पताल प्रबंधन की ओर से उन्हें मुहैया करवाया जाता है। तो सरकार की जो स्कीम्स और योजनाएं हैं वो अपने श्रमिक भाई बहनों को और महिलाओं को बहुत ही आसानी से मिल रही है
4: जी जी।
5: इसमें सबसे पहले तो मैडम जी मैं बताना चाहूँगा कि महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा समूह के माध्यम से उन्हें ऋण मुहैया करवा के उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं
4: जी।
5: उन्हें रोजगार के अवसर सुनिश्चित कर रहे हैं
4: जी। पटेल साहब ये जो आपने बताया कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है तो इन समूहों के माध्यम से क्या महिलाएं ऋण भी ले सकती हैं या अगर उनको कोई रोजगार करना हो तो क्या वो कर सकती हैं।
5: बिल्कुल मैम सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाओं में उन्हें ऋण प्रदान किया जाता है। 10 से 12 महिलाओं को एकत्रित करके उनका एक समूह सुनिश्चित किया जाता है, उन्हें बैंक के माध्यम से उन्हें ऋण मुहैया करवाया जाता है, जिससे कि वो अपने ऋण को किस्तों के माध्यम से जमा कर सकते हैं, जो भी उनके

0: आय होती है उसमें वो अपना सभी लोग मिलकर उसको जमा करते हैं। उन्हें व्यवसाय जैसे आटा चक्की का व्यवसाय करना है, जैसे उन्हें गांव में और भी अपने उद्योग लगाने हैं, तो उनको बहुत कारगर साबित हुई है उन महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने में।
1: पटेल साहब, आपने बताया था कि मनरेगा योजना चलाई जा रही है, तो इस बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी दीजिए।
0: जी, मनरेगा स्कीम के माध्यम से मैडम जी जॉब कार्ड प्रदाय किए जाते हैं परिवार को। उसमें कार्य के लिए आवेदन ग्राम पंचायत में श्रमिक भाई बहन को देना पड़ता है। श्रमिक भाई बहन जैसे ही वो अपना आवेदन ग्राम पंचायत में जमा करते हैं, उन्हें कार्य आवंटन किया जाता है। जैसे ही कार्य आवंटन किया जाता है, उन्हें साइट पे उन्हें उनके लायक कार्य, जल संवर्धन के कार्य, जीर्णोद्धार के कार्य और वर्तमान स्थिति में देखते हुए पेयजल की बहुत ही संकट है, तो उसमें उन्हें अब जो जल संवर्धन के कार्य है वो प्रदान किए जाते हैं, जिससे कि महिलाओं को भी रोजगार ग्राम स्तर पे ही मिल जाता है।
1: जी जी।
0: और ग्रामीण स्तर पे रोजगार मिलने से उनके आर्थिक मदद मिलती है उनको।
1: जी, जैसे कि आपने बताया कि श्रमिकों को मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, तो इसमें बहनों को कार्यस्थल पर कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं?
0: मैं बताना चाहूंगा कि बहनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि उन्हें अपने उनके जो कार्य है मनरेगा स्कीम में, उन्हें एक तो मेट के रूप में भी हम उन्हें चयनित कर रहे हैं। जैसे एक ग्राम पंचायत है, छोटे से ग्राम पंचायत है या बड़ी ग्राम पंचायत, उसमें 2 से 3 महिलाएं मेट के रूप में कार्य करती है, और मेट के रूप में कार्य करने से उन्हें उनके जो मजदूरी दर है उन्हें पे के हिसाब से उनको मजदूरी दर मिलती है, तो उनको एक आर्थिक सहायता मिलती है। उनको एक पढ़े लिखी महिला को एक रोजगार मिल जाता है मेट के रूप में, और समूह से जुड़े रहते हैं तो उन्हें उनके जो समूह वाले रहते हैं उन्हें उनके 40 का एक ग्रुप बना के उन्हें रोजगार प्रदाय किया जाता है। उन्हें उनके जैसे महिलाओं की बात की जाए मैडम जी, तो महिलाओं में रोजगार के लिए उन्हें वहाँ उनके लायक कार्य दिया जाता है।
1: अच्छा,
0: और
1: अच्छा।
0: उनके लायक कार्य जैसे कि सरकार भी चाह रही है कि महिलाएं आगे बढ़े, महिलाओं को आत्मसम्मान से जीने का अपना एक अधिकार मिले।
1: पटेल साहब, जैसे कि आपने बताया कि कार्य स्थल पर जैसे तालाबों का गहरीकरण करना है या जल संवर्धन के कार्य करना है, तो यहाँ पर महिलाएं जैसे जाती हैं काम करने, तो अगर कोई महिला है जो अपने छोटे से शिशु को भी लेके जा रही है, तो वहाँ के पास क्या सुविधाएं होती
0: हैं? इनके लिए झूला घर की सुविधा वहाँ पर हम उपलब्ध करवाते हैं। ग्राम पंचायत, हर ग्राम पंचायत में उपलब्ध रहते हैं। उनको एक पेड़ के नीचे जो भी वृद्ध महिला है या जो 2 से 3 बच्चे हैं, तो एक महिला को उनके देखभाल के लिए हम वहाँ चयनित कर देते हैं। जो महिला मेट रहती है उनको बोल देते हैं कि भाई इनको असुविधा नहीं हो। पीने के साफ पानी के लिए भी हम वहाँ पर उपलब्ध करवाते हैं। जो भी महिला मेट रहती है, कर्मचारी रहते हैं, जैसे हम रोजगार सहायक हैं, हम वहाँ पर पानी की व्यवस्था करवाते हैं।
1: जी जी, बहुत ही अच्छी बात है नामदेव जी, कि श्रमिक बहनों के लिए आप सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं उन्हें और उनके कार्य में सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, आपने जैसे बताया कि इनको एक श्रम कार्ड दिया जाता है, तो गाँव में ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें ये जॉब कार्ड मिल सकता है, क्या पात्रता होनी चाहिए इसके लिए?
0: इसके लिए मैडम जी पात्रता ये है कि वो वयस्क व्यक्ति होना चाहिए और कार्य करने का इच्छुक होना चाहिए, उन्हें ग्राम पंचायत जॉब कार्ड प्रदान करती है।
1: नामदेव जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने हमारे श्रमिक भाइयों और बहनों को। मैं आपसे अब जानना चाहूंगी कि जो इन योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं उनके पास कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए?
0: श्रमिक भाई बहनों के लिए जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जैसे कि उनका आधार कार्ड होगा सबसे महत्वपूर्ण, उनकी बैंक खाता नंबर की पासबुक होना चाहिए, समग्र परिवार आईडी होना चाहिए, उनके पास परिचय पत्र होना चाहिए, और जैसे कि जॉब कार्ड धारी परिवार है तो उसके लिए जॉब कार्ड होना चाहिए। तो 5 से 6 दस्तावेज उनके महत्वपूर्ण है जो कि समस्त योजनाओं में उनको लगते हैं। जनकल्याणकारी योजनाओं में श्रमिक भाई बहनों को जो लाभ मिलता है, संबल योजना जो शासन की जो महत्वपूर्ण योजना है संबल योजना, वो उसके साथ कर्मकाल मंडल योजना है, योजनाएं जो सरकार की है, ये श्रमिक भाई बहनों के लिए एक वरदान साबित हुई है। संबल योजना जो सरकार की चल रही है उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि किसी परिवार को भगवान ने चाहे कुछ हानि दुर्घटना हो जाती है, तो उसमें उसके लिए 4 लाख रुपए का दुर्घटना की आर्थिक सहायता शासन प्रदान करती है। और उसके साथ साथ कुछ 60 वर्ष से कम है और कुछ प्राकृतिक दुर्घटना हो जाती है, तो उसको 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार संबल में प्रदान करती है। संबल योजना परिवार के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम है। जो परिवार के पास कुछ सहारा नहीं रहता है, तो उसके लिए ये योजना एक वरदान साबित हुई है श्रमिक भाई बहनों के लिए। आयुष्मान कार्ड योजना से उनका निःशुल्क इलाज सरकार से फ्री में होता है,
1: जी।
0: तो ये कार्ड भी ग्राम पंचायत में निःशुल्क

0: ग्राम रोजगार सहायक और पंचायत स्तर के सचिव साथी एवं पूरे कर्मचारियों ने सहयोग से बनवाए, जो कि श्रमिक भाई बहनों के लिए एक वरदान साबित है। कामगार सेतु योजना भी श्रमिक भाई बहन के लिए एक 10,000 रुपये का ऋण मुहैया करवाती है, जिसमें कि उसके छोटे मोटे रोजगार के रूप में बहुत ही अच्छी स्कीम है। उसमें भी 10,000 रुपये का ऋण बिना ब्याज का शासन प्रदान करवाते हैं और उसमें वो अपना कोई भी छोटा सा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
1: बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं शासन की नामदेव जी। अब हम बात करें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की, तो ये योजना क्या है और इसमें श्रमिक भाई बहनों को क्या लाभ दिए जाते हैं?
0: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना को इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बुढ़ापे में सहारा देना है, ताकि असंगठित क्षेत्र के मजदूर वर्ग भी 60 साल की उम्र पार करने पर वो अपने जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं। वो अपने बुढ़ापे में स्वाभिमान के साथ जी सके, किसी दूसरे पर निर्भर न रहना पड़े। उनको 55 रुपए से 200 रुपए प्रति माह जमा करना है और उनके जो भी आयु है जैसे 18 साल से 40 साल तक उनको करना है।
1: जी जी, मतलब जैसे आयु होगी उस हिसाब से प्रीमियम उन्हें भरना पड़ेगा।
0: जी जी, ये योजना 1 फरवरी 2019 को घोषणा हुई थी, 15 फरवरी 2019 को चालू हुई थी। तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ये बहुत अच्छी स्कीम है।
1: नामदेव जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे श्रमिक भाइयों और बहनों के लिए। अंत में आपसे जानना चाहूंगी कि इन योजनाओं का लाभ हमारे श्रमिक भाई बहनों को लेना है तो वो कहाँ संपर्क कर सकते हैं?
0: बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा मैम जी। समस्त स्कीम का लाभ लेने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत स्तर से और शहरी क्षेत्र में नगर निगम स्तर से योजनाओं का क्रियान्वयन होता है, और जो स्कीम है वो पूर्णतः अपने दस्तावेज लेकर हम उनका लाभ उठा सकते हैं। ये सब ग्राम पंचायत स्तर और नगरीय क्षेत्रों में निशुल्क होता है। जॉब कार्ड भी निशुल्क प्रदाय किए जाते हैं, वहीं पर पंजीयन होते हैं।
1: जी, अंत में आप हमारे ग्रामीण भाइयों और बहनों से क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे उन्हें?
0: मेरी ओर से मेरे समस्त श्रमिक भाई बहनों को यही निवेदन या सलाह देना चाहूँगा कि जो भी पात्र श्रमिक भाई बहन हैं वो अपने ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत से संपर्क करके विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। और पात्र हितग्राही सरकार की समस्त जनकल्याणकारी योजनाएं चल रही है उनका लाभ आसानी से ले सकते हैं।
1: नामदेव जी, आपने हमसे बातचीत की, हमें समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैडम जी।
2: बहनों, अभी हम सुन रहे था श्रमिक भाई बहनों का लेना योजना ना उनकी सुविधा ना जानकारी दे रहा था नामदेव पटेल, सहायक सचिव ग्राम लोहारी से। अब हमारा कार्यक्रम में समय छे बहन होन व्यंजन को, तो अभी हम देखिए आज की कच्ची कैरी न बाजार में बहुत आई रही ना, तो इनको एक व्यंजन हम आपका लेने लाए आज। ये में हम कच्ची कैरी की आपका चटनी बनाऊ बतावांगा। एक हम सामग्री लिख लियो, 500 ग्राम कच्ची कैरी, स्वाद अनुसार नमक, काली मिर्ची, काला नमक, गुड़, हल्दी, खड़ी लाल मिर्ची, जीरो, सौंफ, जो भी आपका ये मसाला डालना है आप डाली सको आपका स्वाद अनुसार। अब एक बनावा कसा, कच्ची कैरी न छीली ना कद्दूकस कर लेवा, छोटा छोटा टुकड़ा नम काटी लेवा, एम गुड़ न नमक नाखी देवा, न फिर एक ढाकी ना थोड़ी देर का लेना रखी देवा। आम का करा कि कढ़ाई में खड़ी लाल मिर्ची न जो भी मसाला हमने खड़ा लिया वो 2 से 3 मिनट तक कढ़ाई में सेकी लेवा। इना मसाला न पीसी लेवा, नम कैरी न गुड़ न को जो मिश्रण हमने तैयार करी न रखियो अच्छी तरह से पकई लेवा। मिश्रण का इतनी देर पकावा कि उमा को पानी सूखी जाए न गाढ़ो ही जाए। आमे में जो हमने मसाला तैयार करा जो मसाला डाली ना थोड़ी देर आरू पकावा, ताकि जो मसाला न को पूरा अर्क छे वो कैरी का मिश्रण में आई जाए। अब इना मिश्रण का अच्छो पकी जाए उसके बाद ठंडो होने देवा, न एक हवा बंद डब्बा में या कांच की बरनी में रखी देवा। न तैयार छे ये कैरी की चटपटी चटनी। इन चटनी का हम 3 महीना तक अच्छा सी अगर रखा तो रही सकज न ओके बाद देखा हम पराठा न के साथ खाई सकें, ब्रेड पर लगे न खाई सकें, जैसो भी आपका खानो वो सो आप एक्यो आनंद ले सकोज। न बहनों, अब आज को घरेलू नुस्खो, तो आधा चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच सौंफ, जीरा न अजवाइन एक रात भर हम एक गिलास पानी में भिगो देवा। न सुबह एक इतना उबाला कि पानी आधो रह जाए। अब इना काढ़ा का 30 दिन तक लगातार सेवन करने से शरीर में जहाँ भी जोड़ने में दर्द होए ओका से हमका धीरे धीरे राहत मिलेगा, ना हमारी मांसपेशी न भी मजबूत होएगा। तो बहनों, ये घरेलू नुस्खा का जरूर आजमाओजो, ना हमका जरूर बताओजो ना आज को टिप्स। हम कितने बार सोचन कि जो रोज को हमारो दाल चावल रोटी को भोजन छे ओका से हम थोड़ा बोर हो जावन, तो सोचन कि

बन मेरा दुबे का गाया इना भजन के साथ है आज को कार्यक्रम यान पूरा होज बहन आप सबका आपके बन अंतिम बाला की राम राम।

0: अभी ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। दिन के 11 बजने को है, कुछ ही पलों में राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। इस समय दिन के 11 बज रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
2: रंग तरंग
1: मिश्रित संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं ऐसे कुछ गीत जो मिले जुले होते हैं, कुछ भजन, कुछ कव्वाली, कुछ पॉप सॉन्ग्स, इस तरह के अलग अलग गीतों का ये मिला जुला रूप है। तो लीजिए, विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग और मैं हूं आपके साथ नेहा आगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं सुनीता राव के गाए इस गीत का के साथ, जिसे लिखा है श्याम अनुरागी ने। सुनीता राव ने इसका संगीत बनाया है और एल्बम का नाम है चमके बिजुरिया।

लगातार झट थाम लिया फिर हाथ मेरा वो घूम घूम नाचने लगा क्या खूब जोश वहाँ में जागा गिरा लौंग किधर कहीं बाला गिरा मारो अंग अंग मतवारा भया हम भाप गयो मन कांप गयो दोनों नाचत नाचत हाँप गयो झट सीने से फिर लिपटाए

और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं तेरे बिना इस एल्बम का ये गीत अभिजीत की आवाज में। नुसरत बदर ने इसे लिखा है, सप्तर्षि का संगीत।

और लीजिए अब आपको सुनाते हैं रियाज उर रहमान सागर की रचना। इस गीत को आवाज दी है अदनान सामी ने, संगीत अदनान सामी का, एल्बम का नाम कभी तो नजर मिलाओ।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

देखा है तेरी आंखों को इस एल्बम का गीत सुनिए, आवाज और रचना साधु की। इस गीत को संगीत से सजाया है ललित ने।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं तन्हा दिल इस एल्बम का गीत, शान की आवाज, शान की रचना और संगीत राम संपत का।

0: रंग तरंग कार्यक्रम का ये अंतिम गीत अभी आपने सुना। अब दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को। नमस्कार।
1: रंग तरंग
0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में होंगे समाचार।

0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ अमृत पर्व समारोह में शामिल होने के लिए आज गुजरात के प्रभासपाटन पहुंचे। हेलीपैड पर उतरने के बाद प्रधानमंत्री ने हमीरजी गोहिल सर्कल तक 1 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत पर्व के तहत धार्मिक अनुष्ठानों में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। श्री मोदी बाद में वडोदरा भी जाएंगे, जहां वे शाम सरदार धाम छात्रावास का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये उत्सव भारत की शाश्वत ऊर्जा का उत्सव है और सोमनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक चेतना और आस्था का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से 7 अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पोलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री की अपील ऐसे समय में आई है जब पश्चिम एशिया संकट और होर्मुज जलडमरु मध्य में गतिरोध जारी रहने के कारण प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत में $100 से अधिक बनी हुई है।
2: आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, हमें वो मुद्रा भी बचानी है। वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है, हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा।
1: प्रधानमंत्री ने एक वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने पर दोबारा विचार करने जैसे विदेशी खर्च में कटौती के उपाय तलाशने का आग्रह भी नागरिकों से किया। श्री मोदी ने वर्क फ्रॉम होम अभ्यास को फिर से लागू करने का भी आह्वान किया। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने भारतीय जनता पार्टी के हिमंता बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार का गठन करने के लिए आमंत्रित किया है। असम में एनडीए की पहली के लगातार तीसरी सरकार होगी। एनडीए विधानमंडल दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री हिमंता ने गठबंधन के अन्य नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की थी और सरकार बनाने का दावा पेश किया था। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और मंत्रिपरिषद के नए सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया के जलवायु और ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन के साथ वर्चुअल बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने बताया कि उन्होंने सम्मेलन समिति COP 31 की प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भटियात उपमंडल में काकिरा लाहरू सड़क पर एक कार दुर्घटना में 6 पर्यटकों की मौत हो गई, 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मृतकों में से 5 गुजरात के निवासी थे, जबकि चालक मंडी

0: जिले का रहने वाला था। उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति में सतर्क रहने और सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। फुटबॉल में एफसी बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 2-0 से हराकर वर्ष 2025-26 का ला लीगा खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हम कुछ खास करने वाले हैं। क्या होगा वो खास, चलिए आपको बताते हैं। प्रौद्योगिकी, यानी कि आज जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। प्रौद्योगिकी ने हमारी जिंदगी को नए रंग और नई रफ्तार दी है। रेडियो की कहीं मधुर आवाज है तो कहीं मोबाइल की दुनिया, टीवी की चमक है कहीं तो कहीं सेल्फी का नया अंदाज है। तकनीक अब हर रिश्ते और हर एहसास का हिस्सा बन चुकी है। प्रौद्योगिकी दिवस पर सुनिए कुछ ऐसे ही गीत जिनमें इन आधुनिक शब्दों की दिलचस्प झलक सुनाई देगी। तो चलिए आगाज करते हैं पुराने समय से, फिर धीरे धीरे लौटेंगे नए समय तक। तो दीजिए सुनवाते हैं आपको पतंगा फिल्म का गीत शमशाद बेगम और चित्तालकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसके बोल लिखे हैं, सी रामचंद्र का धुन और इस फिल्म का नाम पतंगा।
2: हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ।

0: और आइए अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म हसीना मान जाएगी से। अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजें हैं, समीर की रचना है। लीजिए सुनिए ये गीत।
1: हेलो 9821026212 BPL। अरे 9820026235 मैक्स टच। यार जिस लड़की को

0: ए प्राइवेट पार्टी, व्हाट इज योर प्राइवेट नंबर? कहाँ से तू आती है डार्लिंग, कहाँ को तू जाती है? आके जाके ऐसे क्यों दिल को तड़पाती है?
1: व्हाट इज योर स्टाइल?

0: इज योर झुमका नंबर, व्हाट इज योर झुमका नंबर?
1: सॉरी मोबाइल नहीं, ले ले तू पेजर नंबर।
0: व्हाट इज मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर स्माइल नंबर?
1: व्हाट इज योर स्टाइल नंबर, करो क्या टाइल नंबर?
0: कहां से तू आती है डार्लिंग, कहां को तू जाती है? आके जाके ऐसे क्यों दिल को तड़पाती है? हाय हाय।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। चलिए अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म रोबोट से। इस गीत को गाया है राग्स योगी बी, मधुश्री, तन्वी शाह और कीर्ति सगाठिया ने। स्वानन किरकिरे के बोल हैं और धुन बनाई है एआर रहमान ने।

सनम तेरी कसम, इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवाएंगे नीति मोहन, अकाशा सिंह और दर्शन रावल की आवाजों में। समीर ने इसे लिखा है, हिमेश रेशमिया ने इसकी तर्ज बनाई है।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: यादों की महफिल कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनिए, ड्रीम गर्ल। इस फिल्म से जॉनी टागांधी और मीत ब्रोज की आवाजें हैं। इस गीत को संगीत से सजाया है मीत ब्रोज ने।

0: और अब आपको सुनवाते हैं साजिद वाजिद का संगीतबद्ध किया ये गीत, जिसे लिखा है कौसर मुनीर ने। हिमेश रेशमिया, कीर्ति सगाठिया और पलक मुछाल की आवाजें हैं। फिल्म का नाम जय हो।
1: नटखट जट लटक मटक लचक मचक लचक मचक चाल चलत जा। ए छोरा गांडा थई गया।

0: ये जवानी है दीवानी, इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं रेखा भारद्वाज और विशाल ददलानी की आवाजों में। इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत है प्रीतम का।
1: साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी

टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज हर मेरा गागरा है, बगदाद से लेके दिल्ली बागरा, टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज हर

करण सहंबी की आवाज़ में सुनिए लुका छुपी फिल्म का ये गीत। निर्माण ने इसकी रचना की है और धुन बनाई है तनिष्क बागची और गोल्ड बॉय ने।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: सुब्रत सिन्हा का शब्दबद्ध किया ये गीत सुनिए, आवाज और धुन हिमेश रेशमिया की, फिल्म का नाम रेडियो।

विशाल ददलानी और नक्श अजीज और प्रीतम की आवाजों में सुनिए बोल है मयूरपुरी के प्रीतम की धुन। फिल्म का नाम बजरंगी भाईजान।

0: चल बेटा सेल्फी ले ले रे।
1: चल बेटा सेल्फी ले ले रे।
0: चल बेटा सेल्फी ले ले।

प्रौद्योगिकी दिवस के इस खास संगीतमय सफर में बस इतना ही। रेडियो, मोबाइल, टीवी और सेल्फी जैसे आधुनिक रंगों से सजे इन गीतों ने उम्मीद है आपका भरपूर मनोरंजन किया होगा। इसी मुस्कुराहट के साथ दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को। फिर मुलाकात होगी नए अंदाज और नए गीतों के साथ। नमस्कार।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। सुरीला सफर आज आप तय कर रहे हैं नेहा आगरकर देसाई के साथ। स्वीकार करें नमस्कार। साथियों, इबारत तो आपने पढ़ ही ली होगी। हमारे सभी श्रोताओं का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। यदि कोई ऐसे श्रोता है जो फेसबुक पर नहीं है और उन्हें आज की हमारी इबारत नहीं पता है, तो चलिए हम जल्दी से बता देते हैं। अच्छा, एक बात पहले और बता दूं कि इबारत जिन लोगों ने पढ़ी भी है और कमेंट्स किए भी हैं, उनमें लगभग सारे शब्द आ गए हैं, लेकिन एक शब्द है जो नहीं आया है अभी तक। एक नहीं बल्कि दो ऐसे शब्द हैं। तो एक बार जरा इबारत को ध्यान से पढ़िए शुरू से लेकर अंत तक। हो सकता है कि जिसे आप शब्द ना समझ रहे हो वो शब्द हो। इसमें कोई भी आ सकता है, संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, नाम, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए जल्दी से पहचानना है आपको और एक बार मैं पढ़ देती हूं ये इबारत आपके लिए। सुरीला सफर कहने के लिए तो एक सफर है, मगर ये वो सफर है जिसका मुसाफिर हमारा मन होता है। और मन के लिए कभी कोई बंधन होता है क्या? वो तो बेबाक पंछी की तरह इस पल यहाँ तो उस पल वहां होता है। जिस तरह पंछी खुले आसमां में ऊंची उड़ान भरते हैं, उसी तरह आप भी तैयार हो जाइए नेहा के साथ अपने मन की आशाओं को पंख लगा तमन्नाओं के गगन में कहीं खो जाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं मैंने जोर दिया है थोड़ी सी हिंट देने के लिए, ताकि जिन शब्दों को अभी आपने नहीं लिया है उन शब्दों को भी आप सोच सकें और महसूस कर सकें और जान सकें कि वो शब्द कौन सा हो सकता है। वैसे तो एक गीत था जो शुरू में मैंने लगाया था, मगर जब मैंने देखा कि वो शब्द तो अभी तक आया ही नहीं है, तो सोचा एक हिंट दे दी जाए और तब तक कोई दूसरा गीत सुनवाया जाए। और बिल्कुल आप लोगों ने जो दूसरा गीत है वो सही पहचाना है। लीजिए सुनवाते हैं अंदाज फिल्म का गीत, किशोर कुमार की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत। सफर, जी हाँ, यही शब्द है जो इस गीत में सुनने को मिलेगा।

तो रुझान आना शुरू हो गए हैं, मगर हम थोड़ा और इंतजार करेंगे ताकि हमारे सभी श्रोता इन दो शब्द जो बाकी हैं उनका अंदाजा लगाकर हमें कमेंट कर सकें। एक साथी ने लिखा है, सभी श्रोताओं को प्रणाम। सुरीला सफर के लिए पूरा समय विविध भारती दे रही है, ये एक अच्छी बात है। हम इबारत को बार बार पढ़ सकते हैं और सोचने समझने का पर्याप्त समय है कि हमारी पसंद कुछ न कुछ टैली कर ही जाए। जी हाँ, कई श्रोता हमसे पूछ रहे हैं कि आज तो इबारत बहुत ही जल्दी पोस्ट हो गई, तो पोस्ट को जल्दी करने की पीछे वजह यही होती है। अगर जल्दी पोस्ट आ जाती है तो उसका यही कारण है कि हमारे श्रोताओं को आराम से समय मिल सके। सुबह की भाग दौड़ होती है, तो अगर सुबह के काम करने के बाद जब बीच में थोड़ा समय मिले तो आप उस पोस्ट से इबारत को पढ़कर और फिर अपने शब्दों का अंदाजा लगा सके। देखिए, मजाक भी करते हैं हमारे साथी। एक साथी ने लिखा है, सुरीला सफर की पोस्ट रात 12 बजे तक नहीं थी, फिर आधी रात को आई। उत्सव फिल्म की तरह मन क्यों बहकारे बहका आधी रात को, बेला महकारे महका आधी रात को। क्या बात है, आप भी मजे ले रहे हैं हमारे। कोई बात नहीं, चलिए अगला भी जो शब्द है काफी लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना है। ये गीत है परिचय फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज, गुलजार।

चलिए, एक शब्द का कयास तो आप लोगों ने लगा लिया है, बिल्कुल सही सही, और वो शब्द है चलिए एक बार इबारत को फिर से पढ़ देती हूँ ताकि दूसरे शब्द का अंदाजा लगाने में भी आपको आसानी रहे। तो इबारत है, सुरीला सफर कहने के लिए तो एक सफर है, मगर ये वो सफर है जिसका मुसाफिर हमारा मन होता है। और मन के लिए कभी कोई बंधन होता है क्या? वो तो बेबाक पंछी की तरह इस पल यहाँ तो उस पल वहां होता है। जिस तरह पंछी खुले आसमां में ऊंची उड़ान भरता है, उसी तरह आप भी तैयार हो जाइए नेहा के साथ, अपने मन की आशाओं को पंख लगा तमन्नाओं के गगन में कहीं खो जाने के लिए। चलिए देखते हैं आप दूसरे शब्द का अंदाजा लगा पाते हैं या फिर मुझे ही बताना पड़ेगा। तो और तब तक चलिए आपको सुनवाते हैं गीत। देखिए, बहुत से श्रोताओं ने लिखा है कि जो दूसरा शब्द है वो हमिंग वर्ड हो सकता है। किसी ने लिखा है, मैंने शब्द से शुरू होने वाला गाना लिखा है, हम तेरे बिना जी ना सकेंगे। किसी ने लिखा है, आज शायद हमिंग से कोई भी गाना सुनाया जा सकता है, हमिंग वाला दीवाना हुआ बादल, कह दो कह दो। इस तरह के कई सारे गीत इन्होंने हमिंग वाले लिखे हैं। एक साथी ने लिखा है, जो गीत सच में बिल्कुल सही निकला है। लीजिए आपको सुनवाते हैं अजनबी फिल्म का गीत, किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की का संगीत।

यहीं पर है। ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो, बस समझ जाओ।

जिंदगी के इस शोर शराबे में सुरीला सफर महज आवाजों का मेल नहीं बल्कि खुद से मिलने का एक बहाना है। हमारा मन उस बहती नदी की तरह है जिसे किनारों की बंदिशें रोक नहीं सकती। ये तो अपनी ही धुन में कभी यादों के भंवर में उतरता है तो कभी सुकून के साहिल को छूता है। जैसे नदियां आजाद होकर सागर की ओर बढ़ती हैं, ठीक वैसे ही आप भी नेहा के साथ अपनी कल्पनाओं की कश्ती को तैयार कर लीजिए। चलिए आज एहसासों की लहर पर सवार होकर रूह की उन गहराइयों में उतरते हैं जहां सिर्फ सुकून और सुरों का बसेरा है। ये कमेंट हमारे एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं, आज का सुरीला सफर की पोस्ट बिटिया नेहा बड़ा मन बनाकर लेकर आई है, वो भी निर्धारित समय से कई घंटों पहले, क्योंकि हर श्रोता अपने विचार भी बड़े मन से व्यक्त कर सके। हम भी ये कहते हुए स्वागत करते हैं कि ये विविध भारती, ये सुरीला सफर, ये विषय से जुड़े गीत, ये प्रसारण तरंगे हमारे दिल को चुराएं, हमको लुभाएं। मन कहें क्यों न मैं गाऊं, क्यों न मैं जुड़ जाऊं सभी मित्रों को, और मेरे लिए भी इन्होंने लिखा है, नमस्कार कर रहे हैं सभी को। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। और हमारा जो अगला गीत है उसके बोल, मतलब वही जो शब्द आपने पहचाना है, बिल्कुल सही पहचाना है, शब्द है मन, और ये गीत भी कई लोगों ने सही पहचाना है। सुनिए चित्रलेखा फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी की आवाज, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा है, रोशन का संगीत।

मन को लेकर हमारे एक साथी ने लिखा है, मन प्रसन्न हो तो छोटी सी बात भी खुशी दे जाती है, लेकिन जब मन उदास हो तो सारी दुनिया फीकी लगने लगती है। इसलिए इंसान की सबसे बड़ी जीत अपने मन पर विजय पाना है। जब मन थक जाए तो थोड़ी शांति, थोड़ा संगीत, कुछ अपनों का साथ, खुद से बातचीत बहुत सुकून देती है। एक और साथी हैं जिन्होंने लिखा है, हमारा मन हमारे मस्तिष्क को साथ लेकर इंटरनेट से भी ज्यादा तेज दौड़ लगाता है, जिसके लिए ये पूरा ग्लोब भी छोटा है। मन की दौड़ का कोई अंत नहीं। बहरहाल आज भी नेहा जी के साथ सुरीला सफर सुहाना ही होगा। जी हाँ, तो मन की जो दौड़ है उसे कोई रोक नहीं सकता। बस आंखें मीचिए और सोचिए किसी दूसरे ग्रह के बारे में, तो आप बस वहीं पहुंच जाते हैं। तो मन को कहीं भी जाने के लिए बस पलक झपकने का समय लगता है, इससे ज्यादा नहीं। चलिए, अगला गीत और अगला शब्द भी जो आपने बिल्कुल सही पहचाना है, ये है बंधन। तो सुनिए इस गीत को। करण अर्जुन फिल्म से, कुमार सानू, अलका याग्निक, उदित नारायण की आवाजें हैं, इंदिवर के बोल हैं, राजेश रोशन का संगीत। और आप बताइए, बंधन में होना कैसा लगता है? बंधन किसी भी तरह का हो सकता है, वो बंधन अच्छा भी बुरा भी। आप क्या समझते हैं बंधन से और आपके क्या विचार हैं, जरूर बताइएगा। सुनिए ये गीत।

जी हाँ, तो हमने बात की थी बंधन की। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अर्थ ये कोई जंजीर, डोर या प्रतिज्ञा हो सकती है। आध्यात्मिक या दार्शनिक संदर्भ में ये वो विवशता है जो इंसान को किसी परिस्थिति में रहने को मजबूर करती है। भावनात्मक संबंध या दोस्तों, परिवार के बीच घनिष्ठ प्रेम और रिश्ते को भी ये दर्शाता है। एक साथी ने लिखा है कि बंधन एक ऐसा शब्द है जिसके अर्थ की गहराई मानवीय भावनाओं, सामाजिक मर्यादाओं और आध्यात्मिक चेतना तक फैली हुई है। साधारण

शब्दों में कहें तो बंधन का अर्थ जुड़ाव या बंधना, लेकिन ये जुड़ाव सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। बंधन स्वयं में बुरा नहीं है, ये इस पर निर्भर करता है कि हम किससे और कैसे बंधे हैं। प्रेम का बंधन हृदय को विस्तार देता है, जबकि स्वार्थ का बंधन व्यक्ति को संकुचित कर देता है। एक साथी ने लिखा है, आपने बंधन का पूछा, तो बंधन अगर प्यार, विश्वास और अपनेपन के हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे बंधन में हर कोई बंधना चाहेगा और बांधना भी चाहेगा, लेकिन बंधन अगर जबरदस्ती थोपे गए हो, जिम डर हो, एक अनिच्छ हो, वो बंधन किसी को भी अच्छा नहीं लगता। कभी कभी सामाजिक बंधन ऐसे होते हैं, इतने कठोर, जिनको निभाना बहुत मुश्किल होता है, तो ऐसा मन करता है कि ऐसे बंधों को, अरे बाप रे, इन्होंने लिखा है ऐसे बंधों के, नहीं देखिए अहिंसा की बातें हम नहीं करेंगे, तो जहां आप मतलब महसूस नहीं कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, जहां आप बंधन में नेगेटिव यानी कि नकारात्मकता महसूस कर रहे हैं, वहां से कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हो सके आप दूरी बना सकें, क्योंकि ऐसे बंधन हमेशा तकलीफ ही देते हैं। लेकिन जैसा कि आप सभी ने कहा कि बंधन प्रेम का हो तो अच्छा लगता है। चलिए अगला गीत आपको सुनवाते हैं, चोरी चोरी फिल्म से लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत। तो बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने, ये शब्द पंछी।

0: देखिए, अभी इससे पहले हम बंधन की बात कर रहे थे तो कहीं आजाद गगन में उड़ने की बातें हो रही हैं इस गीत में। हमारे एक साथी ने लिखा है, माता पिता का बार बार फोन करके हालचाल पूछना, वक्त पर खाना या सोने के लिए कहना कुछ बच्चों को अच्छा बंधन नहीं लगता, पर ये बातें जब माता पिता नहीं रहते तब यही बंधन बच्चों को याद आता है और प्यारा लगता है। जी हाँ, सही कहा आपने। एक साथी ने लिखा है, संसार में सबसे खूबसूरत बंधन वो है जो रक्त से नहीं बल्कि भावना से जुड़ा होता है। माँ का अपनी संतान से जुड़ाव, भाई बहन की नोक झोंक या मित्रों का निस्वार्थ प्रेम, ये सभी बंधन हमें ये एहसास कराते हैं कि हम इस विशाल दुनिया में अकेले नहीं है। एक ने लिखा है, जीवन में बंधन तो होना ही चाहिए, पति पत्नी, भाई बहन, गुरु शिष्य और दोस्तों का प्यार का बंधन, सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक और नैतिक बंधन भी होते हैं, वो भी निभाएं तो वसुधैव कुटुंबकम वाला बंधन सच हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब सुनिए ये संदेश।
1: सुनिए,
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी।
2: कहिए ना।
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
4: शुक्रिया, शुक्रिया।
3: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
0: समय की एक अजीब बात यह है कि जब समय अपनों के साथ गुजारा जाए तो कम लगता है और जब कठिन समय आता है तो वही समय बड़ा ज्यादा लगने लगता है। बात हो रही है पल की। जी हाँ, अगला शब्द है पल। ये पल वही होते हैं जो अच्छे हो तो जल्दी से निकल जाते हैं और अगर कठिन परिस्थिति में हो तो फिर बड़ा दुख देते हैं और बड़े लंबे लगते हैं। तो चलिए पलों को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हैं ताकि हम उस शब्द तक पहुंच सके जो अभी तक आप लोगों ने नहीं पहचाना है। पहचानिए उस शब्द को, वरना होगा ये कि लिस्ट में उस गीत को पीछे करते करते करते कहीं वो गीत लिस्ट से बाहर ना हो जाए। समय का काटा चल रहा है तो जल्दी से उस शब्द को भी पहचानिए जो अभी तक आप नहीं पहचान पाए हैं। और तब तक सुनिए ब्लैकमेल फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। घड़ी का काटा बढ़ रहा है, शब्द को जल्दी से पहचानिए। एक ही शब्द है जो अभी तक किसी ने नहीं पहचाना है, बाकी सारे शब्द लिस्ट में आ चुके हैं।

बंधन को लेकर एक साथी लिखते हैं, बंधन अनुशासन का दूसरा रूप है, इसमें व्यक्ति संयमित रूप से रहता है। तो किसी ने लिखा है, अब जाकर मेरा अनुमानित गाना हो रहा है। खैर, बंधन की बात आपने पूछी तो पूरा संसार ही बंधन है। हम तो विविध भारती के बंधन से जकड़े हुए हैं, बिना बंधन के संसार चल ही नहीं सकता है। इसके पीछे विज्ञान है, धर्म है और दर्शन भी है। अगर विवेचना करने लगूं तो पूरी एक पुस्तक ही बन जाएगी। क्या बात है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि कुछ विषय ऐसे होते हैं कि जिन पर यदि हम बात करने निकले तो एक पूरी पुस्तक लिखी जा सकती है। हमारे कुछ साथी हैं जो अलग अलग कयास लगा रहे हैं, ऊंचे ऊंचे इस शब्दों पर गीत आ सकता है, या फिर तैयार, या फिर बेबाक, इन शब्दों पर गीत हो सकता है, या फिर जिसका, ये भी किसी ने लिखा है। चलिए आप लोग अंदाजे लगाते रहिए, हम गाने सुनवाते रहेंगे और तब तक आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत जो कि है, आपने सही पहचाना है, आप में से कुछ श्रोताओं ने लिखा है आसमां के नीचे इस गीत को लिखा है, तो बिल्कुल आप सब सही थे। ज्वेल थीफ फिल्म का ये गीत है, किशोर कुमार की आवाज, लता मंगेशकर ने साथ दिया है।

कई सारे श्रोताओं ने उस शब्द को भी पहचान लिया है। जी हाँ, आप लोगों ने ये शब्द बिल्कुल सही पहचाना है। देखिए, थोड़ी सी मटरगस्ती करना तो हमें भी पसंद है कि शब्दों के बीच में कहीं नाम, सर्वनाम, विश्लेषण, कुछ भी हम जोड़ सकते हैं। तो जी हाँ, ये आपने सही कहा। एक साथी लिख रहे हैं, हमसे जो शब्द छूट गया है वो शायद आपका ही नाम है नेहा, है ना। किसी ने लिखा है नेहा शब्द पर भी गाना होगा, तो किसी ने लिखा है नेहा जी आपका नाम इबारत के अंदर है। तो आपने अंदाजा तो लगा ही लिया कि नाम इबारत के अंदर है तो इस पर गीत हो सकता है। फिर किसी ने लिखा है तोसे नेहा लगा के हार गई सजना, तो नहीं सोचा है आपने, इस गीत के लिए उन्होंने लिखा है। फिर किसी ने लिखा है नेहा जी एक शब्द मैंने पहचाना है जो किसी ने नहीं लिखा, आपका सुंदर सा नाम नेहा, धन्यवाद इसे सुंदर कहने के लिए। फिर किसी ने लिखा है मे बी नेहा हो सकता है लास्ट वर्ड, तो लास्ट तो नहीं, हम इसे अभी ही सुनवा रहे हैं। और लीजिए, अब आपको सुनवाते हैं मैं नशे में हूं, इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। और शब्द पहचानने के लिए धन्यवाद।

हमारे साथ ही बिल्कुल चौंक गए हैं। कुछ अलग अलग तरह की टिप्पणियां आई हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। किसी ने लिखा है, वाह ये गाना दिमाग में नहीं आया जबकि बहुत बार सुना हुआ है। आपका नाम भी दुर्लभ है नेहा जी, गाने खोजने में दोपहर को तारे नजर आ गए। देखिए अब ऐसा मजाक मत कीजिए कि नेहा नाम दुर्लभ है, देखिए एक ढूंढने जाएंगे 100 मिलेंगी। चलिए ये तो ही मजाक की बात। किसी ने लिखा है, वाह बहुत सुरीला गीत हो रहा है सुरीले सफर में, नेहा शब्द से मैं पहली बार ये गीत सुन रही हूँ। और किसी ने लिखा है कि हाँ नेहा जी मैंने ये गाना भी लिखा था। क्या बात है, आप सभी ने सही पहचाना, ये अच्छा लग रहा है जानकर। मुझे भी थोड़ा सा यही था, शंका थी कि क्या ये गीत सच में कोई पहचान पाएगा या फिर ये शब्द कोई पहचान पाएगा, मगर आपने पहचान लिया तो ये सुनकर मुझे, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारे एक साथी हैं जिन्होंने पहले ही लिखा था, ये कमेंट पहले ही आया था कि कुछ गाने दिमाग में आ रहे हैं, काफ़ी सारे तो लोगों ने लिखे हैं, एक तो शायद वो शब्द नहीं लिखा है, वो शाम कुछ अजीब थी या वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, एक आपके नाम से गाना है वो शायद किसी ने नहीं लिखा है, सजन संग नेहा काहे लगाए हाँ कि हम पछताएं। तो बिल्कुल ये गीत आपने पहले ही बता दिया था और वो गीत हमने सुनवा भी दिया। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज में ये गीत, फिल्म का नाम दूर गगन की छाँव में, गीत और संगीत किशोर कुमार का।

0: ले।
1: जी हाँ, तो ये शब्द था गगन, और आप सभी ने जिन्होंने भी इस गीत को लिखा है उन्होंने बिल्कुल सही पहचाना है। हमारे एक साथी लिखते हैं, फुर्सत मिले तो अपनी कमियों को गुदगुदा देना, बेबाक परिंदा बनकर जरा सा मुस्कुरा देना, सफर तो जारी है इस हर पल हर मोड़ पर, कभी खुद को भी उस सुरीले गगन का पता देना। तो ये था हमारा शब्द गगन। और साथियों, आपने किसी ने लिखा है कि वाह नेहा जी, गाने में भी आपने अपना नाम ढूंढ लिया। हाँ जी, ढूंढ लिया, इतना कॉमन सा नाम है। फिर एक साथी ने लिखा है कि नाम दुर्लभ तो नहीं है पर गीत बिल्कुल दुर्लभ है। जी हाँ, ये गीत दुर्लभ है या शायद कम सुनने में आता है। और सच बताऊं तो ये गीत मैंने भी पहली बार ही सुना, जब मैंने शब्द पर गीत ढूंढने की कोशिश की तो मुझे ये शब्द मिला। एक और गीत है जिसमें नेहा नाम आपको मिलेगा, फिर कभी जब सुरीले सफर में आपसे मुलाकात होगी तो उस गीत को शामिल किया जाएगा। देखिए, हिंट दे दी है, अगली बार ढूंढने की पूरी पूरी जिम्मेदारी श्रोता वर्ग की रहेगी। चलिए, अब इस सुरीले सफर कार्यक्रम से नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

दोस्तों त्रिवेणी में आज गिनती की बात। दोस्तों यूं तो हमारे जन्म से ही जीवन की गिनती शुरू हो जाती है। 365 दिन हुए नहीं कि हम अपना पहला जन्मदिन मनाते हैं और साल दर साल जन्म दिवस मनाते हुए जिंदगी के सालों की गिनती जारी रहती है। मगर हमारे दिमाग में गिनती का प्रवेश तब होता है जब हमें पाठशाला में दाखिला मिलता है।

पहले स्कूल, स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी, और फिर उसके बाद भी चाहे हम किसी की नौकरी करें या अपना व्यवसाय करें, एक दो तीन चार की ये गिनती, इन संख्याओं को जोड़ना घटाना, गुणा करना या भाग देना हमारे जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाता है। अब कॉपी किताबों से निकलकर ये संख्याएं हमारे जीवन में व्याप्त हो जाती हैं, इतनी कि आपस में लड़ पड़ती हैं।

जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, रिश्तों की और दोस्तों की संख्या बढ़ती जाती है। अब रिश्तों की संख्या को सीमित रखा जा सकता है, यानी परिवार कितना बड़ा हो इसका नियोजन किया जा सकता है, मगर दोस्ती का नियोजन कभी ना करें। दोस्तों की संख्या बढ़ती रहे। जिस दिन हमारा जन्म हुआ उसे हम जीवन का पहला दिन मानते हैं, परंतु दिन ब दिन, साल दर साल, जन्मदिन मनाते मनाते कई वर्षों बाद ये एहसास होता है कि असल में ये उल्टी गिनती चल रही है। कब 5, 4, 3, 2, 1 के बाद शून्य होगा कोई नहीं जानता। इसलिए अच्छे कर्म करें, दूसरों के लिए भी जिए, दोस्तों की संख्या बढ़ाएं, मुश्किलों को घटाते चलें, खुशियों को जोड़ते जाएं, गुजरते दिनों के साथ अपना हर पल रंगीन बनाएं।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों से साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से साथ अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पुलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करने, विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने एक वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने पर दोबारा विचार करने जैसे विदेशी खर्च में कटौती के उपाय तलाशने का आग्रह भी नागरिकों से किया।
1: एक जमाना था जब संकट आता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, विदेशी मुद्रा बचाने के लिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ अमृत पर्व के अवसर पर आज पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभ अभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार मंदिर के शिखर पर 11 तीर्थ स्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी सम्मिलित हुए। इस बीच वायुसेना ने एयर शो किया, जिसमें सूर्य किरण एरोवेटिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की। इसके बाद श्री मोदी ने विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सोमनाथ अमृत पर्व सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती ने चीतों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराकर उन्हें पुनर्स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य कर अपने परिवार का हिस्सा बनाया है। श्योपुर जिले के कूनू नेशनल पार्क में दो मादा चीतों को खुले जंगल में विमुक्त करते हुए उन्होंने कहा कि आज देश में चीता पुनर्स्थापना का ये प्रोजेक्ट सफलता के साथ में आयामों की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
2: मध्य प्रदेश ने एक नया इतिहास बनाया है। आज पालनपुर कूनों में हमने बोत्सवाना के द्वारा लाए गए चीते में दो मादा चीतों को छोड़ करके खुले जंगल में, खुले वातावरण में प्राकृतिक के साथ सह अस्तित्व के भावना को प्रकट करते हुए उनको छोड़ा है। मैं पालनपुर कूनों श्योपुर जिले के और चंबल मालवा के लोगों को बधाई देना चाहूँगा। लगभग 5000 किलोमीटर में अब इनका बसेरा हुआ है।
0: डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश धर्म निवेश एवं जैव विविधता के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका और अब बोत्सवाना से लाए गए चीतों के पुनर्स्थापना को निरंतर सफलता मिल रही है और आज प्रदेश ने देश भर में चीता स्टेट के रूप में पहचान बनाई है। वर्तमान में चीतों की संख्या 57 है, जिनमें से 54 कूनो नेशनल पार्क और 3 गांधी सागर अभ्यारण्य में है। प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदला हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश में सक्रिय 2 टर्फ और 1 साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से आज भी जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं दूसरी तरफ भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभाग के कई इलाकों में तेज गर्मी लोगों को परेशान करेगी। मौसम विभाग के अनुसार बैतूल, छिंदवाड़ा, पादरुना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देशवासियों और समस्त प्रतिभावान वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की शुभकामनाएं दी। मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कल खंडवा जिले के आंवलिया में प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शिविर में 10वीं, 12वीं एवं ITI उत्तीर्ण 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। और बरगीडेम में हुए भीषण क्रूज हादसे की न्यायिक जांच जबलपुर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज संजय द्विवेदी को सौंपी गई है, जो आगामी 3 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य को प्रस्तुत करेंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। अगले वित्त वर्ष में 6.6% की वृद्धि का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है।

0: पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। अगले वित्त वर्ष में 6.6% की वृद्धि का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्ष तक देश की प्रेरणा बनेगा।
1: मैं यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके।
0: गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे, जिनके माध्यम से देश के वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया।
1: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार शिखर पर 11 तीर्थस्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी शामिल हुए। इस बीच वायुसेना ने एयर शो किया, जिसमें सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद श्री मोदी ने विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। श्री मोदी ने हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये उत्सव भारत की शाश्वत ऊर्जा का उत्सव है और सोमनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक चेतना और आस्था का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर की दृढ़ता और शाश्वत सभ्यतागत महत्व को उजागर करने वाले संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लेख को साझा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है। अपने लेख में श्री शेखावत ने मंदिर के इतिहास को समकालीन भारत के साथ जोड़ते हुए लिखा है कि सोमनाथ की भावना 21वीं सदी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। श्री शेखावत ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत वर्ष भर चलने वाले राष्ट्रीय आयोजनों का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कहा कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में नई सरकार गठित होने के बाद आज हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में

0: निर्णय लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी।
1: आज पहले कैबिनेट में हम लोग VSF को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन MHA को ट्रांसफर करेगा, VSF फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
0: श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और कई अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की घोषणा की। राज्य को अब आधिकारिक तौर पर आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी प्राप्त किया जा सकेगा। श्री अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश तत्काल लागू किए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल ने चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए वचन के अनुसार विद्यालय की नौकरी के आवेदकों के लिए उम्र सीमा में 5 वर्ष का विस्तार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। तमिलनाडु विधानसभा में आज 100 से अधिक नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और कैबिनेट सदस्यों, प्रतिपक्ष नेता उदयनिधि स्टालिन, पूर्व मुख्यमंत्रियों इडापड्डी के पलनीसामी तथा ओ पन्नीर सेल्वम ने भी शपथ ली। इसके अलावा प्रमुख सदस्यों प्रेमलता, विजयकांत, सौम्या, अंबुमणि और गठबंधन के नेताओं ने भी शपथ ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। देश भर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महिला श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चों की उपस्थिति में उनकी देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक को नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से 7 अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पोलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह किया। उन्होंने 1 वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम और अत्यधिक सोने की खरीदारी न करने का आग्रह भी किया। वोकल फॉर लोकल आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता और जैविक कृषि भारत के लिए आवश्यक है।
3: भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है। मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिम एशिया की स्थिति की निगरानी करने के लिए गठित अनौपचारिक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में क्षेत्र की उभरती स्थिति की समीक्षा की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से

0: विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है और शांति की स्थिति अभी दूर है। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां विदेशी मुद्रा का खर्च कम से कम किया जा सके।
1: हमारे प्रधानमंत्री ने हम सभी नागरिकों से उन सभी चीजों पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है जिनके लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। साथ ही हमें अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करनी भी होगी। ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम दिए गए आह्वान को गंभीरता से ले।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे में एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने भूवैज्ञानिक कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण के लिए वैज्ञानिक ड्रिलिंग का भी शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस गंभीर वैश्विक समस्या का समाधान विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे को बधाई दी और घोषणा की कि इस परियोजना को अगले महीने फ्रांस में होने वाले भारत इनोवेट्स 2026 में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय विमानों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया था। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्योपुर जिले में कुनो राष्ट्रीय उद्यान के खुले जंगल में आज दो मादा चीता को छोड़ा। ये दोनों चीते इस वर्ष फरवरी में बोत्सवाना से भारत लाए गए 9 चीतों में से हैं। उन्हें क्वारंटीन और अनुकूलन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद जंगल में छोड़ा गया। इनके आने से देश में चीतों की कुल संख्या 57 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान लगभग 7.2% लगाया गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने विकास की मजबूत गति को बनाए रखा है। IPL क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे धर्मशाला में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए BSF को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत GRAMJI अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। SBI के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदा बहार नगमे। आइए आगाज करते हैं गर्लफ्रेंड फिल्म के इस गीत के साथ जिसे गाया है किशोर कुमार और सुधा मल्होत्रा ने। इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने, बोल साहिर लुधियानवी के, और संगीत है हेमंत कुमार का।

अनिल परदेसी का लिखा ये गीत सुनिए, जिसकी लय बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने। गीत को आवाज दी है शंकर दास, गीता दत्त और साथियों ने। फिल्म का नाम दिल भी तेरा हम भी तेरे।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।

0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
1: असली नकली इस फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। शब्द रचना हसरत जयपुरी की, शंकर जयकिशन ने इसकी धुन बनाई है।

धनीराम का संगीतबद्ध किया ये गीत अब सुनिए। शेरोज श्रीवास्तव के एक लिखा हुआ भी है ये गीत। आवाजें हैं मोहम्मद रफी, सबिता बैनर्जी और सीता की। फिल्म का नाम बाजे कुंगरू।

0: रस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: चाइनाटाउन फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा है, रवि की धुन। और सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम से इस गीत के साथ नेहा आगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने कितने

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली बस थोड़ी ही देर में।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: और मंजरी क्या हाल है?
2: हम भी ठीक हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे सभी सखी और सखियां साथी लोग अपने अपने घरों में सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। और भाई रेडियो सेट के करीब तो वो सुबह से होते हैं क्योंकि रेडियो विद भारती तो वो बहुत सुनते हैं शौक से।
1: बिल्कुल।
2: और खासकर सखी सहेली के लिए सब एक साथ जुड़ जाते हैं कि आज कौन आ रहा है, कौन क्या विषय लेकर आ रहा है।
1: भाई कोई भी आए लेकिन हर एक आकर जो है हमारे सभी सखियों और सखाओं से उतना ही प्यार करता है जितने आप और हम करते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और देखो मंजरी गर्मी का मौसम चल रहा है, इन दिनों हम गर्मी को लेकर बहुत चिंतित हैं। जो हमारे पशु हैं, पालतू पशु हैं या आवारा पशु हैं, उनका भी हमें इस गर्मी में बहुत ध्यान रखना है, पता है ना आपको?
2: बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे पशु हैं उनके लिए, आप जो घर में पालते हैं तो उनके लिए बाकायदा कुछ लोग तो शेड बनाते हैं और जो नहीं बनाते तो उनके पेड़ के नीचे बंधी रहती है। या आपके पास सुविधा है आप कर सकते हैं मैनेज, तो आप एक थोड़ा सा छप्पर जैसा कुछ डाल दीजिए जिसके अंदर वो पशु रह सके। और उनका खाना तो आप समय पर आप वो सब देते ही।
1: बिल्कुल।
2: नहलाना जिसे कहते हैं, अगर तालाब है तो आप उसमें ले जाके पशु को नहला सकते हैं। तो कुछ लोग नहलाते भी, ऐसा नहीं, हमने देखा है कई बार गांव में जब जाते हैं तो देखते हैं कि तालाब में बहुत सारी भैंसें एक साथ नहा रही हैं। गर्मी इतनी चिलचिलाती, धूप होती, लेकिन वो पूरी बॉडी उसमें ठंडी
1: ठंडी रहती है,
2: तभी निकलती है। तो हमसे जितना हो सके, हम लोगों से उतना हमें उन पशुओं के लिए भी करना चाहिए क्योंकि वो हमारे, हम जब देते तभी वो खाते हैं।
1: नहीं बिल्कुल, ये बात भी है, लेकिन एक जो संवेदनशीलता, जो एक मानवीय रिश्ता होता है, एक संवेदना का जो रिश्ता है, वो हर कण कण में व्याप्त हर कीट पतंगे के लिए हमारे मन में होना चाहिए। गर्मी का मौसम है, गाँव में तो इस तरह की छपरा बना दिया जाता है जहाँ भैंसे हैं, गाय हैं, बकरियां हैं, जो भी आपके पालतू पशु हैं उन पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है मंजरी, जगह के अभाव के कारण हमारे कुछ साथी लोग क्या करते हैं, पशुओं को खुला छोड़ देते हैं और पशु दिन भर गर्मी में कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और ऐसे समय में हमारे द्वारा फेंकी गई पॉलीथीन को भी वो चबाते रहते हैं। इस गर्मी के मौसम में अगर आपने गौर से देखा होगा तो उनके मुंह से फिर झाग आ रहे होते हैं और यही पॉलीथीन उनके पेट में जाकर पक जाती है, जो उनकी बीमारी का भी, अस्वस्थता का कारण, यहाँ तक कि मौत का कारण भी बन जाती है।
2: तो कहना चाहिए कि हमें इन चीजों पर भी ध्यान देना है कि हम स्वच्छता के ऊपर भी नजर रखें कि पॉलिथीन वगैरह, प्लास्टिक से बनी चीजों को हम डस्टबिन में ही डालें या कचरा जहाँ डालते हैं वहाँ डालिए, जिससे हमारे पशु उनको ना खा सके। और पशुओं का बहुत ख्याल रखें क्योंकि हम जितना उनसे प्यार करते हैं वो भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं। और देखिए मंदाकिनी जी, आज जो हमने विषय लिए उसमें है बिहार के व्यंजन, जिसमें दाल पीठा और सत्तू का शरबत। हमारे साथियों ने भी बहुत सारी रेसिपी लिखकर दी,
1: क्या बात है,
2: तो हम पढ़ेंगे, आनंद लेंगे। फिलहाल तो कुछ बनाएंगे नहीं, ना आपको हम खिलाने वाले हैं अभी।
1: वही हम आपसे पूछने वाले थे कि आप बना के लाई हैं क्या?
2: नहीं नहीं,
1: है ना, तो ये गलत बात है ना,
2: ये अगली बार के लिए, एक बार बताएंगे अगली बार खिलाएंगे, है ना। कथा सुधा में हम कहानी लेकर आए, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो, इसका भाग एक आज हम लोग आपको सुनवाएंगे। और रिश्तों से ज्यादा मित्र करीब क्या वजह है, तो इसकी वजह आप लिखकर भेजिए हमें संदेश में, और कुछ मीठे खट्टे किस्से भी लिखकर भेजिए। और मंदाकिनी जी, आज है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक गीत सुनेंगे।
1: बिल्कुल, सुनते हैं ये गीत।

0: हाँ, तो मंजरी गाना तो बहुत सुंदर था,
1: जी
0: और वैसे देखा जाए तो जब हम किसी के साथ चोरी चोरी बंद जाते हैं ना, तो यही गाना गुनगुनाते भी हैं.
1: बिल्कुल, और कदम भी तो थिरकने लगते हैं ना ऐसे, जब
0: बिल्कुल.
1: धुन सुनाई देती है, ऐसे बोल सुनाई देते हैं, तो लगता है बस एक बार नाच ही लो.
0: नाच ही लो, तब तो खैर मन का हाल ही क्या होता होगा, ये तो वही जानते हैं जिसके साथ ये होता होगा.
1: जी जी बिल्कुल. तो कथा सुधा में हम आज कहानी सुनाने वाले हैं अपने साथियों को, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो का भाग एक.
0: चलिए तो सुनते हैं कथा सुधा में ये कहानी.
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी. सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी. हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी. कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं. आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा.
3: कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो. आइए सुनते हैं इस कहानी का पहला भाग.
4: उन दिनों दूध की तकलीफ थी, कई डेयरी फार्मों की आजमाइश की, आहारों का इम्तिहान लिया, कोई नतीजा नहीं निकला. दो चार दिन तो दूध अच्छा मिलता, फिर मिलावट शुरू हो जाती. कभी शिकायत होती कि दूध फट गया, कभी उसमें से नागवार बू आने लगी, कभी मक्खन के रेजे निकलते. आखिर एक दिन एक दोस्त से मैंने कहा, भाई आओ साझे में एक गाय ले ले, तुम्हें भी दूध का आराम होगा, मुझे भी लागत आधी आधी, खर्च आधा आधा, दूध भी आधा आधा.

0: साहब राजी हो गए। मेरे घर में जगह न थी और गोबर वगैरह से मुझे नफरत है। उनके मकान में काफी जगह थी, इसलिए प्रस्ताव हुआ कि गाय उन्हीं के घर रहे। इसके बदले में उन्हें गोबर पर एक छत्र अधिकार रहे। वो उसे पूरी आजादी से पाथे, उपेले बनाए, घर लीपे, पड़ोसियों को दें या उसे किसी आयुर्वेदिक उपयोग में लाएं। इकरार करने वाले को इसमें किसी प्रकार की आपत्ति या प्रतिवाद ना होगा और इकरार करने वाला सही होश हवास में इकरार करता है कि वो गोबर पर कभी अपना अधिकार जमाने की कोशिश न करेगा और ना किसी को इस्तेमाल करने के लिए आमादा करेगा। दूध आने लगा, रोज रोज की झंझट से मुक्ति मिली। एक हफ्ते तक किसी तरह की शिकायत न पैदा हुई। गरम गरम दूध पीता था और खुश होकर गाता था, रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई, ताजा दूध पिलाया उसने, लुत्फ हयात चखाया उसने, दूध में भीगी रोटी मेरी उसके करम ने बख्शी सेरी, खुदा की रहमत है मूरत कैसी भोली भाली सूरत, मगर धीरे धीरे यहां पुरानी शिकायतें पैदा होने लगी। यहां तक नौबत पहुंची कि दूध सिर्फ नाम का दूध रह गया। कितना ही उबालो, न कहीं मलाई का पता, न मिठास। पहले तो शिकायत कर लिया करता था, इससे दिल का बुखार निकल जाता था। शिकायत से सुधार ना होता तो दूध बंद कर देता था। अब तो शिकायत का मौका न था, बंद कर देने का जिक्र ही क्या। भिखारी का गुस्सा अपनी जान पर, पियो या नाले में डाल दो। 8 आने रोज का नुस्खा किस्मत में लिखा हुआ। बच्चा दूध को मुंह ना लगाता, पीना तो दूर रहा। आधो आध शक्कर डालकर कुछ दिनों दूध पिलाया तो फोड़े निकलने शुरू हुए और मेरे घर में रोज बमचख मची रहती थी। बीवी नौकर से फरमाती,
1: ये क्या है इतना खराब दूध? ये दूध ले जाकर उन्हीं के सर पे पटका। हाँ,
0: मैं नौकर को मना करता। वो कहती,
1: अच्छे दोस्त हैं तुम्हारे, उसे शर्म भी नहीं आती। क्या इतना अहमक है कि इतना भी नहीं समझता कि ये लोग दूध देकर क्या कहेंगे? गाय को अपने घर मंगवा लो, बला से बदबू आएगी, मच्छर होंगे, दूध तो अच्छा मिलेगा ना। रुपए खर्चे हैं तो उसका मजा तो मिलेगा।
0: चड्ढा साहब मेरे पुराने मेहरबान हैं, खासी बेतकल्लुफी है उनसे। ये हरकत उनकी जानकारी में होती हो, ये बात किसी तरह गले के नीचे नहीं उतरती। या तो उनकी बीवी की शरारत है या नौकर की, लेकिन जिक्र कैसे करूं? और फिर उनकी बीवी से भी तो राह रस्म है, कई बार मेरे घर आ चुकी हैं। मेरी बीवी जी भी उनके यहां कई बार मेहमान बनकर जा चुकी हैं। क्या वो यकायक इतनी बेवकूफ हो जाएंगी, श्रीहन आंखों में धूल झोंकेंगी? और फिर चाहे किसी की शरारत हो, मेरे लिए ये गैर मुमकिन था कि उनसे दूध की खराबी की शिकायत करता। खैरियत तो ये हुई कि 3रे महीने चड्ढा का तबादला हो गया। मैं अकेले गाय न रख सकता था, साझा टूट गया। गाय आधे दामों बेच दी गई। मैंने उस दिन इत्मीनान की सांस ली। आखिर ये सलाह हुई कि एक बकरी रख ली जाए, वो बीच आंगन के कोने में पड़ी रह सकती है। उसे दूहने के लिए न ग्वाले की जरूरत, न उसका गोबर उठाने, नांद धोने, चारा भूसा डालने के लिए किसी की जरूरत। बकरी तो मेरा नौकर भी आसानी से दूह लेगा। थोड़ी सी चोकर डाल दी, चलिए किस्सा तमाम हुआ। फिर बकरी का दूध फायदेमंद भी ज्यादा है, बच्चों के लिए खास तौर पर, जल्दी हजम हो जाता है, न गर्मी करे न सर्दी, स्वास्थ्य वर्धक है। संयोग से मेरे यहां जो पंडित जी

0: जब भी हम लोग देखते हैं तो हर वक्त ये हीमोग्लोबिन जो होता है 10 से नीचे तक आ गया होता है। जब और कोई वजह नहीं दिखती है, जैसे कि ये उम्र में हीमोग्लोबिन होने के ज्यादा कारण नहीं होते हैं अलग, अनलेस किसी को ब्लीडिंग या और किसी चीज की तकलीफ होती हो या बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया हो। अगर हम लोग, मैं अगर ऐसे 10 बच्चे ले लूं तो 8 बच्चों में थैलेसीमिया यही कारण होगा हीमोग्लोबिन कम होने का, और मेनली ये 10 से नीचे ही पाए जाते हैं।
1: अच्छा भाई, देखिए बहुत ही गहन जानकारी आपने दी है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है ऐसा घटक है जो कि पता चलता है कि कमजोरी कितनी है और किस ढंग से इसका उपचार होगा। हम आगे बढ़ेंगे और वही हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अपनी पसंद का कोई गाना सुनवा दीजिए ताकि चर्चा फिर से जारी रहे।
0: देखिए धर्मेंद्र जी जो है वो हीमैन के रूप में जाने जाते हैं, पर उनका कोई रोमांटिक भी हिस्सा मुझे पसंद है, वो है ब्लैकमेल पिक्चर का और गाना है पल पल दिल के पास।

0: डॉक्टर साहब, वाकई आपने गीत बहुत अच्छा सुनवाया। और बीमारी की बात चल रही दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय है थैलेसीमिया, उपचार और इससे बचाव। डॉक्टर साहब, यहाँ प्रश्न ये होगा कि इस बीमारी के उपचार के जो मुख्य मुख्य घटक होते हैं वो क्या हैं?
1: देखिए, कैसे होता है कि एक बार ये बीमारी आ गई बच्चे में तो इसे ठीक करने के उपचार बहुत ही कम अवेलेबल है आज की तारीख में। इन बच्चों का मुख्य जो इलाज होता है वो तो रक्त संक्रमण यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि इनमें रक्त बनने की प्रणाली अब बंद पड़ चुकी है या गलत तरीके से काम कर रही है। इसकी वजह से क्या लगता है कि इनको हर महीने रक्त संक्रमण यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है, और जो लाइफ लॉन्ग यानी जिंदगी भर चलते रहता है। मुख्य रूप से अगर आप देखा जाए तो रक्त एक लोह का मुख्य स्रोत होता है, रक्त में जो हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं, या आयन का स्रोत होता है। तो क्या हो जाता है कि जब 20 से ऊपर ब्लड यूनिट ट्रांसफ्यूज हो जाते हैं

0: तो लोह की मात्रा शरीर में बढ़ने लगती है। तो इसीलिए रक्त संक्रमण के साथ लोह कम करने के इंजेक्शंस या टैबलेट्स इनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाते हैं। तो रक्त संक्रमण और आयन चिलेशन यानी लोह कम करने की दवाइयाँ ये एक सबसे मुख्य उपचार पद्धति है और यही कारगर करती है। कुछ कुछ दवाइयाँ भी अवेलेबल है इस चीज में पर इतनी कारगर नहीं है। बीमारी को अगर मुख्य तरीके से ठीक करा जाए तो स्टेम सेल ट्रीटमेंट यानी स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ये एक मुख्य ट्रीटमेंट है इसमें।
1: आपने बताया कि उसको एक अवधि के बाद बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, तो वो कितनी मात्रा में होता है और कितने महीने या दिनों के अंतराल के बाद उसको होना जरूरी होता है?
0: ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो हम लोग फ्रीक्वेंसी तय करते हैं वो होती है हीमोग्लोबिन की स्तर के ऊपर। यह हीमोग्लोबिन का स्तर बच्चों में हम लोग 9 से 10 के बीच में रखना पसंद करते हैं। वही वो जब बच्चा पूरा बड़ा हो जाता है 17-18 साल का तो यही स्तर हम लोग 7 से 8 के बीच में रखना शुरुआत कर देते हैं। ट्रांसफ्यूजन के फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर हम लोग बात करें यानी ब्लड चढ़ाना कितना जरूरी होता है, तो शुरुआती जो होता है हर 3 से 4 हफ्ते में एक बार लगता है, पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है उसका आकारमान भी बड़ा होता है, उसका वजन बड़ा होता है, तो पहले जो सिर्फ 1 यूनिट हर महीने में लगता था फिर हर महीने 2-2 यूनिट लगने लगते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, अब हम लोग बार बार जो ब्लड चढ़ाते हैं उसके वजह से ब्लड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज यानी प्रतिजैविक तैयार हो जाते हैं ब्लड में, और जो बाहर से ब्लड दिया जाता है वो शरीर में टिकता नहीं है। इसलिए जब हम लोग दूसरे या तीसरे दशक में आते हैं इन पेशेंट्स के साथ में तो ब्लड करीबन हर दूसरे हफ्ते में चढ़ाना पड़ना जरूरी हो जाता है। पर हीमोग्लोबिन का स्तर यही ब्लड चढ़ाने की मुख्य फ्रीक्वेंसी तय करता है।
1: थैलेसीमिया जो बीमारी है डॉक्टर साहब, ये पीड़ित जो इससे बच्चे होते हैं उनकी आयु क्या होती है और इसके उपचार में तकरीबन आप क्या सोचते हैं कितना खर्च आता है?
0: करीबन 5% बच्चे भी थैलेसीमिया के आइडियल तरीके से यानी जो वैज्ञानिक रूप से जो उपचार है वो नहीं ले पाते हैं। इसका तो मुख्य कारण है इसमें लगने वाला खर्च। औसतम जो खर्च होता है अगर बच्चे की उम्र 3 से 4 साल हो जाती है तो हर साल का खर्चा लगभग 1 से 1.25 लाख रुपया होता है। इसमें जो इंक्लूड होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसके लिए बार बार हॉस्पिटल जाना, उसके लिए स्पेशल ब्लड सेट्स लगते हैं हम लोग जिसको फिल्टर्स कहते हैं, उनका खर्चा होता है, और शरीर में लोह की मात्रा ज्यादा नहीं रहे इसके लिए जो इंजेक्शंस या जो दवाई देनी पड़ती है उनकी मात्रा। तो ये जो मैंने बताया है उम्र के 4 साल तक, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बच्चे का वजन बढ़ने लगता है तो इन दवाइयों की जो मात्रा रहती है वो भी बढ़ने लगते हैं। हम लोगों ने एक अंदाजन किया था कि भारत में इन बच्चों पर कितना खर्चा हो सकता है, तो करीबन अगर ये बच्चा 20 साल तक जीता है तो उसके ऊपर तब तक 15 से 20 लाख रुपए खर्चे हो जाते हैं, और 50 साल तक अगर ये बच्चा जीता है तो उस पर करीबन 1 करोड़ रुपया तक का खर्चा हो सकता है। भारत में आइडियल यानी वैज्ञानिक रूप से सभी बच्चे नहीं मैनेज करने के ऊपर इन बच्चों की औसतम आयु 15 से 25 साल के बीच में होती है।
1: ये ब्लड बैंक से मुहैया करवाने की कोई व्यवस्था होती है या परिवार के किसी सदस्य को बार बार ब्लड देना होता है?
0: हर साल भारत में ही सिर्फ, तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि हर साल में कितना ब्लड लग सकता है। और ब्लड देने की इससे भी ज्यादा अलग कारण होते हैं, जैसे ऑपरेशन के दौरान या किसी एक्सीडेंट के दौरान या किसी अलग वजह से ब्लड देना जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए क्या हो जाता है कि ब्लड की शॉर्टेज तो हमेशा होती है। जैसे जैसे इस बीमारी के बारे में जाना गया तो भारत में कई सारे शहरों में कुछ संस्थाएं बनाई गई जो इन सब बच्चों को सपोर्ट करती है। तो ऐसे अलग अलग सोसाइटीज है, बंबई में KEM अस्पताल में, JJ अस्पताल में, 80 के दशक में ये संस्थाएं बन चुकी है, थैलेसीमिया इंडिया सोसाइटी भी है, दिल्ली में एम्स में है, और काफी सारे शहर में जैसे कलकत्ता, चेन्नई, हर जगह पे थैलेसीमिया सोसाइटी है। तो इनका मेंबर बन के आप ब्लड के लिए उनसे मदद की अपेक्षा कर सकते हैं। बार बार तो ब्लड देना जरूरी नहीं होता है वैसे, पर कभी कभार किसी रिश्तेदार को ब्लड देने की जरूरत पड़ सकती है।
1: ये तो बहुत उम्दा बात लाई आपने। यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे इस संबंध में गीत के पहले कि कोई दवाइयाँ भी होंगी जो इस बीमारी में मदद कर सकती हैं इंजेक्शन वगैरह के अलावा?
0: 1-2 दवाइयाँ इस बीमारी के लिए देखी गई थी, उन्होंने मुख्य रूप से बीमारी में कोई ज्यादा फर्क नहीं आया। वीट ग्रास जिसे गवांकुर कहते हैं, इसका जूस पिला के कुछ कुछ लोगों ने देखा कि बच्चों में कुछ फायदा कर सकते हैं क्या, तो उन्होंने पाया कि 25% बच्चों में रक्त संक्रमण की जरूरत धीरे धीरे कम होने लगी, पर कुछ अन्य परीक्षण में यही वापस से ऑब्जर्वेशन नहीं देखा गया, इसलिए इसे तो रिकमेंड नहीं करते हैं। दूसरी चीज होती है एक हाइड्रोक्सी यूरिया करके दवा होती है, ये ओरली लेने वाली ये कैप्सूल होती है, इसे भी देखा गया है। इस बीमारी में ये दवा इस तरह से काम करती है कि जो अपना माँ के पेट में होते होने वाला जो हीमोग्लोबिन होता है जिसे हम लोग HbF कहते हैं, ये

0: उसकी मात्रा खून में बढ़ाने की वजह से ब्लड संक्रमण या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है, पर मोटा मोटी तौर पे कोई भी दवा बाहर से इस बीमारी को ठीक करने में लाइलाजी रही है।
1: और यहाँ पर हम चाहेंगे कि जो बातचीत बहुत भारी भारी सी वजनी सी लग रही है, खतरे की आगाह वाली बात कर रही है, तो माहौल को हल्का करते हैं आपकी पसंद का कोई गाना सुनकर।
0: तो रोजा फिल्म से एक जो गाना है भारत हमको जान से प्यारा है, ये मेरा एक और एक पसंदीदा सॉन्ग है जो भारत के विषय मेरा आदर हमेशा बढ़ाते रहता है। भारत

0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई में बहुत ही इंस्पायर करने वाला रहा। इस बीमारी को ठीक करने के लिए और भी जो अल्टरनेटिव चीजें हैं, वो विकल्प क्या हैं आपकी नज़र में?
1: इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक करने का एक ही विकल्प है आज के तारीख में, वो तो है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। स्टेम सेल देखा जाए तो ये अपने हर रक्त में होने वाली पेशी की जननी है, जैसे लाल रक्त पेशी, सफेद रक्त पेशी और प्लेटलेट। लेकिन स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए एक डोनर की होना जरूरी होता है। यह डोनर भाई बहन हो सकता है जिनमें शायद सिर्फ आधी ही बीमारी हो या जो पूर्णतः नॉर्मल हो, या माँ और पिताजी से स्टेम सेल्स लिए जा सकते हैं। इंटरनेशनल डोनर रजिस्ट्री से भी हो सकती है, तो वहाँ से भी स्टेम सेल लिया जा सकता है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये जो उपचार पद्धति है, ये बहुत ही खर्चिक उपचार पद्धति है, उसमें जान का खतरा भी होता है। जिसमें सिबलिंग डोनर ट्रांसप्लांट, यानी जब भाई बहन से हम लोग सेल्स लेते हैं स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए, तो भी वो पूरी तरह से मैच होना जरूरी होता है। जिससे अपने रक्त के ब्लड ग्रुप जैसे होते हैं AB या O, वैसे ही हमारे सफेद रक्त कोशिकाओं का ग्रुप होता है, जिसे हम लोग ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन या HLA कहते हैं। इसके अलग अलग 10 रीजन्स होते हैं। ये 10 से 10 रीजन जब पूरी तरह से मैच करते हैं, जिसे हम लोग फुल मैच कहते हैं, तभी हम लोग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के आगे बढ़ते हैं। यह जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट होता है, उसमें करीबन एक वक्त पे 8 से 10 लाख रुपए तक का खर्चा आ सकता है, और इसमें जान का खतरा 5 से 10% रहता है। दूसरा जो मैंने कहा, जिसमें माँ और पिताजी से स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए हम लोग उम्मीद रखते हैं, उसमें मैच होने का चांस एक हाथ ही होता है, 1 लाख में। तो उसमें भी जो खर्चा होता है सेम ही होता है, और हम लोगों ने हाफ मैच कभी कभी ट्रांसप्लांट कर दिया तो ये खर्चा 15 से 20 लाख तक हो जाता है, पर जान का खतरा 10 से 20% बना ही रहता है। और जो हम लोग अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट, जो मैंने आपको बात बताई थी, जहां पे आप बाहर के किसी डोनर रजिस्ट्री से सेल्स वगैरह अगर मंगवाते हैं, तो यही खर्चा 35 से 50 लाख

0: बीच में हो सकता है और इसमें जान का खतरा 20-30% होता है। तो ये सारे ही बहुत ही खर्चिक उपाय हैं। तो इसीलिए पर ये छोड़ के आज की तारीख में इस बीमारी के रुग्णों को पूरी तरह से ठीक करने के लिए कोई भी उपचार पद्धति अवेलेबल नहीं है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हैं तो आप नई पेशी बनाने वाली एक सिस्टम लेके आते हो, तो जब हम लोग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हैं और ये सक्सेसफुल हो जाता है तो ऐसे बच्चे रक्त संक्रमण से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं, उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती है।
1: अच्छा, यदि सक्सेसफुल हो गया तो?
0: यदि सक्सेसफुल हो गया तो।
1: लेकिन इसी पूरी प्रक्रिया में इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को और उसके परिवार को तमाम तकलीफों का सामना भी करना पड़ता होगा।
0: बहुत सारी तकलीफें होती है। समझ लीजिए कि आपके पास ऐसा बच्चा है जिसे आपको कम से कम महीने में एक बार तो अस्पताल लेके जाना है। अब जब अस्पताल लेके जाना है तो जो लेके जाने वाला है उसे भी आपके ने भी काम से छुट्टी लेनी होती है। घर पे बाकी के अगर बच्चे बाकी की चीजों के ऊपर है तो उस पर भी ध्यान नहीं दे सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हर महीने महीने तो शुरुआत में लगता है, बाद में तो हर 2-3 हफ्ते में लगता है, तो आपके हॉस्पिटल जाने की फ्रीक्वेंसी भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। दूसरी चीज होती है कि देखिए, ब्लड संक्रमण तो हो गया किस्सा। जो 1990 के दशक से पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गए, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के गाइडलाइन ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे या ब्लड बैंकिंग के गाइडलाइन ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे, तभी तो उन बच्चों को HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी जैसे भी इन्फेक्शंस का संक्रमण हो गया है, उसका इलाज और उसकी तकलीफें तो अलग से रही है। 90s के बाद ब्लड बैंकिंग के गाइडलाइंस काफी स्ट्रिक्ट होने की वजह से इन बीमारियों का संक्रमण तो काफी मात्रा में कम हुआ है। लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि जैसे HIV जैसी बीमारियां है, इनमें एक विंडो पीरियड होता है जिसमें ये बीमारी ब्लड में नहीं पाई जाती है, पर होती है वहां पे, तो इस तरह से उनका संक्रमण हो जाता है। तो बच्चों को पहले जो बीमारी उसमें और एक नई बीमारी लगी जिसका भी आपको इलाज करवाना पड़ता है। ब्लड अरेंज करना, ब्लड के लिए जो फिल्टर लगता है उसको अरेंज करना, प्लस जो दवाइयां लगती है जो लोहों को कम करने के लिए जरूरी होती है। जो शुरुआती में दवाई थी वो सिर्फ इंजेक्शन के रूप में ही अवेलेबल थी, तो बच्चों को एक इंजेक्शन का पंप कंटिन्यूसली लगा के रखना पड़ता था। अब बच्चा तो इंजेक्शन पूरे दिन भर लगाते रहे, ये तो पूरा आप तो नहीं कर सकते हैं, और ये इंजेक्शन महंगे भी होते थे काफी। अब टैबलेट्स का विकल्प आ चुका है, जो पहले वाले टैबलेट से काफी सारे साइड इफेक्ट्स के साथ है। नई टैबलेट्स आए, उनके साइड इफेक्ट्स कम है पर कीमत ज्यादा है।
1: डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट के पास इतनी योजनाएं होती हैं बच्चों के वैक्सीनेशन के मामले में और भी जो बच्चों के हितकारी जो योजनाएं होती हैं उनके लिए, तो क्या इस बीमारी के इलाज के लिए किसी NGO से, किसी अन्य संस्था से मदद प्राप्त हो सकती है या नहीं है?
0: जरूर मदद प्राप्त हो सकती है, लेकिन देखिए, एक जानना जरूरी है कि ये जो NGOs है और जितना पेशेंट्स का बर्डन है, अगर इनको हम लोग कंपेयर करते हैं तो ये मिलने वाली मदद बहुत कम होती है। फिर भी हर जगह पे अलग अलग सोसाइटीज बनी हुई है, जैसे कि एक है थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी जो ऑल इंडिया लेवल पे काम करती है अगेंस्ट थैलेसीमिया करके, एक है एक इंडियन थैलेसीमिक सोसाइटी है, और हर जगह पे रेड क्रॉस से और अलग अलग सोसाइटीज फॉर्म की जाती है। तो हर शहर में जो है थैलेसीमिया सोसाइटी फॉर्म करी गई है। सबसे जो पहले फॉर्म हुई थी वो बंबई के KEM अस्पताल में और JJ अस्पताल में फॉर्म हुई थी, तो वहां पे थैलेसीमिया के लिए स्पेशल फंडिंग होता है। दूसरी है जो एम्स दिल्ली में है, फिर कलकत्ता में है, और हर जगह में जैसे रायपुर है, चेन्नई है, हर जगह ने अपने अपने एक थैलेसीमिया की सोसाइटी बनाई हुई है।
1: माँ बाप अपने मरीज बच्चे के लिए लोकल किसी छोटे टाउन नगर कस्बे में ये मदद चाहे तो क्या करना चाहिए?
0: जब हम लोग एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर करके बात करते हैं तो हम लोग यही कहते हैं कि इस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है। यह जो सिस्टम्स है जो हम लोग बनाए, जो मुख्य शहरों में यानी फर्स्ट टायर या सेकंड टायर सिटीज में ही सिर्फ देखी जाती है, वो हर छोटे मोटे शहर में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उपलब्ध कराई दे सकती है, यानी गवर्नमेंट में उपलब्ध कराई दे सकती है। इसका मुख्य लक्ष्य होता है कि सेफ ब्लड मिलना, और दूसरा होता है कि जो ब्लड के लिए फिल्टर्स लगते हैं ये कम कीमत पे अवेलेबल करवा देना, और तीसरा होता है जो लोहा कम करने की दवाइयां होती है ये भी कम कीमत पे उपलब्ध करवा देना। अगर पेशेंट अपने निगड़ित थैलेसीमिया सोसाइटी के अंडर अगर रजिस्टर हो जाता है तो इन सब चीजों में उनको मदद मिल सकती है।
1: अच्छा, जहाँ तक आपने प्रिस्क्रिप्शन लिखने की जो बात को तवज्जो देते होंगे, मरीज आपके पास भी आते होंगे, तो जो आजकल एक प्रचलन सा चल पड़ा है जेनेरिक दवाइयाँ जो कि ब्रांडेड दवाइयों के मुताबिक ही लेकिन कम कीमत में होती है, वो भी उपलब्ध है?
0: दुर्दैव की ये बात है कि इस बीमारी में जो दवाइयाँ चल रही है इसमें ज्यादा जेनेरिक्स आए नहीं है। प्रॉब्लम एक अपनी तरीके से होता है, फार्मा कंपनीज भी जो होते हैं ना जेनेरिक्स बनाते हैं जहाँ पे उन्हें ज्यादा फायदा दिखता है। ये जो बीमारियां है इसमें बहुत सारे मरीज जो होते हैं इन दवाइयों को नहीं कर पाते हैं, और बीमारी का जैसे स्वरूप दिखा जो लाइफ लॉन्ग होता है, तो बहुत बार ये बच्चे अपने इस बीमारी की वजह से दूसरे या तीसरे शतक के आगे जाते ही नहीं है, दशक के आगे।
1: हो सकता है कि हमारे इस प्रोग्राम को सुनकर कोई कंपनी कोई पहल कर दे।
0: जरूर, मैं भी यही चाहूंगा।
1: फिलहाल हम चाहेंगे आप अपनी पसंद का एक कोई गाना यहाँ पर जरूर सुनवाएं।
0: कि वे तो मैं बताना चाहता हूँ कि थैलेसीमिया में जो है हर एक की लड़ाई है, हर एक ने अपनी अपनी लड़नी है आगे।

0: गाना बहुत इंस्पायर करने वाला और बहुत ही प्रेरक आपने सुनवाया। डॉक्टर साहब, थैलेसीमिया की बात चल रही है, इस बीमारी को रोकने के लिए क्या उपाय योजनाएं आपने मन में सोची हैं या आप बताएंगे हमारे सुनने वालों को, जिसमें शामिल होगी बातें बचाव, सावधानियां और रोकथाम?
1: देखिए, कैसे होता है कि उपचार से प्रतिबंध भला, ये तो एक सबसे महत्व का ज्ञान होता है और ये सबसे ज्यादा ध्यान में रखना जरूरी होता है
0: जी।
1: मेन ये चीज सीखना जरूरी है कि एजुकेशन के माध्यम के द्वारा लोगों को प्रभावित करना, अगर आप लोगों को बता सकते हैं इस बीमारी के बारे में और कैसे रोक सकते हैं, वही सबसे इम्पोर्टेंट माध्यम हो सकता है। तो मीडिया के जरिए या स्कूल में एजुकेशन के जरिए अगर हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं कि इसको कैसे रोका जाए, तो शालेय जीवन में एजुकेशन देना इस बीमारी में एक मुख्य साधन हो सकता है। एक परीक्षण भी किया गया था जहां पे शालेय एजुकेशन देखे, इन्होंने देखा कि इस बीमारी की रोकथाम कर सकते हैं क्या, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम पाया गया कि बच्चे स्कूल में तो सीख गए लेकिन बड़े होके उसके बारे में कुछ भी आकलन नहीं किया, उसके बारे में कुछ भी अभ्यास आगे नहीं किया गया।

0: तो दूसरी एक स्ट्रैटेजी इसमें होती है कि कॉलेज के बच्चों में जो आगे चल के अभी शादी करेंगे और बच्चे वगैरह होंगे तो उनको एजुकेशन देना। ये भी मतलब इसमें जो होता है उनमें सबका टेस्टिंग किया जाता है, ब्लड का परीक्षण किया जाता है, हम लोग जैसे कहते हैं HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसके ये बीमारी पता चल सकती है।
1: जी जी।
0: अगर ये बीमारी पता चल गई तो उसके बाद में उनको एजुकेशन देना कि अगर आप आगे चल के शादी करते हो या जब बच्चे होने वाले हैं तो इसे कैसे रोका जाए। तो ये जो एजुकेशन है जो हम लोग कर सकते हैं 18 से 22 साल की जो उम्र में है, प्री मैरिटल जिसको एजुकेशन कहते हैं, वो कर सकते हैं। पर अभी इसमें भी प्रॉब्लम ये आता है कि अगर आपने बहुत सारे लड़कियों का ऐसा परीक्षण कर लिया और उसमें आधी बीमारी पाई गई तो भारत एक ऐसी जगह है जहाँ पे लड़की को कुछ भी हो तो शादी होना मुश्किल हो जाता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम आते रहता है। तो ये एक दूसरी स्ट्रेटेजी है कि आप ये अवस्था में करवा लीजिए। तीसरा एक जो इसमें चरण आता है, जब शादी हो जाए, शादी के बाद जब बच्चे प्लान करते हैं तो जब गायनेकोलॉजिस्ट के पास तो आज सब लोग जाते ही है, उस वक्त पे माँ और पिताजी दोनों का ही टेस्टिंग करना। जब माँ और पिताजी का दोनों का ही टेस्टिंग कर लेते हैं, समझो माँ में आधी बीमारी है और पिता में नहीं है, या पिता में आधी बीमारी है और माँ में नहीं है, तो बच्चे में पूरी तरह से बीमारी आने का कोई भी चांस नहीं होता है। तो इसे आप छोड़ सकते हैं। पिता में भी आधी बीमारी है और माँ में भी आधी बीमारी है
1: जी।
0: अब इसमें जो है 25% चांस होता है कि बच्चे में भी वो बीमारी आएगी। तो उसमें हम लोग ये करते हैं कि जब गर्भावस्था में 8 से 12 हफ्ते के बीच में अंदर के बच्चे का परीक्षण करते हैं, अगर उसे थैलेसीमिया मेजर है यानी 25% जो चांस है, तो उसमें हम लोग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी अबॉर्शन की सलाह देते हैं। 75% चांस होता है कि वो बच्चे को आधी बीमारी रहे या पूरी तरह से नॉर्मल रहे, और वैसे रहा तो हम लोग प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने की सलाह देते हैं। तो इस तरह से आप थैलेसीमिया मेजर के बच्चे का जन्म होना यानी वो बॉर्न होना से रोक सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, विश्व स्तर पर कहें या दुनिया के मामले में अगर आप सोचें और भारत की तुलना में इसको मद्देनजर रखें, तो इस बीमारी को रोकने के लिए कोई खास कदम उठाए जाने चाहिए आपकी नजर में?
0: देखिए, कैसे है कि जागतिक स्तर और भारतीय स्तर ये दोनों ही एक अलग अलग विषय बन जाते हैं, क्योंकि क्या हो जाता है कि हर जगह की जो एक जीवन प्रणाली या जीवन शैली है वो पूरी तरह से अलग हो जाती है, जो कुटुंब व्यवस्था है वो भी अलग होती है। तो इसी की वजह से जो सारे कदम उठाए गए जागतिक स्तर पर वही भारतीय स्तर पर काम करेंगे कि नहीं, ये कहना आज के तारीख में तो बहुत मुश्किल है। जागतिक स्तर पर जो हम लोग देखेंगे तो अलग अलग सोसाइटी जो फॉर्म की है, जैसे थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी या रेड क्रॉस है, इनके माध्यम द्वारा जो उनमें जन जागृति की गई या उनमें जो परीक्षण किए गए, वैसे ही वर्ल्ड थैलेसीमिया डे होता है, हर साल 8 मई को मनाया जाता है। इसमें थैलेसीमिया विषय के बारे में जो भी जानकारी होती है, थैलेसीमिया पेशेंट्स के जो राइट्स होते हैं, उनके लिए क्या बेटर सुविधाएं उपलब्ध की जा सकती है, उसके लिए कोशिश की जाती है। तो हर साल ये 8 मई को मनाया जाता है, जिसमें थैलेसीमिया के बारे में एजुकेशन पूरे समाज को दिया जाता है, थैलेसीमिया पेशेंट्स को समझाया जाता है, जिससे उनकी बेटर केयर बनी रहे। तीसरी चीजें कुछ कुछ जगह पे जो उन्होंने किया, जैसे साइप्रस जैसी छोटी सी कंट्री थी जहां पे उन्होंने प्री मैरिटल टेस्टिंग कंपलसरी किया था, उसके बदले आप शादी नहीं कर सकते हो, तो वो टेस्टिंग कंपलसरी कही गई। तो उसके वजह से उन्होंने थैलेसीमिया मेजर होने में, बच्चे पैदा होने में तो ड्रॉप पाया लिया, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स को उनके निजी जीवन पे हमला जैसे लगा कि शादी के पहले ये टेस्ट करना कंपलसरी है गवर्नमेंट से। तो कुछ कुछ जो होते हैं बहुत ही रेडिकल विचार हो जाते हैं,
1: उसकी
0: तो
1: इंडिविजुअलिटी को,
0: इंडिविजुअलिटी जो होती है अब जरूरी होता है। तो फिर बाद में ये देखा गया कि जब गर्भावस्था से पहले जब लेडीज आती है गायनेकोलॉजिस्ट के पास फर्स्ट टाइम, ये एक बेटर वक्त है कि उस वक्त उसका और उसके हस्बैंड का परीक्षण किया जाए, जिसकी वजह से पता चले कि उनमें ये बीमारी है कि नहीं। दूसरी एक चीज है कि ये परीक्षण जिंदगी में एक ही बार लगता है, जैसे कि जो मेरा ब्लड ग्रुप है ए ग्रुप है तो वही रहेगा जिंदगी भर। वैसे अगर मैं थैलेसीमिया माइनर हूं और मेरा ब्लड टेस्ट किया जाता है तो मैं जिंदगी भर थैलेसीमिया माइनर ही रहूंगा। तो जीवन में एक बार ये परीक्षण होना सही समय पे ये ज्यादा जरूरी है।
1: बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। कामयाब इलाज होता है, एक सावधानी होती है, चाहे वो वैश्विक स्तर पर हो या हमारे भारतीय स्तर पर हो, समझना होगा इसके लिए और उसके मूल में जाना होगा। बहरहाल यहाँ जरूरी होता है कि गीत संगीत का माहौल बने और कुछ गाने की बात हो जाए। कौन सा गीत है?
0: देखिए, अभी तक तो मैं पुराने गीत थोड़े सुनाया जा रहा था, एक मेरा बहुत ही प्यारा गीत है, थोड़ा सा मायूसी भरा है पर फिर भी थोड़ा सा दिल के करीब है, रोग पिक्चर का मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी।

0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई आपने मानसिक स्तर को हिलाने वाला सुनवा दिया। भारत का जो प्रादेशिक और सांस्कृतिक रचनात्मक माहौल है उसको यदि ध्यान में रखें तो बहुत सारी कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग जलवायु होती है, वहाँ का कल्चर अलग होता है। तो आपकी राय क्या है?
1: पूरी दुनिया में उपाय योजना की गई, वही भारत में लागू होगी कि नहीं, ये ज्यादा समझना जरूरी है। हमें इस देश की रचना को, इसे कुटुंब व्यवस्था को समझना ज्यादा जरूरी है। कोई भी नियम बनाने से पहले या कोई उपाय योजना करने से पहले तो ही वो सफल हो सकती है। कंपल्शन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हर नागरिक को ये समझना जरूरी होता है कि एक थैलेसीमिया मेजर बच्चा पैदा होना एक परिवार के ऊपर और वैसे ही देश के ऊपर एक आर्थिक बड़ा बोझा होता है, और इससे आपके जो सांसारिक जीवन पे है उस पर भी धीरे धीरे असर पड़ने लगता है। तो जो उपाय योजना की जाती है ये आपके हित में ही होती है, ये समझना जरूरी है। एक संस्कृति को देखें, जो पैट्रियार्कल हम लोग कहते हैं, जो मुख्य सिस्टम है, तो इसमें अगर लड़की में कुछ दोष है, कुछ कुछ फैमिलीज में ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होता है, तो आगे चल के ये मुश्किलें बढ़ा सकता है। और अगर देखेंगे तो जिसको टेस्ट किया है उसके भी जीवन में ये मुश्किलें पैदा कर सकता है। तो इसके लिए उनका काउंसलिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा मेरे ख्याल से वो है पोस्ट मैरिटल, बच्चे होने से पहले उनका जो टेस्टिंग किया जाएगा,
0: वो
1: जिसमें आप जीवन साथी तो चुन चुके हैं, तो अभी बच्चा होने से पहले जब आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, किसी वक्त पे जाते हो, तभी ये थैलेसीमिया के लिए टेस्टिंग करना ज्यादा जरूरी है। उससे क्या होगा कि आपको एक अंदाजा आ जाएगा, समझो आधी बीमारी है, एक में नहीं है, तो कुछ आगे जाके चिंता करने का विषय ही नहीं है। दोनों को नहीं है तो भी चिंता करने का विषय नहीं है। जब दोनों में आधी आधी थैलेसीमिया की बीमारी या और कोई हीमोग्लोबिन से निगड़ित बीमारी है, तो उसका फिर गर्भधारणा के वक्त परीक्षण किया जा सकता है 8 से 12 हफ्ते में। और फिर वो परीक्षण अगर सही है और बच्चे को ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं है तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू रख सकते हैं। और अगर बड़ी बीमारी यानी थैलेसीमिया मेजर बीमारी है, उसको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगने वाला है, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं।
0: हाँ।
1: तो ऐसे बच्चे का पैदा हम लोग रोक सकते हैं। और तीसरी चीज महत्व की ये है कि जब ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके जो माँ बाप है वो एक इफेक्टिव जरिया होते हैं उस फैमिली में इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। ये हमें जानना जरूरी है, क्योंकि देखिए जब आप खुद उससे पीड़ित होते हो तब आप शायद उसकी ग्रेविटी, हम लोग बोलते हैं सिचुएशन ग्रेविटी, ज्यादा तरीके से समझ सकते हो और ज्यादा अपने लोगों में उसे कन्विंस कर पाते हो। तो वो एक जरिया है। और तीसरा और इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिटी बेस्ड जो हम लोग कहते हैं सर्चेस से होते हैं, तो वहां पे अगर आप कम्युनिटी बेस्डिंग टेस्टिंग करवाते हो तो आप जानते हो कि ये सारी बीमारियां वहां पे है, तो जिंदगी में एक ही बार ये टेस्टिंग करवानी है तो आप जान सकते हो और आगे के लिए आप प्लान कर सकते हो।
0: और डॉक्टर साहब एक बात यहां पर हम

0: जानना चाहेंगे कि कई मरीज जो आपके पास आते हैं, लाए जाते हैं परिवार के साथ, मेल चाइल्ड होते हैं या फीमेल चाइल्ड होते हैं?
1: देखिए कैसे है कि भगवान की दया से इसमें मेल और फीमेल ये बीमारी ज़्यादा फर्क नहीं करती है। यो जो बीमारी होती है अपने अगर आप इंसान की क्रोमोसोम या जेनेटिक रचना जाने तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें जो 44 क्रोमोसोम होते हैं हम लोग इसको ऑटोसोम कहते हैं, दो क्रोमोसोम होते हैं एक्स और वाई जो सेक्स को डिसाइड करते हैं। ये जो बीमारी होती है ये सेक्स क्रोमोसोम से निगड़ित नहीं होती है, जो बचे हुए 44 जो ऑटोसोम्स हम लोग कहते हैं उससे निगड़ित होती है। तो इसी की वजह से मेल या फीमेल ये बीमारी कोई अंतर नहीं करती, दोनों को इफेक्टिवली उतनी ही अफेक्ट करती है।
0: बहुत ही प्रभावशाली बात आपने बताई है। और हम एक और गाना यहाँ पर आपसे सुनना चाहेंगे।
1: अगला गाना तो मेरे दिल के थोड़ा करीब है क्योंकि मेरी जो बेटी है इस गाने को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है और हमेशा नाच के भी दिखाती है, और ये गाना है बाजीराव मस्तानी पिक्चर का, दीवानी मस्तानी।

0: तो बाजीराव मस्तानी फिल्म के इस गाने के बाद वक्त की पाबंदी को मद्देनजर रखते हुए, घड़ी की ओर नजर डालते हुए हम चाहेंगे कि चलते चलते इस बीमारी के बारे में कोई फाइनली एक संदेश आप देना चाहें तो क्या कहेंगे?
1: जब मैंने हिमाटोलॉजी ये ब्रांच चुनी अपने लिए, उसके बाद जब मैंने काम किया तो इन छोटे छोटे बच्चों को देखने के बाद थैलेसीमिया मेरे दिल के करीब एक विषय बन गया है। तो मैं आज की युवा पीढ़ी को और सारी जनता को यही एक संदेश देना चाहूंगा, देखिए थैलेसीमिया वाले बच्चे ना ही कोई एक शाप है, ये हमारी जो अज्ञानिकता है उसके वजह का एक कारण है, जो है उसी की वजह से वो बच्चे का जन्म हुआ है। तो इस बच्चे को निग्लेक्ट मत कीजिएगा, इस बच्चे को जो भी उपचार जरूरी है उस बच्चे का जरूर ये उपचार करवाइएगा, उसके तरफ ध्यान दीजिएगा, और अपने आप को और अपने जो परिवार है और जो अपने दोस्त है उनको आप एजुकेट कीजिएगा कि ये बीमारी को कैसे रोक सकते हैं। तो इस बीमारी को रोकथाम करना यही इसका मुख्य इलाज है। हम लोग इस बीमारी को जड़ से तो मिटा नहीं सकते हैं लेकिन इसे जरूर रोक सकते हैं। तो आप जरूर अपनी

0: टेस्टिंग करवाइएगा, जानिएगा कि आपके रक्त में ये गुण है या नहीं है, और फिर आगे बढ़िएगा। क्योंकि अगर हमने आज ये रोकथाम नहीं की तो ये बच्चे दिन ब दिन बढ़ते ही जाने वाले हैं और आपके फैमिली के ऊपर और अपने देश के ऊपर एक नया आर्थिक दबाव डालने वाले हैं।
1: बहुत ही अच्छी गहरी सूक्ष्म जानकारी आसान शब्दों में आपके लफ्जों से निकली है, और हम चाहेंगे कि इस तरह की जागरूकता बनी रहे और सुनने वाले इसका पालन करें। जो जो इससे ग्रस्त हैं वे जरूर जागरूक होकर अन्य लोगों को भी जागरूक बनाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आज के इस थैलेसीमिया विषय पर आपने उपचार और बचाव और सावधानियां तमाम सारी जानकारी दी, तो विविध भारती की ओर से, सुनने वालों की ओर से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं।
0: शुक्रिया राजेंद्र जी।
1: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई के सुप्रसिद्ध हेमेटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर आशय प्रमोद करपे से। आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया वंदना ठाकुर ने, कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनीता वेस्ली पटेल। अब दीजिए आज के इस कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
2: आज के पिटारे में था सेहतनामा, जिसकी बारी पिटारे में हफ्ते में सिर्फ एक दिन आती है। वैसे पिटारा तो सातों दिन खुलता है। हर रोज सुनिए पिटारा,

तुम्हारी आंखों में सपनों के बीज रोपे थे, उनमें खिलने थे फूल, पर हर बीज कहां अंकुरित हो पाता है। वक्त की तेज धूप ने सोख ली नमी सपनों की, अब हवाएं भी चुभती हैं और आंखों में टूटे ख्वाबों की गिरचियां जलन पैदा करती हैं। वक्त का पहिया किन किन दिशाओं में घूम जाता है समझ नहीं आता।

उदासियों का कोई मुल्क नहीं होता, वो हवाओं में उड़ती हैं किसी फाहे की तरह, जैसे किसी शाख पर थोड़ी देर बैठ जाए कोई पंछी। ऐसे किसी किसी जिंदगी में उदासी का पंछी आकर बैठ जाता है और फिर उड़ने का नाम नहीं लेता। उदासियां पसर जाती हैं तो फिर हटती नहीं है, सुरमई उदास शामों में गूंजती हैं खामोश।

दुनिया के किनारे पर बैठ जाओ और देखो दुनिया की हलचल। ये चहकती दुनिया, ये बदहवास दुनिया, ये थकी हुई दुनिया, दुनिया के किनारे पर बैठ जाओ और देखो कितनी तरह की है ये दुनिया। इस दुनिया में हैं धक्के मारते लोग, कंधे छीलते लोग, धोखा करते लोग। ये दुनिया उदासियों की महफिल है।

समंदर, एक अनंत विस्तार है समंदर, जाने कहां से शुरू होता है और कहां खत्म होता है। समंदर का किनारा लगता होगा रूमानी कुछ लोगों को, समंदर उदास करता है हमें, उदासी की लहरें आती हैं एक के बाद एक और बस सराबोर कर जाती हैं। सुरमई शाम, उदास समंदर, थका हुआ सूरज, बोझिल हवा और गूंजता हुआ ये नगमा।

आंखें बोलती हैं सब कुछ। कहते हैं कि अल्फाज अपनी बात कहने का सबसे कमजोर तरीका है। सबसे अच्छी बातें वो हैं जो खामोशी में कही जाती हैं। बातें करती हैं हमसे तुम्हारी आंखें। तुम्हारी आंखों के दियों से रोशन है हमारा संसार, और इन आंखों के गीत हमारी दुनिया में मिठास खोलते हैं।

सुबह आती है, दोपहर को अपना ताप सौंपती है और दोपहर अपनी थकान शाम की मुट्ठी में रख देती है। रातें बस हमारी अपनी होती हैं, रातों को सजती है यादों की महफिल, यादें जिनमें दर्द भी है तकलीफें भी, यादें जिनमें आहें हैं, यादें जिनमें आंसुओं की नमी है।

फिल्म वली आजम। आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार।

अभी राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जा रहे थे। एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। प्रस्तुत है निमाड़ी लोकगीत।

नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की पवित्र जीवनदायिनी नदी है, जिसके तट पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर ममलेश्वर मंदिर स्थापित है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य दर्शनीय है। यहाँ के मंदिर और यहाँ पर स्थापित अन्य शिल्प देखने योग्य होते हैं। यहीं किनारे पर शंकराचार्य के गुरु गोविंदाचार्य की समाधि भी है। यह बहुत प्राचीन क्षेत्र है, जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तपस्याएं की है। इस पवित्र स्थान के सम्मान में यह भजन, यह तीर्थ गीत सुनिए।

ये एक तीर्थ गीत है। न केवल भक्त ईश्वर के दर्शन की कामना रखता है, व्याकुलता और उत्सुकता रखता है, वरन ईश्वर भी, देवी भी अपने भक्तों से मिलना चाहती हैं। तो इस गीत में गंगा माता स्वयं प्रतीक्षा कर रही हैं कि हिंदुस्तान से सब जगह से भक्त आए हैं, लेकिन भोली निमाड़ के लोग क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो वो पूछ रही हैं।

यह एक तीर्थ गीत है गंगा जी का, और गंगा स्नान गंगा तीर्थ करने से परिवार के सभी सदस्य मिलने के लिए आते हैं, उस समय का यह गीत है।

अभी निमारी लोकगीत का प्रसारण किया जा रहा था। एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सभी सकुशल होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के कार्यक्रम यहोवाणी में। आपकी रेडियो दोस्त पलक का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप तो जानते ही हैं कि आज है सोमवार और आज का हमारा क्रम होता है कुछ बातें कुछ गीत, जिसमें हम आपको आपसे करते हैं प्यारी प्यारी बातें और सुनाते हैं आपको प्यारे प्यारे से गीत। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आज के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2026 शुरू की, और हाल ही में किस बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2026 को जीता। साथियों, इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर हम आपको बताएंगे हमेशा की तरह कार्यक्रम के अंत में। तब तक बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कार्यक्रम युववाणी।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: साथियों, 11 मई भारत के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, जिसे मुख्य रूप से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन 1998 में पोखरण में हुए सफल परमाणु परीक्षणों ऑपरेशन शक्ति और भारत की तकनीकी उपलब्धियों का प्रतीक है। इस दिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण योगदान वाले लोगों को सम्मानित किया जाता है।

साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा आज का क्रम कुछ बातें और कुछ गीतों का है, तो आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करना चाहूंगी जो कि हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है। साथियों, हम सभी अपने जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत मेहनत करते हैं। हम में से बहुत से लोग हैं जो कामयाबी हासिल करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। आज मैं उन्हीं लोगों के बारे में आपसे बात करना चाहूंगी। आज मैं बात करूंगी फेल होने के बाद वापस कैसे खड़े होते हैं। साथियों, असफलता एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही मन में निराशा, डर और उदासी का एहसास होने लगता है। जब हम किसी लक्ष्य के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उम्मीदों के सपने सजाते हैं और फिर अचानक परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आता, तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बिखर गया हो। बच्चे परीक्षा में असफल हो जाते हैं, हमारी युवा जनरेशन नौकरी पाने की कोशिश में कई बार निराश हो जाती है, व्यापारी घाटे का सामना करते हैं, खिलाड़ी हारते हैं और कई बार तो रिश्तों में भी हमें असफलता का सामना करना पड़ता है। उस समय मन में यही सवाल उठता है, अब क्या होगा? लेकिन सच ये है कि असफलता जीवन का अंत नहीं होता, ये सिर्फ एक पड़ाव है जो हमें रुककर सोचने, समझने और खुद को बेहतर बनाने का मौका देता है। अगर हम इतिहास भी उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि दुनिया में लगभग हर महान व्यक्ति अपनी यात्रा में कभी ना कभी असफल जरूर हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने उस हार को अपनी मंजिल नहीं बनने दिया, उन्होंने उसे सीख के रूप में स्वीकार किया और आगे बढ़ते रहे। तो ये मत सोचिए कि सब खत्म हो गया, बल्कि ये सोचिए कि शायद जिंदगी आपको कुछ नया सिखाना चाहती है।

साथियों, फेल होने के बाद वापस खड़ा होने का सबसे पहला कदम है असफलता को स्वीकार करना। अक्सर हम हार मिलने के बाद खुद को दोष देने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हम में काबिलियत ही नहीं है, हम दूसरों जितने अच्छे नहीं हैं, या फिर हमारे लिए कोई मौका बचा ही नहीं। यही सोच हमें अंदर से कमजोर कर देती है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि असफल होना और असफल व्यक्ति होना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। परीक्षा में फेल होना, इंटरव्यू में रिजेक्ट होना या किसी योजना में सफल ना होना, ये साबित नहीं करता कि आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते।

इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि उस समय या उस परिस्थिति में कुछ कमी रह गई और हर कमी को सुधारा जा सकता है। जब आप अपनी हार को खुले मन से स्वीकार करते हैं तभी आप उससे सीख पाते हैं। खुद से सवाल पूछिए, कहाँ गलती हुई, क्या अधूरी तैयारी थी, क्या रणनीति सही नहीं थी, क्या मैंने धैर्य खो दिया। इन सवालों के जवाब आपको आगे का रास्ता दिखाएंगे। याद रखिए, हार को छुपाने या उससे भागने से कुछ नहीं बदलेगा। असली ताकत अपनी हार को पहचानने और उस कमजोरी को अपनी ताकत में बदलने से है।

इसके बाद आता है दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, खुद को दोबारा तैयार करना। असफलता के बाद अक्सर इंसान के अंदर डर बैठ जाता है। उसे लगता है कि उसने फिर कोशिश की और फिर से हार गया तो क्या होगा। यही डर उसे आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं। जब बच्चा चलना सीखता है तो कई बार गिरता है। अगर वो पहली बार में ही गिरकर बैठ जाए तो शायद कभी चलना नहीं सीख पाएगा। ठीक उसी प्रकार जिंदगी में गिरना सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। इसलिए असफलता के बाद खुद को समय दीजिए, अपने मन को शांत कीजिए और फिर नई ऊर्जा के साथ शुरुआत कीजिए। छोटी छोटी सफलताओं पर ध्यान दीजिए। अगर पढ़ाई में असफल हुए हैं तो रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर

सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है, इसलिए असफलता के बाद खुद को समय दीजिए, अपने मन को शांत कीजिए और फिर नई ऊर्जा के साथ शुरुआत कीजिए। छोटी छोटी सफलताओं पर ध्यान दीजिए। अगर पढ़ाई में असफल हुए हैं तो रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर पढ़ने की आदत डालिए। अगर नौकरी नहीं मिल रही तो अपने स्किल्स को मजबूत कीजिए, और अगर व्यापार में नुकसान हुआ है तो नई रणनीतियां बनाइए। याद रखना, बड़े बदलाव हमेशा छोटे छोटे कदमों से ही होते हैं। साथ ही उन लोगों से प्रेरणा लीजिए जो संघर्ष के बाद सफल हुए हैं। उनकी कहानी आपको भरोसा देगी कि अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं।

आखिर में मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगी कि असफलता से मत डरिए, उसे अपनाइए। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख अक्सर हमें हार से मिलती है। जीत हमें खुश करती है, लेकिन हार हमें मजबूत बनाती है। जब भी आप गिरें, खुद को ये याद दिलाइए कि ये अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। अपनी तुलना दूसरों से मत कीजिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, हर किसी की मंजिल अलग होती है, हर किसी का संघर्ष भी अलग होता है। हो सकता है आपकी सफलता थोड़ी देर से आ रही हो, लेकिन आप लगातार प्रयास करते रहिए, अपने सपनों को जिंदा रखिए और हर हार के बाद पहले से ज्यादा मजबूती से खड़े रहिए, क्योंकि जिंदगी में वही लोग सबसे ऊंचाई तक पहुंचते हैं जिन्होंने गिरकर उठना सीख लिया होता है। याद रखिए, असफलता आपको रोकने नहीं आती, वो आपको आगे बड़ी सफलता के लिए तैयार करने आती है। इसलिए मुस्कुराइए, खुद को संभालिए और फिर से चल पड़िए।

साथियों, ये तो था हमारा आज का क्रम, कुछ बातें कुछ गीत। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम की शुरुआत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बताने का। तो चलिए फिर आपको मैं कार्यक्रम की शुरुआत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बता दूं। पहला प्रश्न था, किस भारतीय राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2026 शुरू की? जिसका उत्तर है, गुजरात राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2026 शुरू की। हाल ही में किस बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2026 जीता? तो हाल ही में चीन ने थॉमस कप 2026 जीता। इसी के साथ दे इजाजत कार्यक्रम को समाप्त करने की। आपकी रेडियो दोस्त पलक को नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।
1: मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। तो सुनते रहिए निमाड़ के सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।

0: क्या हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: होनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरी श्याम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अतहर सईद। सरकार ने कहा है कि देश के पास 60 दिन का कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस तथा 45 दिन का एलपीजी भंडार है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन 2026 के लिए देश में उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से की गई 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल देशवासियों से 1 वर्ष तक विदेश यात्रा से बचने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की थी। श्री मोदी ने लोगों से खाना पकाने के तेल की खपत कम करने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा सोने की अनावश्यक खरीदारी से बचने का भी आग्रह किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
2: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है।

0: भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बड़ौदरा में सरदार धाम परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने परिसर में भोजन और स्वागत क्षेत्र तथा ई पुस्तकालय का अवलोकन किया। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। निर्धारित समय में काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि बाघ शेर चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1313 अंकों की भारी गिरावट के साथ 76015 पर बंद हुआ। निफ्टी 360 अंक कम होकर 23816 पर आ गया। एएफसी अंडर 17 एशिया कप फुटबॉल का क्वार्टर फाइनल भारत और मेजबान चीन के बीच सोझो में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक चीन ने 3-0 की बढ़त बना ली थी। इधर आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिल से दिल तक पहुंचती आवाज आकाशवाणी खंडवा की।

0: है तो
1: हम हो चुके आपके। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
2: क्या बात है जीजी, नई साड़ी, नए गहने, बड़ी सजी धजी लग रही हो।
3: अरे जीजी, असल में बात ये है, हमारे इनने ना जब से आकाशवाणी खंडवा पे हमारी दुकान का विज्ञापन दिया है ना, तब से हमारी दुकान बहुत चल रही है। मतलब
2: है? ऐसा क्या? अब मैं भी अपने इनको बोलूंगी कि हमारे बिजनेस का विज्ञापन भी आकाशवाणी खंडवा पर दे। पर देंगे कैसे?
3: अरे इसमें क्या है जीजी, बस आकाशवाणी खंडवा जाओ और विज्ञापन दो।
4: सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: दोस्तों, हर रविवार युववाणी में प्रसारित किया जाता है आपके फरमाइशी गीतों का क्रम
2: हेलो फ्रेंड्स,
1: जिसमें हम करते हैं आपसे आपके दिल की बातें और सुनवाते हैं आप ही के पसंद के फिल्मी गीत।
3: किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूँ ना।
1: तो इंतजार किस बात का है, जल्दी से कॉल कीजिए और सुनिए अपने पसंदीदा फिल्मी गीत। साथियों, हेलो फ्रेंड्स की रिकॉर्डिंग की जाती है हर शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे के बीच। आकाशवाणी खंडवा का टेलीफोन नंबर है 2226063 और खंडवा का एसटीडी कोड है 0733। तो फोन करना ना भूलें। कार्यक्रम है

0: 101.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। तो सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: बड़े अच्छे लगते हैं
2: क्या
1: ये धरती, ये नदिया, ये रैना।
0: आकाशवाणी खंडवा सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
5: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
3: बन गया बजट?
1: हाँ, 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले।
1: ना, पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और
1: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया,
1: जाओ भाई।
4: आरबीआई कहता है
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर देश के सभ्यतागत साहस और अटूट भक्ति का प्रतीक। भोपाल में इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव, कल जुटेंगे फ्रांस के प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधि। मध्य प्रदेश पर निवेश में होगा मंथन। देश में पहली बार 10 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद कर मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया। किसानों को अब तक 11,622 करोड़ रुपए का भुगतान। और प्रदेश में चीतों की संख्या बढ़कर हुई 57। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुनू नेशनल पार्क में विमुक्त किए 2 मादा चीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर गौरवशाली और शाश्वत है और देश के सभ्यतागत साहस और अटूट भक्ति का प्रतीक है। श्री मोदी ने आज गुजरात में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लिया। श्री मोदी ने कहा कि पवित्र सोमनाथ मंदिर में लहराता ध्वज भारत की आस्था की विजय का प्रतीक है और लाखों भारतीयों की सामूहिक चेतना की दिव्य घोषणा भी है।
1: हमारी आस्था हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है, क्योंकि हम मानते हैं सर्वम खलित्वम ब्रह्म, अर्थात सृष्टि का हर एक घटक, इस संपूर्ण प्रकृति भी ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए हमारी आस्था नदियों में भी है, वृक्षों में भी है। हम जंगलों को भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। हम पर्वतों में भी पवित्रता का भाव रखते हैं। और आज जब दुनिया प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौट रही है, हमें हमारी शक्ति को भी पहचानना होगा।

0: हम हमारे तीर्थों और मंदिरों के विकास के साथ साथ उनकी गरिमा के लिए जागरूक होना होगा। हम ऐसा जीवन अपनाएं जिससे प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा हो, साथ ही हम हमारे पुण्य स्थलों को पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में विकसित करें।
1: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन की रोजगार गारंटी का अधिनियम ग्रामीण भारत को सशक्त बनाएगा। देश भर में नए ढांचे के कार्यान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। भोपाल में कल इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें निवेश संभावनाओं को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विदेशी निवेशकों से संवाद करेंगे। इंडो फ्रेंच चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से कुशाभाऊ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में फ्रांस के राजदूत, फ्रांसीसी उद्योग जगत के प्रतिनिधि, वैश्विक कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और प्रदेश के उद्योग प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। कॉन्क्लेव से मध्य प्रदेश और फ्रांस के बीच दीर्घकालिक औद्योगिक तकनीकी और संस्थागत साझेदारी होगी। इससे राज्य सरकार फ्रांसीसी कंपनियों को मध्य प्रदेश के औद्योगिक वातावरण, निवेश संभावनाओं, नीति समर्थन और तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक इकोसिस्टम से अवगत कराएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित के.एफ. रुस्तम जी पुरस्कार वितरण समारोह में सहभागिता कर वर्ष 2019-20 तथा 2021-22 के अंतर्गत परम विशिष्ट, अति विशिष्ट एवं विशिष्ट श्रेणी के पुरस्कार प्रदान करते हुए उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मी समाज की सुरक्षा के लिए सदैव समर्पित रहते हैं, इसलिए उनके व्यक्तिगत सुख सुविधाओं एवं कल्याण का ध्यान रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। डॉक्टर यादव ने कहा कि पुलिस विभाग द्वारा प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार की राशि बढ़ाने को मंजूरी दी गई है।
2: मैंने पुलिस के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों को लेकर के मंजूरी दी है कि हमारे डीजी पहले 25,000 तक का पुरस्कार दे रहे थे, अब उनको अधिकार 50,000 तक हम देने जा रहे हैं। इसी प्रकार से निचले स्तर तक, एसपी के स्तर तक भी हमारे जवानों को पुरस्कार की राशि डबल करने का निर्णय हमने किया है। साथ ही साथ इसके अलावा भी पुलिस जो जो चाहेगी हम करने को तैयार है।
1: भारत सरकार स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए खिलौनों के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना लागू कर रही है, जिसमें गुणवत्ता नियंत्रण BIS प्रमाणन, खिलौना क्लस्टर स्थापित करना और आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना शामिल है, जिसके तहत 1 जनवरी 2021 से भारत में निर्मित या आयातित सभी खिलौनों के लिए ISO 8124 मानकों पर आधारित अनिवार्य BIS प्रमाणन अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे पूरे उद्योग में उच्च सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित किया जा सके। और अब समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook, साथ ही X प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश ने देश में पहली बार 10 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद का रिकॉर्ड बनाया है। किसानों को अब तक 11,622 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में इसकी जानकारी दी गई। बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत 1,763 करोड़ रुपए की लागत से 2,117 किलोमीटर लंबी 973 सड़कों का निर्माण कार्य को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने कुल 29,540 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों को स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती ने चीतों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराकर उन्हें पुनर्स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य कर अपने परिवार का हिस्सा बनाया है। श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में 2 मादा चीतों को खुले जंगल में विमुक्त करते हुए उन्होंने कहा कि आज देश में चीता पुनर्स्थापना का ये प्रोजेक्ट सफलता के साथ में आयामों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में वर्तमान में चीतों की संख्या 57 है, जिनमें से 54 कूनो नेशनल पार्क में और 3 गांधी सागर अभ्यारण्य में है। सहकारिता

केन्द्रीय और खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कम तेल खाने, ईंधन की बचत करने और एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने की अपील का समर्थन करते हुए कहा कि यह देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। खरगोन में मीडिया से चर्चा करते हुए श्री सारंग ने कहा कि वर्तमान समय में युद्ध जैसे हालातों के चलते पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल और ईंधन पर असर दिखाई दे रहा है। ऐसे में यदि तेल की खपत कम होगी तो देश की विदेशी मुद्रा की बचत होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशों में डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे फिजूल खर्ची वाले आयोजनों से बचने की भी अपील की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत आगरमालवा जिले के स्वायत्तकला में जल संरक्षण

असर दिखाई दे रहा है। ऐसे में यदि तेल की खपत कम होगी तो देश की विदेशी मुद्रा की बचत होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशों में डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे फिजूल खर्ची वाले आयोजनों से बचने की भी अपील की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत आगरमालवा जिले के स्वायत्त कला में जल संरक्षण का संदेश देने हेतु कल एक विशाल भव्य जल कलश यात्रा निकाली गई। नीमच जिले के जावत में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जन अभियान परिषद जावत द्वारा संवारिया महाराज स्थित बालाजी मंदिर रामघाट पर जल स्रोत सेवा समागम कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिवपुरी जिले में भी 23 मई तक गेहूं खरीदी होगी। कलेक्टर ने किसानों की स्वीकृति लंबित न करने के निर्देश दिए हैं। अशोकनगर में आयुक्त दिव्यांगजन द्वारा आज जिला जेल में दिव्यांगजन कैंप का आयोजन किया गया और सीहोर कलेक्टर बाला गुरु के ने आज जनगणना कार्य की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में जनगणना कार्यों में गति लाने के सख्त निर्देश भी दिए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: आगे सैलरी?
2: हाँ।
1: नए झुमके?
2: ना, पहले बचत,
1: पहले झुमके।
2: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
1: लेकिन झुमकों का क्या?
2: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
5: बेटा,
6: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
5: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
7: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री।
5: चलो,
0: कहाँ
5: एडमिशन कराने?
7: खाता हुआ एक्टिव,
4: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: बड़ी बहू, ये तुम्हारी ना।
2: इतनी भी क्या जल्दी थी?
8: अरे, और छोटी, ये तुम्हारे ना। और ये
2: मेरी गुड़िया की ना।
6: पर दादी,
8: हाँ,
6: आपके नाम?
9: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
8: शुभ शुभ बोलो।
2: क्या?
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: FM बैंड 101.2 MHz पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। लीजिए, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाला सभी भाई बहन का आपकी बहन तरुणा शुक्ला की राम राम। भाई बहनों, हमारा देश में हर साल 11 मई का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाए। यो दिन वैज्ञानिक न की उपलब्धि, तकनीकी प्रगति न आत्मनिर्भर भारत को प्रतीक छे। 11 मई सन 1998 का राजस्थान का पोखरण में हमारा देश का वैज्ञानिक ने सफल परमाणु परीक्षण करो थो। इन्हीं उपलब्धि की याद में हर साल 11 मई का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाए। आज को यो दिवस सभी उन्हें वैज्ञानिक, इंजीनियर न तकनीकी विशेषज्ञ नख सम्मान देने को अवसर छे, जिन्ह देश का नई ऊंचाई तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण योगदान दियो। आज हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, कृषि, संचार, चिकित्सा या उद्योग को हो, प्रौद्योगिकी ने हर काम को आसान बना दियो। प्रौद्योगिकी का कारण बहुत तेजी से कम समय में काम पूरा हो जाए। हमारा किसान भाई भी

खेती में आधुनिक तकनीकने की सहायता से खेती में अधिक उत्पादन ले रहा है। नई मशीन न डिजिटल तकनीक से उपचार करी रहा है। विद्यार्थी घर बैठे न ऑनलाइन शिक्षा ले रहा है। बैंकिंग सुविधा द्वारा लोन प्राप्त करी रहा है। योजना न को लाभ ले रहा है। हमारा देश में डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी योजना न को लाभ युवा न का साथ साथ आम जनता ने भी ले रहे। भाई बहनों, तकनीक न को सावधानी रखी ना सही उपयोग करनू भी बहुत जरूरी है। तकनीक न को उपयोग हमको मानवता, पर्यावरण न समाज का विकास कालीन करनू चाहिए। मोबाइल इंटरनेट को उपयोग ज्ञान न सकारात्मक काम में करना चाहिए। इनका दुरुपयोग से पर्यावरण न समाज का नुकसान हो सके। हम सबका विज्ञान न तकनीकी न को उपयोग देश की उन्नति, समाज की भलाई न आत्मनिर्भर भारत का निर्माण में करना चाहिए। भाई बहनों, आगे और बात करांगा, पहला आओ सुनी लिपाई संदेश।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: भाई बहनों, अब आपका आज का कार्यक्रम को जो सामान्य ज्ञान को प्रश्न छे वो आपको बता दे भाई। आज को प्रश्न छे बीज की भौतिक शुद्धता से कायदात परे छे। प्रश्न एक बार और सुन लियो, बीज की भौतिक शुद्धता से कायदात परे छे। इन प्रश्न का उत्तर हमेशा की तरह हम बतावांगा कार्यक्रम का अंत में। भाई बहनों, ऊर्जा हमारा जीवन को आधार छे। जिना तरह से हमारा शरीर की सभी क्रिया न कालीन ऊर्जा हमका भोजन से मिले, असाज घर, उद्योग, खेती, परिवहन, शिक्षा, चिकित्सा, हर क्षेत्र में ऊर्जा की जरूरत पड़े। न या ऊर्जा हमका बिजली, पेट्रोल, डीजल, गैस न ऊर्जा का जो दूसरा स्रोत है उनसे मिले। ऊर्जा का इना स्रोत न का बिना जीवन बहुत मुश्किल है। लगातार बढ़ती जनसंख्या न संसाधन न का बहुत अधिक उपयोग का कारण ऊर्जा स्रोत तेजी से कम होता जा रहा है। एकालीन ऊर्जा संरक्षण करनू आज की सबसे बड़ी जरूरत है। ऊर्जा संरक्षण को मतलब है कि ऊर्जा को समझदारी से आवश्यकता अनुसार उपयोग करा, उनको दुरुपयोग नहीं होना देवा। अपना दैनिक जीवन में छोटी छोटी आदत में बदलाव लाई ना हम ऊर्जा की बचत करी सकाए। जैसा कि जब जरूरत नहीं होए तो बिजली, पंखा, दूसरा उपकरण तुरंत बंद करी देवा। LED बल्ब न को उपयोग करा, पानी का व्यर्थ नहीं बहने देवा, पानी की बर्बादी का रोका। ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक परिवहन न को उपयोग करा। सौर ऊर्जा, बायोगैस जैसा ऊर्जा का दूसरा विकल्प न को उपयोग करा। ऊर्जा की अधिक खपत से स्रोत में कमी तो आवज साथ पर्यावरण प्रदूषित हो, देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़े। खेती में भी प्राकृतिक खेती, जैविक खेती का अपनाना चाहिए। पशु अपशिष्ट न को उपयोग बायोगैस बनेना ईंधन का रूप में करना चाहिए। ऊर्जा संरक्षण करनू किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि हम सबको दायित्व छे। ऊर्जा संरक्षण करांगा तो हमका भविष्य में ऊर्जा संकट की समस्या को सामना नहीं करना पड़ेगा। तो भाई बहनों, हम सब आओ संकल्प लेवा कि हम ऊर्जा को सदुपयोग करांगा, अनावश्यक बिजली न ईंधन की बर्बादी का रोकांगा, न दूसरा न कभी ऊर्जा संरक्षण का लेन प्रेरित करांगा। भाई बहनों, आओ अस सुना एक निमाड़ी लोकगीत, जेखा गायो साधना उपाध्याय ना।

0: भाई बहन साधना उपाध्याय का गायल निमाड़ी लोकगीत का बात आओ और सुना भेंटवार्ता जेको विषय छे केले की खेती। इना विषय पर जानकारी दे राज ग्राम दापोरा जिला बुरहानपुर का प्रगतिशील कृषक विठल नारायण पाटिल। तो आओ सुना ये भेंटवार्ता केले की खेती।
1: किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों गर्मी के मौसम में केले की खेती भी की जाती है। केले की खेती विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए आज हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है ग्राम दापोरा जिला बुरहानपुर के प्रगतिशील कृषक विठल नारायण पाटिल जी को। पाटिल जी आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: पाटिल जी। जैसा कि आज का हमारा विषय है केले की खेती, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि केले की खेती करने के लिए उपयुक्त समय कौन सा होता है?
2: वैसे अभी मार्च अप्रैल से सभी किसानों ने केला फसल लगाना प्रारंभ कर दिया है
1: जी।
2: और मेरी भी करीब करीब 27-28 हजार केले के पौधे हमने लगा दिए हैं
1: जी। हाँ।
2: और अभी एक 2-3 दिन के बाद में और केला कंद हमारा तैयार होने के बाद हम केला फसल लगाएंगे
1: जी। मार्च अप्रैल से लेकर कब तक हम केले लगा सकते?
2: वैसे जून माह तक हम लगा सकते हैं।
1: जून तक लग इन्हें इस समय टिश्यू कल्चर और केला कंद दोनों तरह से हम केले की खेती कर सकते हैं
2: जी।
1: अच्छा, इसके लिए कैसी भूमि होनी चाहिए?
2: इसके लिए मध्यम भूमि, काली और जो भूरी आती है, तीनों प्रकार की भूमि में हम केला फसल लगाते हैं।
1: केले की खेती में लागत कितनी लग जाती है?
2: लागत का अगर हम बात करें, केला कंद 6 रुपए प्रति कंद का हिसाब से हमको मिल जाएगा
1: जी।
2: जो टिश्यू कल्चर के बाद में, केला कटिंग के बाद में प्राप्त होता है
1: जी।
2: और टिश्यू कल्चर के पौधे जो है ये भी 20-21 रुपए में मिलेंगे
1: जी।
2: तो 20-21 रुपए प्लस करके लागत कटिंग तक देखा जाए
1: जी,
2: तो करीब करीब खाद के भाव बढ़ गए हैं, तो 80-90 रुपया प्रति पौधे का खर्चा आता है
1: जी। पाटिल जी, केले की खेती के लिए खेत की तैयारी किस प्रकार की जाती है?
2: हम पहले खेत को नागर के रोटावेटर से प्लेन कर लेते हैं और जो लेजर आता है जिसमें 2 प्लाऊ लगे रहते हैं उसमें अंतर डिसाइड कर लेते हैं 5 फीट का, और फिर वो नाली बना लेते हैं, तो उससे फिर एक बेड बन जाता है। कुछ किसान नाली में भी कंद या टिश्यू कल्चर के पौधे लगाते हैं और कुछ किसान बेड पे लगाते हैं। तो बेड

0: ये लगाना अच्छा रहता है,
1: जी
0: क्योंकि जुलाई के बाद में जो पानी वर्षा का पानी आएगा तो
1: जी
0: उससे फिर वो जड़ों को प्रभावित करेगा, तो
1: जी
0: पौधा उतना विकास नहीं कर पाएगा। और
1: जी
0: बेड के ऊपर जब हम टिश्यू कल्चर पौधा लगाए या कंद बीज लगाए तो
1: जी
0: काफी अच्छे प्रकार से वो ग्रोथ भी करता
1: जी
0: है।
1: अधिक नमी के कारण सड़न नहीं लगेगी
0: हाँ
1: जड़ों
0: हाँ
1: में।
0: हाँ
1: पाटिल जी, फसल के बीज हम लगाते हैं तो पहले उनको उपचारित करते हैं, तो केले के कंद को भी आप उपचारित करते हैं?
0: हाँ उपचारित
1: कैसे
0: करते हैं
1: करते हैं उपचारित उसे?
0: उसको, एक बड़ी डाल लेते हैं उसमें पानी
1: जी
0: भर लेते हैं 25-30 लीटर,
1: जी
0: और उसमें यम 45 या 22-3 20-25 ग्राम, उसमें
1: जी
0: ह्यूमिक एसिड डालते हैं
1: जी
0: उस पानी के हिसाब से मात्रा
1: जी
0: में, 20 ML 25 ML,
1: जी
0: और क्लोरोपायरीफास
1: जी
0: जो उसमें कंद के जो मिट्टी में कुछ जीवाणु लगे रहते हैं तो उससे वो खत्म हो जाते हैं। क्लोरोपायरीफास जैसे 25 ML ले लेते हैं, तीस
1: जी हाँ
0: लीटर 35 लीटर पानी उसमें लेके, और फिर एक एक दो दो बीज उसमें डाल के 2-3 मिनट रोकते हैं, फिर उसको निकालते जाते हैं।
1: जी हाँ ये केले के कंद जब हम लगाते हैं या टिश्यू कल्चर्स के पौधे लगाते हैं तो इनमें कितना अंतर रखते हैं हम?
0: केला कंद में हम 5 फीट की जो सरी गिराते हैं, नाली कहते हैं उसको, या
1: जी
0: बेड बना लेते हैं,
1: जी
0: तो
1: हाँ
0: बेड टू बेड का अंतर 5 फीट का रखते हैं,
1: जी हाँ
0: और पौधे से पौधे फिर 5.5 फीट रखते हैं।
1: 5.5
0: ये केला
1: जी
0: कंदे की बात हो गई।
1: जी
0: तो अगर टिश्यू कल्चर के पौधे रहे तो उसमें फिर हम 5.25 इस प्रकार से अंतर रखते हैं पौधे
1: अच्छा
0: से पौधे की
1: जी।
0: दूरी।
1: और ये कंद जब लगाते हैं आप या टिश्यू कल्चर के पौधे लगाते हैं तो उस समय क्या कोई खाद उर्वरक भी डालते हैं?
0: बेसल डोज में हम पहले फास्फेट डाल देते हैं
1: जी हाँ
0: बेड बनाते समय,
1: जी
0: फिर फास्फेट सुपर फास्फेट जो है वो,
1: जी
0: और
1: हाँ
0: उसके बाद में उसको अच्छा मिट्टी में मिला देते हैं।
1: जी हाँ कितनी मात्रा डालते हैं आप?
0: वैसे 1,000 पे हम 3 बोरी 4 बोरी के हिसाब से डालते हैं।
1: जी हाँ पाटिल जी, ये अभी गर्मी का समय है और तेज धूप है, तो इस समय केला फसल लगाने में हमें विशेष रूप से कौन सी सावधानी रखना चाहिए?
0: गर्मी अभी काफ़ी ज़्यादा है तो
1: जी
0: उसके लिए क्या करना चाहिए कि जैसे हम जो नाली बनाते हैं या बेड बना के पौधे लगाते हैं, तो केला कंद बीज लगाए या टिश्यू कल्चर का पौधा लगाए, उसके लिए कम से कम 20-25 दिन पहले बेड के ऊपर ड्रिप सिंचाई पूरा स्टार्ट होने के बाद नमी हो जाती है तो वहाँ पर हम सन डालते हैं,
1: जी
0: सन या ढेचा कहते हैं उसको। सन ढेचा हमारा 9-10 इंच का हो जाता है, तो वो
1: जी
0: सन ढेचे से फिर छाया आ जाती है उसके ऊपर।
1: जी जी
0: और
1: हाँ
0: केला कंद अगर लगाया तो उसके ऊपर छोटे छोटे पेपर के टुकड़े करके उसको ढक देते हैं, वो
1: जी
0: अगर 9-10 इंच का हो जाए उसके बाद में हम टिश्यू कल्चर के पौधे बुक कर लेते हैं,
1: जी
0: तो वो पौधे प्राप्त होने के बाद में फिर हम उसको शाम के समय लगाते हैं,
1: जी
0: और पौधा लगाने के बाद उसके चारों तरफ 3 लकड़ियां गाड़ कर एक क्रॉप कवर आता है,
1: जी
0: तो वो क्रॉप कवर उसको लगा देते हैं ताकि वो गर्म हवा को भी रोकेगा और
1: जी
0: छाया भी देगा,
1: जी हाँ
0: तो
1: जी
0: ढेचा भी काम करेगा छाया रूप में और वो क्रॉप कवर भी काम।
1: जी हाँ तो ये क्रॉप कवर कैसे करते हैं आप?
0: ये मोल लाते हैं,
1: तैयार मिलते हैं क्रॉप
0: तैयार
1: कवर,
0: मिलता है क्रॉप,
1: तो उसे लगाने का भी कोई तरीका है? किस तरह लगाया जाता है उसे?
0: जहां पर अपन ने पौधा लगाया
1: जी
0: या कंदा लगाया
1: जी
0: तो
1: हाँ
0: उसके चारों तरफ से ऐसा 3 लकड़ियां ठोक देते हैं, लगाते हैं ऐसे मैनुअल से,
1: जी
0: और उसमें फिर वो क्रॉप कवर अंदर बैठाए।
1: जी पाटिल जी, केले की फसल में सिंचाई किस पद्धति से की जाती है, क्योंकि गर्मी के मौसम में पानी की तो बहुत कमी होती है?
0: वर्तमान में कोई भी फसल अगर हम लेना चाहे तो
1: जी
0: बिना ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के बिना कोई भी फसल की सिंचाई नहीं हो सकती।
1: जी
0: ड्रिप सिस्टम में पानी बहुत कम मात्रा में लगे,
1: जी
0: और उसमें लेटरल डालते हैं 16 mm की,
1: जी
0: और वो 1.25 फीट के अंतर पे उसका इनलाइन ड्रिपर होता है, उससे
1: जी
0: फिर पानी टपक।
1: जी
0: अगर हमको अच्छा सर्विस लेना है तो हम 2 लीटर पर घंटे में जो ड्रिप काम करेगा वो ड्रिपर वाला यूज़ करते हैं,
1: जी
0: तो उससे अच्छे प्रेशर से पानी बराबर जमता है। और
1: जी
0: 4 लीटर पर आवर वाला अगर अपन इनलाइन ड्रिपर उपयोग लेंगे तो उसे पानी की मात्रा जैसे मेंटेन करना पड़ेंगी,
1: जी
0: कम ज़्यादा गिरेगी, यानी
1: जी
0: पौधों की अवस्था के ऊपर हम निर्धारित करते हैं कि कितनी मात्रा में पौधे को पानी आवश्यक है,
1: जी हाँ
0: तो ड्रिप सिस्टम का उपयोग करके हम सिंचाई की व्यवस्था करते हैं।
1: जी
0: और मेरे पास में एक ऑटोमेशन प्लांट लगाया है मैंने,
1: जी
0: तो वो कंप्यूटर सिस्टम पर आधारित है,
1: जी
0: उसमें हम मैनेज कर लेते हैं कि पौधे को 1 घंटा पानी देना है तो 1 घंटे का टाइम उसमें हम सेट कर लेते हैं,
1: जी हाँ
0: 1 घंटे के बाद में हमारा वो जो वाल्व है वो बदल जाएगा, ऑटोमेटिक बदल जाएगा,
1: जी
0: दूसरे वाल्व में वो पानी चालू हो जाएगा,
1: जी
0: तो
1: हाँ
0: उससे फिर अपना जो ड्रिप सिस्टम है उससे भी ऑटोमेशन में पानी की बहुत बचत है। और साथ में हम जो फर्टिगेशन करते हैं
1: जी
0: तो वो भी उसी के साथ ऑटोमेटिक फर्टिगेशन भी हो, कम समय में अधिक क्षेत्र की सिंचाई, पानी की भी बचत, बिजली की भी बचत, समय की भी बचत,
1: जी
0: और
1: हाँ
0: ऑटोमेशन होने से मतलब सभी प्रकार से मजदूरों की भी बचत। ये तो
1: जी
0: अभी मेरा वर्तमान में उसी प्लांट से 60 एकड़ में एक साथ सिंचाई हो रही है।
1: जी हाँ पाटिल जी, किसी भी फसल में अच्छा उत्पादन लेने के लिए खाद उर्वरक की जरूरत तो होती है, तो केले में खाद उर्वरक कब कब डाला जाता है और उसकी कितनी मात्रा ली जाती है?
0: हम पहले लगाने के पहले बेसल डोज में सुपर फास्फेट डाल देते हैं।

0: हैं,
1: जी
0: 1,000 पौधों के पीछे 3 बैग ऐसा, कोई 4
1: जी
0: डालता है, कोई 3 डालता है, इस प्रकार से बेड के
1: जी
0: ऊपर फैला देते हैं, मिला देते हैं। उसके
1: जी
0: बाद में पौधा जब वो निकलना प्रारंभ हो जाता है, सेट हो जाता है, तो टिश्यू कल्चर पौधा रहा तो एक टंकी में 19 19 19 लेके 4 लीटर, और उसको फिर वो ड्रिंचिंग कर देते हैं।
1: जी
0: फिर उसके बाद में स्प्रे भी करना पड़ता है।
1: जी
0: स्प्रे में अभी गर्मी के समय में हम क्लोरोपाइरीफास वगैरह नहीं ले सकते, क्योंकि गैस के कारण वो पत्तों में धब्बे आ जाएंगे।
1: जी
0: और फिर जैसे जैसे पौधा बढ़ता है, 30 दिन की फसल, 40 दिन की फसल, 45 दिन की फसल, उसके बाद
1: जी
0: में फर्टिगेशन नियमित रखते हैं।
1: जी
0: यूरिया लेते हैं 2 किलो हजारी, और सफ़ेद पोटैश जो आता है ये 2 किलो। उसके बाद में चौथे दिन में फिर हम ऐसा शेड्यूल बना लेते हैं, 12 61 ये लेते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों में।
1: जी
0: फिर जैसे पौधा और बड़ा होता है, उस समय फिर जैसे ठंड का मौसम है तो मैग्नीशियम सल्फेट 2 किलो प्रति हजारी के हिसाब से फर्टिगेशन से देते हैं।
1: जी
0: जिंक सल्फेट चिलेटेड देते हैं, आयरन देते हैं चिलेटेड।
1: ये आपने रासायनिक उर्वरकों की बात की। ऑर्गेनिक पद्धति से यदि हम खेती करना चाहें तो इसमें कौन कौन से खाद उर्वरक आप उपयोग करते हैं?
0: पहले तो जब हम खेत में नाली बना लेते हैं बेड बनाने के, इसमें तो उस
1: जी
0: समय हम गोबर की खाद डाल देते हैं, पहले
1: जी
0: मुरी हुई अच्छे गोबर की खाद डालते हैं। और बाद में जो शक्कर कारखाने से मढ़ी आती है, वो ऑर्गेनिक खाद आता है,
1: जी
0: वो भी देते हैं।
1: जी
0: और केचुआ खाद का भी उपयोग करते हैं। रासायनिक खाद का उपयोग हम बहुत कम मात्रा में करते हैं।
1: जी
0: सूक्ष्म पोषक तत्व भी जो रिक्वायर करते हैं वैज्ञानिक और कृषि विभाग से जो हमें बताया जाता है, उसी मात्रा में उपयोग करते हैं।
1: जी
0: अधिक खाद देना भी ठीक नहीं है,
1: जी हाँ
0: उससे भी लागत बढ़ती है, क्योंकि मार्केट रेट में
1: जी
0: खाद भी बहुत महंगे हैं,
1: जी
0: मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी कम हो जाती है।
1: जी तो ऑर्गेनिक के लिए आप गोबर की खाद, केचुआ खाद
0: हाँ
1: और शक्कर की
0: ऑर्गेनिक,
1: मढ़ी का
0: हाँ
1: उपयोग
0: चालीस
1: करते
0: किलो
1: हैं?
0: का बैग आता है, वो 200 रुपये का।
1: जी तो ये बेसल डोज के समय डाल देते
0: नहीं,
1: हैं,
0: उसको बाद में भी डालते हैं।
1: बाद में भी
0: बेसल
1: डालते
0: डोज
1: हैं।
0: के समय केवल गोबर की खाद डालते हैं।
1: बेसल डोज के समय केवल गोबर की खाद
0: हाँ
1: डालते हैं
0: हाँ फिर बाद
1: और
0: में
1: बाद
0: थोड़ी
1: में?
0: थोड़ी केचुआ खाद जो हम तैयार करते हैं, घर की गोबर रहता है
1: जी
0: उससे केचुआ खाद बना लेते हैं, वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम उसको देते हैं।
1: जी तो ये खाद आप कितनी बार
0: ये
1: देते
0: केचुआ
1: हैं?
0: खाद एक बार, गोबर खाद शुरू में डाल देते हैं,
1: जी
0: केचुआ खाद एक बार,
1: जी हाँ। और मढ़ी,
0: मढ़ी एक बार।
1: पाटिल जी, सबसे ज्यादा नुकसान फसल को होता है रोगों से, तो केले में कौन कौन से रोग लगते हैं?
0: केले में अगर देखा जाए तो सीगा टोका,
1: जी
0: करपा बोलते हैं उसको,
1: जी
0: ये कब लगता है? जब आर्द्रता ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी कहते हैं हम उस
1: जी
0: समय, प्रारंभिक अवस्था से लेकर 2 2.5 महीने के बाद में, ये जब ठंड आती है
1: जी
0: तो उसके, और आर्द्रता रहती है तो उस समय आर्द्रता बढ़ने पे करपा रोग आता है, सीगा टोका।
1: जी
0: तो उससे फिर हम फंगिसाइड लेते हैं और नीम तेल लेते हैं।
1: अच्छा, फंगीसाइट और नीम तेल से उसका नियंत्रण
0: हाँ
1: करते
0: साठ
1: हैं?
0: सत्तर एम एल नीम तेल ले लेते हैं और 25 30 ग्राम जो है फंगीसाइड लेते हैं।
1: जी
0: फिर दूसरे स्प्रे में नीम तेल के साथ में एक फंगीसाइड चेंज कर लेते हैं।
1: जी हाँ, जो पहले आपने फंगीसाइट लिया था
0: हाँ अब जैसे
1: उसको
0: ये हम
1: बदलकर
0: 45 लिया तो फिर 22 3 ले लेते हैं।
1: दूसरा। जी हाँ, और इसके अलावा और कौन कौन से रोग लगते हैं?
0: इसके अलावा चरका जो है, जब ठंड ज़्यादा आ जाती है
1: जी
0: दिसंबर नवंबर के समय में, तो चरका यानी क्या है कि ठंड ज़्यादा हो जाती है, 7 8 डिग्री टेम्परेचर आता है,
1: जी हाँ
0: तो उस समय फिर हम क्या करते हैं कि बीच में बगीचे में ऐसे जो मक्के के भुट्टे के जो हम उसको गंडोरी बोलते हैं, वो बचा हुआ अवशेष,
1: जी हाँ
0: या तो फिर मक्के का जो चारे का भूसा बना रखते हैं तो उसको थोड़ा थोड़े थोड़े थोड़े जगह पे हम डालते हैं, या तो फिर कंडे उसको जलाते हैं रात के समय में,
1: जी
0: तो उससे जो धुआं निकलेगा तो
1: जी
0: धुएं से भी तापमान मेंटेन हो जाता है। और
1: जी हाँ
0: दूसरी बात, इसमें ये चरके में जो पत्तियों में जो पानी जमा हो जाता है
1: जी हाँ
0: तो वो बर्फ बन जाता है ठंड के समय, प्रकाश
1: जी
0: संश्लेषण क्रिया रुक जाती है
1: जी
0: तो
1: हाँ
0: फिर उससे पत्ते सूखने लग जाते हैं।
1: जी हाँ
0: इसके साथ में एक और रोग है सीएमई वायरस,
1: जी
0: तो ये पौधा जब 2 2.5 महीने का होता है
1: जी
0: तो उस समय ये सीएमई वायरस आता है। तो इसमें क्या होता है कि पत्ते छोटे छोटे निकलते हैं और
1: जी
0: पौधा बढ़ेगा भी किंतु उसको फल नहीं आएंगे, और फल आए भी तो काफ़ी छोटे छोटे यानी अनुपयोगी रहेंगे वो।
1: जी
0: तो इसके लिए क्या करना चाहिए, जुलाई अगस्त में जो हम रोपाई करते हैं,
1: जी
0: तो हमने क्या किया सभी किसानों ने
1: जी
0: कि हम जुलाई और अगस्त में केला लगाना अवॉइड कर दें,
1: जी
0: जून तक लगाएं और
1: जी
0: जुलाई महीने में और अगस्त के 15 अगस्त तक
1: जी
0: केला
1: हाँ,
0: न लगाएं,
1: न लगाएं।
0: फिर अगस्त के 20 तारीख के बाद फिर प्रारंभ करें।
1: जी
0: क्योंकि जुलाई अगस्त में क्या होता है कि ये सीएमई वायरस के जो होस्ट होते हैं, ये उस समय केले का पौधा छोटा होता है तो
1: जी
0: उसके ऊपर वो आक्रमण करते हैं,
1: जी हाँ, होते
0: इसका
1: हैं
0: कोई बचाव नहीं है, इसको उखाड़ के ही फेंकना पड़ता,
1: जी
0: पूरे प्लाट के प्लाट फेंक देना पड़ते हैं। इसलिए ये 2 महीने हम अगर नहीं रोपाई करेंगे या कंदा नहीं लगाएंगे तो उसका बचने का एकमात्र वही उपाय है। और
1: जी
0: प्राय प्राय सभी किसान अब उस 1.5 2 महीने में नहीं लगा रहे हैं तो सीएमई वायरस का प्रकोप कम होते गया।
1: जी हाँ। पाटिल जी, केले का एक

0: रोग जो है उसके बारे में बहुत सुना है, पनामा विल्ट रोग, ये रोग क्या है?
1: ये पनामा विल्ट रोग जो है ये पौधे के पत्तों को पीला पड़ना से प्रारंभ कर देता है। जब पौधा, मैं कहता हूँ कि अंतिम मतलब वो फल देने की स्थिति में आ जाते हैं या उसके कुछ दिन पूर्व में, उस समय फिर ये रोग पनप। तो अभी हमारे बुरहानपुर जिले में जो हमारा एक जिला एक उत्पाद केला के लिए नामांकित है, केला बाहुल्य भी क्षेत्र है, तो इसमें ये अभी ये रोग प्रारंभ होने लगा है। तो ये पनामा विल्ट जो है अब, तो हमने भी एक ज्ञापन दिया है कि इस रोग से किस प्रकार से निजात पाए, वैज्ञानिकों के द्वारा हमने इसका मार्गदर्शन चाहा है। और ये पनामा विल्ट क्या होता है कि जो पौधा खराब हो गया तो उसके चारों तरफ से ऐसे दो दो फीट की दूरी पर ऐसा एक, जैसे अपन कोरोना के समय वो करते थे ना, मरीज को अलग से रख देना, तो उस स्थिति में उस पौधे को भी उन पौधों के अलग मतलब ऐसा बॉर्डर बना देना, उसको काट के उसको खोद के या तो उसको फिर जो अवशेष है उसको जला देना
0: जी,
1: ये बचत है उसमें। नहीं तो ये कम से कम 30-35 साल तक उसके जो जीवाणु है वो वहीं जमीन में रहते हैं,
0: बहुत लंबे समय तक
1: वो जिंदा रहते हैं
0: जी। तो जैसे ही प्रकोप दिखाई दे तो पौधे को काट कर और पूरी तरह से उसको जमीन में दबा दे।
1: हाँ, और जिस यंत्र के द्वारा हम उसका पील रेटून जो कहते हैं उसको भी अगर हम काटेंगे, पौधे के भाग को भी कुछ काटेंगे, तो उस यंत्र के द्वारा अन्य स्वस्थ पौधों को न काटें, नहीं तो फिर वो भी उसके द्वारा जो पानी है तो वो उसको लगेगा, तो वो रोग उसमें भी उस यंत्र को साफ कर ले वगैरह इससे।
0: अच्छा, उसके बाद हम उपयोग में ले सकते
1: हैं। हाँ, उसके बाद उपयोग ले सकते हैं
0: जी। पाटिल जी, ये तो हमने रोग की बात, कुछ कीट भी होते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो केले की फसल को कौन कौन से कीट नुकसान पहुंचाते हैं?
1: ये टिश्यू कल्चर का जो हम पौधा लगाते हैं तो ये प्रारंभिक अवस्था में उसका जो पोंगा निकलता है तो काफी मुलायम और स्वाद में मीठा होता है, तो ये जो इल्लिया आती है वो इल्लिया उसको वहीं के वहीं कुतरना चालन प्रारंभ कर देती है, और रस चूसक कीड़े वो भी वहां पर आक्रमण करते हैं। जैसे हम लुंगर आता है हमारा जो केला निकलता है
0: जी,
1: उस समय भी जो बंच है उसके केले को रस चूसक कीड़े उसको आक्रमण करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि एमिडा क्लोरोपीड 8 ml प्रति पंप लेके उसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं
0: जी।
1: और जो लुंगर निकलता है उस लुंगर को भी फिर हम गर्मी से बचाव के लिए सूखी पत्तियां ढक देते हैं और कटिंग बैग उसको लगा देते हैं
0: जी,
1: ताकि उसका जो डंडा है
0: जी
1: तो वो धूप से खराब न हो, और धूप से खराब हुआ तो पीला पड़ेगा और मुड़ के वो लुंगर सहित नीचे गिर जाएगा
0: जी। हाँ पाटिल जी, केले की फसल इतनी अधिक मात्रा में होती है बुरहानपुर जिले में, तो निश्चित रूप से उसका निर्यात होता है, तो निर्यात करने के लिए उसे उत्तम क्वालिटी का कैसे बनाते हैं?
1: निर्यात करने के लिए केले को हम क्या करते हैं कि जैसे ही उसमें बड़ निकलता है
0: जी,
1: बड़ यानी हम उसको कंबल बोलते ग्रामीण भाषा में
0: जी,
1: तो वो जैसे जैसे सीधा रहेगा 90 डिग्री के ऊपर, तो उस समय ऊपर से 3 या 4 इंच के अंतर पर, ज्यादा गहरा करेंगे तो वो निडल से हम उसमें एक पंप में एमिडा क्लोरोपीड 8 ml भरते हैं, जो 15-16 लीटर का हैंडपम्प आता है, और उसमें एक बड़ी ऐसी मुड़ी हुई निडल मोटी आती है तांबे की, तो उससे फिर वो जो बड है उस बड को ऊपर से 3 इंच दूरी पर इंजेक्शन देते हैं, और हैंडपम्प से फिर उसमें फिर एमिडा क्लोरोपीड का जो सॉल्यूशन है वो छोड़ते हैं, तो ये कम से कम 25-30 ml उसमें चला जाता है
0: जी। हाँ।
1: तो फिर जैसे जैसे उस लुंगर से हैंड निकलेंगे
0: जी,
1: तो काफी अच्छे स्वस्थ और सुंदर निकलते हैं, रस चूसक कीड़े का आक्रमण उस पर नहीं होता, यानी जो पिटिंग की बीमारी आना चाहती है, पिटिंग आ गया केले के ऊपर या स्पॉट आ गया तो जो व्यापारी है वो नहीं लेगा, लोकल लेगा भाव कम मिलेगा, और एक्सपोर्ट क्वांटिटी के लिए अच्छा स्वस्थ और अच्छा साफ सुथरा केला चाहिए, तो ये इस प्रकार से हम उसको बड़ इंजेक्शन करते हैं। फिर बड़ इंजेक्शन के बाद जैसे हमारे वो हैंड्स निकलना हो जाते हैं तो हम पौधे की जो तना होता है जितना उसका व्यास होता है
0: जी,
1: जैसे 38 इंच का है 36 इंच का है तो उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 36 इंच है तो 9 आ गया 4 से डिवाइड करके, तो हम उसकी जो हैंड्स है वो 9 रख, और उसके बाद में 10वें हैंड्स को काट देंगे, एक या दो केला रखेंगे, फिर उसके बाद 11वें हैंड्स को भी केला तोड़ देंगे, उसमें भी एक या दो केला रखेंगे, और जो कंबल आता है आखिरी अवशेष उसको तोड़ के डाल देते हैं। वो क्यों एक एक दो दो केला रखते हैं, यानी हमारे केले में जो पौधा ऊपर से न्यूट्रिएंट्स उठाएगा अपटेक करेगा तो वो पूरे केले से होते हुए 9 बंच वहाँ तक ले लेगा वो हैंड्स तक, और 10वें 11वें में जो दो दो केले बचे हुए हैं वो केले भी वो न्यूट्रिएंट लेंगे, नहीं तो फिर क्या होता है कि नीचे से जो हम तोड़ते हैं वहाँ से सड़न लगती है, तो वो सड़ ऊपर बढ़ते बढ़ते फिर वो अच्छे पौधे हैंड्स को भी खराब कर देती है
0: जी।
1: फिर इस प्रकार से उसमें फिर हम कटिंग बैग लगा देते हैं, कटिंग बैग से फिर बाहर के जो कीट है वो उसके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे
0: जी।
1: और दूसरी बात फिर हम उस पौधे को जहाँ पे हमने बड़ इंजेक्शन लगाया है वहाँ पे एक स्टिकर लगा देते हैं, 2-3 प्रकार रंग के स्टिकर।

0: देते हैं हम, जैसे आज हमने 100 बर्ड इंजेक्शन लगाए तो 100 बर्ड इंजेक्शन को हम लाल कलर का लगा देते हैं स्टिकर, फिर दूसरी बार में हम पीले कलर का, और हम डायरी में नोट करते हैं कि आज हमने 200 लूंगर को स्टिकर लगाए है, तारीख नोट कर लेते हैं, यानी कटिंग के समय हमको पता होता है कि इस दिनांक को हमारे इतने पौधे कटिंग में आने वाले हैं और ये एक्सपोर्ट क्वालिटी के अच्छे रहेंगे।
1: जी पाटिल जी, ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके अलावा आप हमारे किसान भाइयों को और क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: हम यही कहेंगे किसान भाइयों को कि जो अभी गर्मी के समय में केला लगाना चाहते हैं तो वो कम से कम हमारे पौधों के 6-8 इंच दूरी पर हम ढेचा या सन डाला है तो कम से कम वो 10 इंच तक ऊंचाई हो जाए ताकि पौधे में उसकी छाया बनी रहे, और क्राप कवर लगा के हम उसको धूप और गर्म हवा से बचाए तो हमारा जो पौधे लगाने का जो मकसद है वो सफल होगा और 100% हमारे खेत में पौधों की जर्मिनेशन होगी।
1: जी विठल नारायण पाटिल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने केले की खेती विषय पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: अभी अपन सुनी रहा था भेंट वार्ता, जिको विषय तो केले की खेती, इना विषय पर जानकारी दे रहा था ग्राम दापोरा जिला बुरहानपुर का प्रगतिशील कृषक विठल नारायण पाटिल जी। बारी छे आज का समाचार के। राजस्थान की गर्म हवा से तापमान बढ़ोतरी हुई, मौसम विशेषज्ञ के अनुसार मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिली, लू चलने की संभावना भी बनी थी। जिला कृषि मौसम इकाई का मौसम एवं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ गुप्ता ने बताया कि 4 सिस्टम सक्रिय थे, एकासे मौसम में बदलाव की स्थिति बनेल छे। जिला में इना सिस्टम को सीधो असर होने की संभावना अभी नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से मौसम साफ रहने की संभावना छे, न एकासे गर्मी बढ़ेगी। ये था समाचार। न अव कृषि उपज मंडी खंडवा से मिली जानकारी के अनुसार आज मंडी में उपज न का भाव रहा, सोयाबीन न्यूनतम भाव रहो 3,500 रुपये प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 6,921 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूं को न्यूनतम भाव 2,000 रुपये प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 2,470 रुपये प्रति क्विंटल, तुअर को न्यूनतम भाव 5,300 रुपये प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 7,200 रुपये प्रति क्विंटल, चना को न्यूनतम भाव 5,060 रुपये प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव रहे 5,461 रुपये प्रति क्विंटल, डॉलर चना को न्यूनतम भाव 5,050 रुपये प्रति क्विंटल न अधिकतम भाव 7,750 रुपये प्रति क्विंटल, ज्वार को न्यून एक भाव रहे 2,135 रुपये प्रति क्विंटल, मूंग को न्यूनतम भाव 6,501 रुपये प्रति क्विंटल न अधिकतम भाव रहे 7,601 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों को एक भाव रहे 5,900 रुपये प्रति क्विंटल, मक्का को न्यूनतम भाव 1,675 रुपये प्रति क्विंटल न अधिकतम भाव रहे 1,940 रुपये प्रति क्विंटल। ये थी मंडी भाव की जानकारी, न अव मौसम की जानकारी। आज सूर्योदय सुबह 5:47 पर हुयो, न सूर्यास्त शाम 6:54 पर हुयो। आज का दिन को अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रहो, न रात को न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना छे। ये थी मंडी भाव न मौसम की जानकारी। तो भाई बहनों आओ सुनी लेवा स्नेहलता भटोरे को गायल एक निमाड़ी लोकगीत।

भाई बहनों, अभी अपन स्नेह लता भटोरे को गायल यो निमाड़ी लोकगीत सुनियो। कार्यक्रम शुरुआत में हमने बात करी थी ऊर्जा संरक्षण का बारे में कि ऊर्जा संरक्षण आज की सबसे बड़ी जरूरत है। भाई बहनों, खेती में भी आप ट्रैक्टर से लेने ना सिंचाई का पंप, फसल कटाई की मशीन, अनाज सुखाने वाला यंत्र, हर जगह ऊर्जा का उपयोग करो। यह ऊर्जा ज़्यादातर डीजल न बिजली से आवे, जो कि जीवाश्म ईंधन पर आधारित है। ये जीवाश्म ईंधन जो है वो कई वर्षों का बाद हमको ईंधन का रूप में ये पेट्रोल डीजल मिले, तो इनका भंडार जो है अधिक उपयोग का कारण धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो इनकी उपलब्धता भी हमको कम होगी, तो हमको इनकी जगह ऊर्जा का दूसरा विकल्प न को उपयोग करना चाहिए। जीवाश्म ईंधन सीमित भी है, न इनका इस्तेमाल से प्रदूषण भी फैले, तो एका कारण हमका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या बायोमास ऊर्जा को उपयोग बढ़ावा देना चाहिए। अपनी फसल की सिंचाई का लेन डीजल पंप का उपयोग करो जो महंगा न प्रदूषण वाला रहे, तो सौर ऊर्जा से चलने वाला पंप जो छे वो एकालीन एक सबसे अच्छा विकल्प छे। ये पंप दिन में धूप से चले, जैसे किसान भाई आप लोग ना को खर्च भी कम

होगा न पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। फसल कटाई के बाद बचा हुआ जो कृषि अवशेष है जैसा कि पराली को उपयोग बायोमास ऊर्जा बनाने में आप कर सको। एकासी फसल से आप अतिरिक्त आय भी ले सको, पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा न ऊर्जा को संरक्षण भी हो सके। भाई बहनों तो इन बात को जरूर ध्यान रख जो बारी छे आज का प्रश्न का उत्तर की। आज को प्रश्न का उत्तर छे कि बीज की भौतिक शुद्धता को मतलब छे बीज में दूसरी फसल या खरपतवार का बीज नहीं होना चाहिए, न बीज को दानो मोटो न कीटाणु रहित होना चाहिए। एक साथ अपनी बहन तरुणा शुक्ला का आज्ञा देव। राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। अब से कुछ ही देर में राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

दोस्तों, आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं नाटिका आंगन में स्वर्ग। लेखन और निर्देशन किया है दुर्गा मेहरोत्रा ने।

0: और सुनो आया, शीशी वाली दवाई 4-4 घंटे पर देना। एक खुराक अभी दे देना, और पाउडर के लिए समझ गई ना?
1: जी हाँ।
0: वक्त से दे देना, अभी टेम्परेचर है उसे।
1: बहुत अच्छा बहू जी।
0: और बीच में एक बार बुखार भी देख लेना। ओफो, मर गए, आज भी देर हो गई। अभी तो शंटू मंटू को तैयार करना है, नहीं तो आया उसके साथ ही कंगी रह जाएगी। आया आया, जरा मेरी कलम में स्याही भर देना। ओफो, कहाँ रख दिया?
1: कौन चीज बहू जी?
0: अरे भाई, धूप का चश्मा।
1: हाँ हाँ,
0: जरा दराज में देखो। और सब ठीक से मेज पर लगा देना, दवा ठीक से दे देना।
1: जी जरूर। राजा भैया, देखो हम क्या लाए हैं। मीठा मीठा शरबत, मुंह खोलो तो।
2: सच्ची? देखे, झूठी नहीं तो, हम समझ गए दवाई है।
1: अच्छा लो, झट से मुंह खोलो। खोलो खोलो। ए आ, फिर बंद कर लिया। खोलो भैया।
2: हम दवाई नहीं पियेंगे।
1: पी लो भैया, नहीं तो देर हो जाएगी।
2: हो जाने दो, हम तो नहीं पियेंगे।
1: अरे रे, मुंह पर से चादर तो हटाओ।
2: तुम पहले दवा हटाओ।
1: अच्छा लो, ए ये दवा का गिलास यहाँ रख दिया।
2: अब ठीक।
1: लेकिन ये बताओ कि दवा नहीं पियोगे तो बुखार कैसे उतरेगा, और बुखार नहीं उतरेगा तो फिर कंधे पर बैठकर गुड़िया वाली नुमाइश कैसे चलोगे?
2: गुड़िया वाली नुमाइश? चलो आया, चलो ना।
1: हाँ, उठना नहीं, बुखार बढ़ जाएगा। ए लो, बस एक घूंट में गट से सारी दवा पी जाओ, फिर ले चलेंगे।
2: बड़ी चैंट, दवा तो हम नहीं पियेंगे।
1: फिर हम जबरदस्ती पिला देंगे? हाँ,
2: हम तो नहीं पियेंगे।
1: तब फिर ऐसे नहीं।
2: नहीं नहीं आया, हम तुमसे नहीं पियेंगे, मम्मी से पियेंगे।
1: मम्मी तो दफ्तर गई हैं। पी लो भैया, नहीं तो वे बहुत बिगड़ेंगी।
2: तुम्हें डांट पड़ेगी, तब तो खूब मजा आएगा। कल तो मम्मी ने दवा पिलाई थी, परसों भी। तुम कौन होती हो? आया भद्दी भद्दी, भाग जाओ यहाँ से।
1: सच्ची आफत कर मारी है, इतनी देर में कितना काम हो जाता। शंटू मंटू की दूध की बोतल धोनी है, कपड़ों पर इस्त्री करनी है।
2: ये सब काम तो दीदी करेंगी।
1: दीदी के इम्तिहान है, उन्हें पढ़ना है ढेर सा।
2: अच्छा आया, हमें गिलास पकड़ा दो। तुम आंखें बंद करो, हम अपने आप पियेंगे। दे दो ना गिलास। दो ना।
1: अच्छा,
2: आया।
1: अच्छा लो पकड़ो। ए संभाल के, पकड़ लिया।

0: अच्छा लो अब जल्दी से पी जाओ। एक दो।
1: नहीं नहीं तुम पहले आंख तो बंद करो।
0: अच्छा लो बंद कर लिया। एक दो तीन। फेंक दी सारी दवा। ओहो सारी दवा बेकार गई। जो मन में आए करो हमें क्या।
1: मम्मी आज हम स्कूल नहीं जाएंगे।
2: क्यों आज क्या है?
1: आज तुम घर पर रहोगी ना।
2: तो इससे क्या छुट्टी तो हमारी है ना।
1: बस मम्मी हमारी भी छुट्टी है।
2: नहीं नहीं छुट्टी उट्टी नहीं। जल्दी से जाओ आया से कहो स्कूल के लिए तैयार कर दे।
1: मम्मी बस
2: जाओ जाओ जाओ बस जाओ। नहीं गलत बात है। एक दिन में कितनी पढ़ाई हो जाएगी फिर पिछड़ नहीं जाओगे।
1: नहीं मम्मी आज ना भेजो।
2: जाओ जाओ राजा बेटे की तरह जल्दी से तैयार हो जाओ। आज शंटू मंटू के लिए झगड़े सिलने हैं उनकी बिब बनानी है बहुत काम है तुम जल्दी से।
1: मम्मी बड़ा मजा आएगा घर में दिन भर हम तुम खेलेंगे। आज तुम्हें हरा ना दिया तो
2: भैया फिर वही जिद। फौरन जाओ आया ले जाओ इसे। ऑफिस से छुट्टी तो दिन भर इनके साथ सर खपाओ जैसे और कोई काम ही नहीं।
1: आया चलो हम भी भाग चलें।
0: क्यों भैया क्या हुआ?
1: मन नहीं लगता।
0: अच्छा चलो शंटू मंटू को खिलाएं थोड़ी देर।
1: नहीं आया वो दोनों गंदे हैं पेपे रोते रहते हैं उनके मारे तो मम्मी हमें भी नहीं खिलती हैं।
0: तो फिर चलो उठो लॉन पर गेंद खेले हैं अब तो कुछ हंसो तो।
3: ए आई हंसी ये आई।
1: नहीं लॉन पर हमें नहीं अच्छा लगता।
0: तब कहाँ खेलोगे?
1: अनिल के घर चलो ना।
0: रोज रोज अनिल के घर?
1: तो क्या हुआ उसकी माँ तो कभी नहीं डांटती मम्मी तो बस जरा ऐसी बातें में चिल्लाने लगती हैं।
0: अच्छा ले चलेंगे लेकिन एक शर्त पर वहाँ ज्यादा उधम नहीं मचाओगे।
1: चलो ना।
0: रुको तो ओफो धोती छोड़ो भैया फट जाएगी।
1: तो खड़ी हो फौरन। वन टू।
0: अरे चप्पल तो पहन लेने दो राजा।
1: अच्छा,
0: भैया
1: जा रहे हैं तुम चप्पल पहन के आना लेकिन जल्दी आना।
0: अजीब लड़का है बस बात मुंह से निकले और पूरी कर दो। बहू जी आ लेंगी तभी तो जा सकती हूँ। जरा ठहर जाओ राजा भैया थोड़ी देर में चलेंगे। जब देखो अनिल के यहाँ बस हो गई घंटों की छुट्टी। एक अकेले भैया ही नहीं संभल पाते ऊपर से बहू जी नाराज होती है कि तुम शंटू मंटू का काम ठीक से नहीं करती हो। हाँ नहीं तो न स्वेटर पहना न मोजे मेरी ही डांट करवाएंगे। राजा भैया अंधेरा होने लगा आओ अब घर चले।
1: चलेंगे आया थोड़ा सा और खेलने
0: फिर कल खेलना।
1: देखो अनिल आया तो समझती नहीं इतना घर बन गया जरा सा बचा पीछे लगी है।
0: शाम हो गई है गीली मिट्टी से बहुत खेल करोगे तो सर्दी लग जाएगी।
1: तो पीछे का दरवाजा बना अनिल ये तो मानती नहीं ऐसे ही बाबा करेगी।
0: राजा भैया
1: ओफो आया मानती क्यों नहीं। अच्छा इधर आओ आओ ना
0: आओ। यहाँ तो गीला है
1: सिर्फ जरा से तो पानी है डरती हो आओ ना इधर आओ बैठो यहाँ। अच्छा बताओ तो हमने कौन सी चीज बनाई है?
0: मिट्टी का ढेर है ये तो।
1: हाँ आया तुम इतना भी नहीं समझती हो।
0: तो और क्या है?
1: आया ये मकान है घर है समझी।
0: काम फट जाएगा ऐसे चिल्लाओगे तो। जाओ हम बोलेंगे ही नहीं।
1: मत बोलो बड़ी आई आया कहीं की जो हम भी नहीं बोलते तुमसे।
0: बस गुस्सा हो गए। अच्छा बताओ
1: ये है आया इधर देखो ना ये है इसकी खिड़की और ये है इसका दरवाजा।
0: और हाय खिड़की दरवाजे में ताला कैसे बंद करोगे सब तो खुला है।
1: इसमें आया तो ताला छोड़े ही पड़ेगा।
0: तो क्या सब खुला रखोगे?
1: हाँ तभी तो मजा आएगा खूब अच्छा लगेगा फिर तो कोई हमें नहीं रोकेगा।
0: इतने से मकान में रहेगा कौन कौन?
1: इसमें आया बस तीन जने रहेंगे मम्मी पापा हम
0: और शंटू मंटू
1: दीदी। नहीं, नहीं, कोई भी नहीं फिर तो भीड़ हो जाएगी।
0: अच्छा तो हमें भी नहीं रखोगे?
1: तुम्हें तो आया फौरन निकाल देंगे तुम थोड़े ही रहोगी और फिर तुम तो इतनी मोटी हो आओगी कैसे इसमें?
0: झुक कर घुस जाएंगे।
1: झुक घुस जाओगी लेकिन फिर निकलोगी कैसे फंस जाओगी? ना भैया ना तुम तो सारा मकान ही तोड़ दोगी।
0: हमें निकाल दोगे तो हम खाएंगे क्या?
1: हम नहीं जानते आया तुम्हारे मारे तो मम्मी हमें अपने साथ कभी खिलाती भी नहीं। तुम नहीं रहोगी तो कितना अच्छा रहेगा हम मम्मी की गोदी में बैठ कर ठाक से खाएंगे।
0: तो फिर हम रोएंगे।
1: अच्छा रुको रुको हम मम्मी से कह

0: घर पर रहना, शंटू मंटू खिलाना, बस अब चुप हो जाओ। अरे भाई कह तो रहे हैं कि तुम्हें रख लेंगे शंटू मंटू के लिए।
1: हम तो तुम्हारे साथ रहेंगे।
0: नहीं भाई मान जाओ ना, तुम तो सब गड़बड़ कर दोगी।
1: नहीं भैया, हम तुम्हारे आंगन में स्वर्ग बनाएंगे।
0: क्या स्वर्ग? आया स्वर्ग तो अनिल की माँ कहती है मरने के बाद जाते हैं, तुम हमें मार डालोगी?
1: नहीं राजा भैया, हम जो स्वर्ग बनाएंगे ना उसमें जानते हो क्या होगा?
0: हम कुछ भी नहीं जानते, तुम ये तो बताओ कि वहाँ खिलौने होंगे कि नहीं।
1: हाँ हाँ होंगे।
0: अरे आया मम्मी से तो पूछ ले। आया स्वर्ग में मम्मी भी रहेंगी ना?
1: हाँ हाँ।
0: आया स्वर्ग में तो मम्मी हमें प्यार करेंगी ना?
1: राजा भैया को तो मम्मी अभी भी कितना प्यार करती है।
0: करती थी आया, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। आया मम्मी पहले बिल्कुल नहीं डांटती थी, जब से शंटू मंटू आ गए ना हमारी सुनती ही नहीं, इनके मारे तो।
1: देखो भैया, स्वर्ग तो खुशी के लिए होगा, उसमें जो लड़ाई करेगा उसे निकाल दिया जाएगा।
0: तब तो हम भी नहीं लड़ेंगे आया।
1: कोई भी राजा बेटा लड़ाई थोड़ी करता है।
0: मगर आया एक बात तो बताओ, हम ढेर सी मिट्टी जमा कर ले और जो आंगन है ना
1: घर में।
0: अरे हाँ अपना आंगन
1: है तो
0: बस वही स्वर्ग बनाएंगे।
1: आंगन में स्वर्ग?
0: हाँ हाँ बड़ा मजा आएगा आया, चलो हम तुम्हें निकालेंगे नहीं, लेकिन जब मम्मी हमें गोदी में लेंगी तो तुम अभी से मत आना।
2: अरे तुम अभी सोए नहीं भैया? अरे हमसे बोलोगे नहीं, क्या हुआ? अरे अरे अरे इतना गुस्सा, अरे मुंह भी छुपा लिया। आया कहाँ है?
0: आया को हमने भगा दिया, वो गंदी है, हम उससे नहीं बोलेंगे।
2: नहीं नहीं रोते नहीं बेटे, क्या बात है, क्या बात है बेटे, आज तुम इतनी देर तक सोए क्यों नहीं?
0: मम्मी बताएं।
2: हाँ हाँ
0: यहाँ बैठो मम्मी और पास।
2: हाँ,
0: मेरे पास आओ ना।
2: हाँ, ले लो तुम्हारे पास।
0: अब बताएं।
2: हाँ।
0: मम्मी हमें नींद नहीं आती है, तुम कहानी सुनाओ ना।
2: अब तो बहुत रात हो गई है, जल्दी से सो जाओ, कल बढ़िया सी कहानी सुनाओ।
0: नहीं आज ही, अभी सुना, कल तो आया गंदी गंदी सुना कर जबरदस्ती सुला देगी, बड़ी खराब है। मम्मी वाली सुना दो ना।
2: कौन सी बेटा?
0: वही परी वाली जो तुमने एक बार सुनाई थी, जब हम गिर गए थे, जब मम्मी तुम हमें गोद में लेकर खाना खिलाती थी, जब मम्मी आया नहीं थी, वही वाली।
2: वो तो बहुत लंबी है, इस वक्त तो याद भी नहीं।
0: याद है याद है, सुनाओगे नहीं तो फिर हम भी नहीं सोएंगे। सुना दो मम्मी।
2: अच्छा जल्दी से लेटो, तो आंखें मूंदो,
0: ये लो।
2: एक थी सोन परी, एक दिन वो बहुत सी परियों के साथ पहुंची राजा के महल में। महल के आंगन में
0: स्वर्ग था।
2: अरे तुम्हें तो इतना याद है।
0: मम्मी आज हमने आया के साथ पक्का कर लिया है कि हम भी आंगन में स्वर्ग बनाएंगे। अरे मम्मी तुम तो रो रही हो। अच्छा अच्छा नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। मम्मी रो नहीं, हम नहीं बनाएंगे स्वर्ग, बस अब तो चुप हो जाओ मम्मी।
2: नहीं नहीं बेटी, मैं रो थोड़े रही थी, वो तो आंख पे कुछ चला गया था। हम जरूर आंगन में स्वर्ग बनाएंगे। हाँ तो सोन परी जब महल में पहुंची तो वहां पर सबसे आगे एक बढ़िया सा भैया भैया बस सो गया। इतनी सी कहानी सुनानी थी उसके।

आंगन में स्वर्ग, अभी आप सुन रहे थे ये नाटिका। लेखन और निर्देशन किया दुर्गा मेहरोत्रा ने। ये थी आकाशवाणी इलाहाबाद की भेंट। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला।

हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं वीरे दी वेडिंग फिल्म के गीत से, जिसे गाया है विशाल मिश्रा, अदिति सिंह शर्मा, ध्वनि भानुशाली और निकिता आहूजा ने। संगीत विशाल मिश्रा का, बोल अन्विता दत्ता के।

सुनिए थैंक गॉड फिल्म में योहानी, जुबिन नौटियाल और सूर्या रघुनाथन को बोल लिखे रश्मि विराग ने, संगीत तनिष्क बग्गी का।

चित्रलोक कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए शिद्दत फिल्म में अंकित तिवारी को बोल कुंवर जुनेजा के संगीत गौरव देशगुप्ता का।

चित्रलोक कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए उदित नारायण और श्रेया घोषाल को फिल्म खाकी में, बोल समीर के संगीत राम संपत का।

अभी आपने उदित नारायण और श्रेया घोषाल को खाकी फिल्म में सुना। कार्यक्रम की अंतिम पेशकश काबिल फिल्म से है। तर्ज बनाई है राजेश रोशन ने, वो लिखे हैं नासिर फराज ने, आवाजें हैं जुबिन नौटियाल, पलक मुच्छल और नासिर की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय पुरुष टीम वनडे क्रिकेट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से 7 सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि लगातार आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस

0: इसका 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पूलिंग को अपनाकर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया था। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह नागरिकों से किया था। श्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने का भी आग्रह किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम करने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है।
3: For the season of खरीफ 2026,
4: खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों की अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
0: कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी देशवासियों से प्रधानमंत्री की 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च कम करने का आग्रह किया। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश भर में इसके कार्यान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
2: विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेह भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश में स्टार्ट

0: स्टार्टअप्स के साथ रक्षा उत्पादन और निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है।
1: वर्ष 2014 में हमारे पास 350 से 400 स्टार्टअप थे, आज हमारे पास 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। सिर्फ एक दशक में हमारा रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपए हो गया है और हमारा रक्षा निर्यात भी एक दशक में 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, चीता और हिम तेंदुआ सहित 7 प्रमुख बिग कैट्स की प्रजातियों का संरक्षण करना है।
1: IBCA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है बिग कैट्स के संरक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि उनके रहने के ठिकाने, तकनीक आधारित निगरानी, सामुदायिक संरक्षण, क्षमता निर्माण और संरक्षण के प्रति जागरूकता को सहयोग देने के लिए कॉर्पोरेट जगत का साथ बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इन बिग कैट्स को बचाने के लिए आगे आएं।
2: टू कम फॉरवर्ड टू सेव द बिग कैट्स।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। असम में कल हेमंत बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ श्री सरमा लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन जाएंगे। ये राज्य में NDA का लगातार 3रा कार्यकाल होगा। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई गठित सरकार के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी 23,816 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 पैसे की गिरावट दर्ज करते हुए 95.31 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले 2-3 दिन में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस बीच असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आज जारी की गई रैंकिंग में न्यूजीलैंड पर भारत की बढ़त 8 अंक से घटकर 5 रह गई है। भारत 1 अंक के नुकसान के साथ 119 अंक से घटकर 118 पर आ गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में आज 8 मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए। हालांकि 4 भारतीय मुक्केबाजों को आज सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 149 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एक

0: एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुति कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं तुम्हारी कसम फिल्म से। इसे गाया है मुकेश और आशा भोसले ने। संगीत तैयार किया है राजेश रोशन ने। रचनाकार आनंद बख्शी।

द ग्रेट गैम्बलर। लीजिए अब इस फिल्म में सुनिए अमिताभ बच्चन, आशा भोसले और शरद कुमार को। संगीत तैयार किया है आर डी बर्मन ने, बोल आनंद बख्शी के।

लीजिए सुनिए अलका याग्निक और कुमार सानू को फिल्म गुलाम में। गीतकार समीर, संगीतकार जतन ललित।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के फनकार। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम सादर समर्पित है अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर को। सदाशिव अमरापुरकर मुंबई सिने जगत का एक बहुचर्चित अदाकार,

0: स्वामी।
1: सदाशिव अमरापुरकर का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर में 11 मई सन 1950 में हुआ था। उनका असली नाम था गणेश कुमार नरवाड़े। महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर में एक अच्छे खासे व्यापारी परिवार से थे अमरापुरकर। बचपन ही से होशियार और सबके दुलारे थे वे। उन्हें घर में और दोस्तों में तात्या नाम से जाना जाता था। उनकी शुरुआती पढ़ाई अहमदनगर में ही हुई। स्कूली जीवन से ही उन्हें एक्टिंग का शौक था। कई नाटकों में वो अदाकारी के जलवे दिखाया करते थे। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उन्हें पुणे विश्वविद्यालय में दाखिल होना पड़ा। यहीं पर वो इतिहास विषय में मास्टर्स डिग्री की पढ़ाई करते हुए एक्टिंग की और भी मुड़े। सदाशिव अमरापुरकर जब विविध भारती के स्टूडियो आए थे, उन्होंने अपने इस एक्टिंग के सिलसिले का जिक्र करते हुए बताया था। सुनते हैं उन्हीं से।
2: और जैसे मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज के गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन होती है, आज भी चल रही है वो, और बहुत अच्छी चीज है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे। और इसकी कंपटीशन थी और उस जमाने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया, मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला और हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा। बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूंगा, प्रोफेसर बनूंगा और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूंगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे, थिएटर भी करते थे। तो वही आदर्श मेरे सामने था। मैं पूना से परभनी गया, परभनी से फिर नगर आया, स्टेट कॉम्पिटिशन जो नाटक होते हैं उसमें हिस्सा लेने लगा और उसमें मैंने एक नाटक किया, काई स्वप्न विकाई चेत। उसमें मैंने जो एक्टिंग की थी वो बहुत पसंद आई लोगों को।

0: सन 1973 में उन्होंने अपनी स्कूली जीवन की सहेली सुनंदा करमरकर से विवाह किया और साथ ही साथ अदाकारी में भी हाथ आजमाते रहे। मुख्यतः वो मराठी नाटकों में काम करते थे। सन 1981-82 में यूं ही सदाशिव अमरापुरकर मराठी नाटक हैंड्सअप में काम कर रहे थे। उस जमाने के जाने माने मराठी अदाकार अविनाश मसूरेकर और भक्ति बर्वे, जो बाद में भक्ति बर्वे इनामदार बनी, इनके साथ वो काम करते थे। तो इस ड्रामे में जो वो कर रहे थे हैंड्सअप में, इस नाटक को देखा जाने माने निर्देशक गोविंद निलानी ने भी। सदाशिव अमरापुरकर की एक्टिंग से निर्देशक गोविंद निलानी बड़े ही प्रभावित हुए और उन्हें अपनी फिल्म अर्ध सत्य में अदाकारी करने का मौका दिया। फिल्म अर्ध सत्य काफी लोकप्रिय हुई और उनका रामा शेट्टी का किरदार भी बड़ा ही कामयाब रहा। हिंदी सिने जगत को सदाशिव अमरापुरकर के रूप में मिला एक खलनायक, ऐसा खलनायक जो अपनी अनोखी डायलॉग डिलीवरी से देखने वालों का दिल जीत लेता था। ये फिल्म उन्हें कैसे मिली, सुनते हैं उन्हीं की जुबानें।
1: तेंदुलकर जी के 4-5 नाटक किए हैं, हैंड्सअप नाटक किया, और उस वक्त मेरी तेंदुलकर जी से बहुत अच्छी पहचान हो गई थी और वो एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे, उसका नाम था अर्ध सत्य। और उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि इसमें एक छोटा सा रोल है और इसके लिए मैंने आपका नाम सजेस्ट किया है। हालांकि जब भी मैं नाम सजेस्ट करता हूं तो डायरेक्टर उसे नहीं लेता है, लेकिन इस बार देखिए आपका लक अगर चलता है तो। और इस तरह मेरी गोविंद निहलानी से पहचान हुई। वो मेरा हैंड्सअप नाटक देखने आए और उसमें मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रहा था और फिल्म भी इंस्पेक्टर के ऊपर थी, तो मुझे लगा मुझे कोई बड़ा अच्छा इंस्पेक्टर का रोल मिलेगा। और मैंने बड़े जोश के साथ वो नाटक किया, उनको बहुत पसंद आया, अच्छा लगा। दूसरे दिन घर पे बुलाया और कहा, देखो आपका नाटक अच्छा था, इंस्पेक्टर का रोल आपने बहुत बढ़िया किया, इस फिल्म में एक रोल है छोटा सा, उस कैरेक्टर का नाम है रामा शेट्टी। तेंदुलकर जी को पूछा मैंने, कहा ये क्या रोल है? बोले छोटा है, अच्छा है। मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने दो। स्क्रिप्ट पढ़ा, 2-2.5 सीन थे लेकिन उसका जिक्र बार बार आता था और उस वक्त मुझे फिल्म के बारे में ABCD भी मालूम नहीं था।

हिंदी, मराठी के अलावा उन्होंने बांग्ला, ओडिया और हरियाणवी फिल्मों में भी काम किया है। दोस्तों, हम उन फिल्मों के गीत आपको सुनवा रहे हैं जिनमें सदाशिव अमरापुरकर ने काम किया था।

इस तरह से उन्हें हिंदी सिने जगत का एक विशाल स्क्रीन अदाकारी दिखाने के लिए मिला। वो यहीं तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने और भी भाषाओं की कई फिल्मों में काम किया।

0: सन 1993 में पहली बार फिल्म फेयर ने खलनायक को दिया जाने वाला अवार्ड शुरू किया, जिसे पाने का गौरव मिला सदाशिव अमरापुरकर को। अर्धसत्य की कामयाबी के बाद उन्हें कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला और उन्होंने इन फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए। ऐसी ही कुछ फिल्में हैं पुराना मंदिर, नासूर, मुद्दत, वीरू दादा, जवानी, फरिश्ते वगैरह वगैरह। दोस्तों, फिल्म हुकूमत में उन्होंने लोकप्रिय अभिनेता धर्मेंद्र के खिलाफ विलेन का किरदार किया और वो किरदार इतना सफल हुआ कि ये फिल्म बेहद कामयाब रही और इस तरह सदाशिव अमरापुरकर धर्मेंद्र के लिए सफलता का जैसे एक पैमाना बन गए। इन दोनों ने कई फिल्मों में साथ साथ काम किया। सन 1991 में एक फिल्म आई थी सड़क। इस फिल्म में उन्होंने एक हट के चैलेंजिंग रोल किया था जो आपको भी जरूर याद होगा। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था।
1: कमाल है कुदरत का, क्या खूबसूरती, क्या चीज बनाई है ऊपर वाले ने। देख देख, मेरे तो बाल खड़े हो गए, हाथ पे जान निकल गई मेरी। ओ, क्या रंग है, हाय रे ये बदन, हाय हाय, डर मत मेरी जान, डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं आधा मर्द हूँ और आधी औरत। देख ना रूप ना रंग, देख ये किस्मत का खेल तो देख। अगर कुछ है ना मेरे पास तो वो है दिमाग। कमाल का दिमाग है मेरे पास, इसलिए मर्दों की सेवा करती हूँ और औरतों का धंधा। यहाँ का राजा, इस जिस्म के बाजार का महाराजा, और नाम महारानी।
2: ये सब क्या है चाचा, चलो यहाँ से।
1: मैं बताती हूँ, ये सब कुंडली का खेल है। किस्मत जिसे कहते हैं ना हम, वो है ये सब। तेरे बाप ने और तेरे चाचा ने मेरे पास से कुछ कर्जा लिया था, तेरे दादा की बीमारी के लिए, और तुझे गिरवी रखा था। गिरवी जानती है ना तू, गिरवी। फिर जोर से हाँ बोलना, शर्माती क्यों है? लेकिन इतने साल हो गए इन्होंने मेरा कर्जा ही नहीं चुकाया, इसलिए मैं बंसी की बेटी को उठाकर यहाँ लाई इस कोठे पर। आज ये बेचारा अपनी बेटी को छुड़ाने आया है, क्या करेगा, पैसे तो है नहीं इसके पास चुकाने के लिए, इसलिए इसने तुझे लाया है। आज से तू यहाँ रहेगी इस कोठे पर, इसकी बेटी की जगह।
2: नहीं चाचा, आप ऐसा नहीं कर सकती हो, मैं आपकी भतीजी हूँ।
1: रिश्तेदारी का तो खेल ही है सब।
0: मुंबई में एक्टिंग के लिए वे किस तरह पहुँचे इसके बारे में भी उन्होंने बताया था, आइए सुनते हैं।
3: नासिक में हमारा पहला एलिमिनेशन राउंड था और वहाँ एक परीक्षक थे, उनका नाम था भिकुपई आंगले। उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी और मुझे खत लिखा कि आप जाकर बम्बई में गोवा हिंदू एसोसिएशन है वहाँ जाकर मिलो, वहाँ एक आपके लिए काम रखा हुआ है। तो और उन्होंने एड्रेस वगैरह दिया था, फ़ोन नंबर दिए थे, तो मैंने वहाँ फ़ोन किया तो वहाँ पर रामकृष्ण नाइक करके थे, उन्होंने कहा कि आप आइए, और मैं वहाँ गया। उन्होंने कहा हमारा एक नाटक है नट सम्राट, जो डॉक्टर लागू ने किया था, दत्ता भट्ट ने किया था, अभी दत्ता भट्ट के बाद हम देख रहे हैं। सतीश दुबाशी ने हमको कहा है कि मैं ये करूँगा, लेकिन पता नहीं वो करेंगे या नहीं, लेकिन आपकी एक्टिंग की मैंने इतनी तारीफ सुनी है भिकुपई आंगले।

0: से, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी सी टेस्ट ले लें। तो उसमें काम करने वाली जो आर्टिस्ट थी शांता भाई गोखले, उनके पास मुझे लेकर गए। उनमें एक आर्टिस्ट थी शांता जोक, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत बढ़िया एक्टिंग करती थी, आज हमारे में नहीं है। उन्होंने मेरी टेस्ट ली और उनको कहा कि ये कर सकते हैं। मुझे किताब दिया गया, बोले आप गांव जाइए, हम आपको बुला लेंगे। और बाद में मैंने पेपर में पढ़ा कि वो रोल सतीश दुभाषी कर रहे हैं, लेकिन दिल में एक तमन्ना थी कि कुछ कोई बात नहीं, और भी नाटक लिखे जाएंगे, हमें रोल आएंगे। और एक दिन अचानक एक फोन मुझे आया, दूरवांची जोड़ी एक संस्था है उनका, कि हम एक नाटक कर रहे हैं, उस रोल के लिए जो प्रोफेसर का रोल है बहुत बड़ा, उसके लिए हम आपको मिलना चाहते हैं, तो आप बम्बई आइए। मैं तीसरी बार मुंबई आया तो उन्होंने कहा कि देखो आपने वो नाटक किया था, फाइनल में आया था, वहाँ पुरुषोत्तम दारवेकर जी थे और उन्होंने आपके नाम का सजेशन दिया है प्रोफेसर के रोल के लिए, इसलिए आपको बुलाया, और चलिए आप हमारे साथ चलिए। तब मैं पहली बार विविध भारती के ऑफिस में आया और उसके बाद मैं नाटक में एक्टिंग और डायरेक्शन करता ही गया।
1: अरे ये क्या हो गया ये साले, उन बदमाशों को यही एक दुकान मिली लूटने के लिए।
2: सर आप इस दुकान में पार्टनर है क्या?
1: अरे पार्टनर नहीं, ये दुकान मेरे सबसे अच्छे सबसे प्यारे बचपन के दोस्त हसमुख की है।
2: अच्छा अच्छा,
1: आ गया हसमुख, आ गया हसमुख। ए हसमुख, हिम्मत से काम ले हसमुख। अरे होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन तू इस नुकसान से घबराना नहीं है। मेरी पगार बहुत कम है, लेकिन मैं तुझे भूखे नहीं मरने दूंगा, उसमें से आधी तुझे दूंगा, वादा रहा दोस्त, घबराना नहीं।
3: तू अपनी आधी पगार मुझे देगा?
1: पागल हो गया।
3: अरे पागल नहीं बाबा, भगवान ने पागल होने से बचा लिया।
1: कैसे?
3: मैंने है ना दो दिन पहले दुकान बेच दिया था।
1: क्या?
3: हाँ।
1: किसको?
3: ये सेठ सुखीराम को। मैं नहीं बेच रहा था।
1: हाँ।
3: उदित करके सारे जरूरत के साथ पेमेंट भी कर गया मुझको।
1: कॉन्ग्रेचुलेशन। ए अंडू पांडो।
2: यस सर।
1: ये ले, ये 10 रुपए ले, मिठाई ला, सबका मुंह मीठा कर देते हैं आज।
4: अबे वो इंस्पेक्टर के बच्चे, मैं तबाह हो बर्बाद हो गया और तू मिठाई क्या मंगवा रहा है? अरे इस वर्दी का ख्याल कर, कुछ मुझे झूठी तसल्ली दे भाई।
1: माफ कीजिएगा लाला जी, मैं मिठाई इसलिए मंगवा रहा हूँ कि मेरा दोस्त बच गया। और जहाँ तक आपकी बर्बादी का ताल्लुक है, आपके साथ पुलिस है और पुलिस के साथ इंस्पेक्टर प्यारे मोहन है, जो विलन को चैन से जीने नहीं देगा। जीना तो छोड़ो, पीने नहीं देगा।
5: सदाशिव अमरापुरकर ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उनके द्वारा अभिनीत कुछ ये फिल्में भी हैं, जैसे आंखें।
6: ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, ओ काले कुर्ते

कूली नंबर वन, गुप्त, जंग, तड़ीपार, हम साथ साथ हैं वगैरह वगैरह। सदाशिव अमरापुरकर की आखिरी रिलीज फिल्म थी सन 2013 में आई फिल्म बॉम्बे टॉकीज। आज के इस कार्यक्रम में प्रयोग की गई रिकॉर्डिंग हमें विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त हुई है।

0: आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर पर। कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है।

0: भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
1: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।

नजरों ने नजरों से जो कह दिया है सब कुछ, तो अब पर्दा किस बात का है। अनजान थे कल, आज दिल के इतने करीब हो, तो फिर पर्दा किस बात का है।

दिल की बातें हैं, ये कोई पानी पे लिखी इबारत नहीं है। संभाले हैं दर्द एक दूजे के, ये कोई तिजारत नहीं है।

कुछ इस तरह से जुड़े हैं दिल से दिल के तार, बस मुस्कुरा भर देते हो और ढह जाता है शिकवों का अंबार।

खिल उठी है रात रानी की खुशबू तेरी सांसों में, इस मदहोशी का क्या करें। एक होने को बेताब है तन और ये मन, दिलों की गर्मजोशी का क्या करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये

0: सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपये का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सहयोग सहित द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे, जहां वे किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब से मिलेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ किस्टरसन के साथ व्यापार, हरित ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इस दौरान भारत और नॉर्डिक देशों के बीच तकनीक, हरित ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा यूरोप के साथ भारत के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले सुजीत बसु पर धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। असम में कल हेमंता बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के निमंत्रण पर 13 से 15 मई तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।